मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: छह बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सभी श्रोताओं को पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सावन की फुहारें जब धरती को हरियाली से भर देती हैं, तब भक्तों के हृदय भी शिव भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। ये महीना केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और शिव कृपा का भी है। आइए इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं।

माँ की भक्ति में अपार शक्ति है। जब श्रद्धा से माँ दुर्गा का स्मरण किया जाता है तो मन में विश्वास जागता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। माँ अम्बे अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, संकटों को हरने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली आदिशक्ति माँ हैं।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहते हैं। वे संहार के भी देव हैं और सृष्टि के कल्याणकारी रक्षक भी। उनकी भक्ति मन को शांति, शक्ति और आत्मविश्वास से भर देती है। सावन का पावन महीना हो या वर्ष का कोई भी दिन हो, शिव का स्मरण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

भारतीय संस्कृति में गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना की पावन धारा है। गंगा तट पर पहुंचकर मन को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानव जीवन की सारी व्याकुलताएं बह गई हों।

0: इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है विचार बिंदु। आज सुनिए सरदार भगत सिंह के विचार।
1: 1931 के 23 मार्च को सायंकाल ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर कांड के राजद्रोह में सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव, इन तीन राष्ट्रभक्तों को फांसी दी थी। लाहौर कांड का संबंध पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या से था। ये सैंडर्स वही था जिसने सन 1928 में लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करने पर महान राष्ट्रसेवी लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसवाई थीं कि एक महीने के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। इन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने सैंडर्स की हत्या कर उसका बदला चुकाया था। इनमें शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम था, पर वे पकड़े नहीं जा सके थे। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के असेंबली भवन में बम फेंक कर भारत के क्रांतिकारी युवकों का सिंहनाद ब्रिटिश हुकूमत को सुनाया था। पहली बार भगत सिंह ने असेंबली भवन के दरवाजे पर बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दो नारे लगाए थे। इस बम कांड के बाद उन्होंने अपने आप को वहीं गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने बलवंत सिंह इस छद्म नाम से पत्रकारिता भी की थी। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे तथा देश में समाजवादी प्रजातंत्र देखना चाहते थे। इसीलिए जिस दल का गठन किया गया था उस दल का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमें भगत सिंह के विचार उनकी पत्रकारिता के लेखों में तथा जेल से लिखी चिट्ठियों में मिलते हैं। उनसे ये प्रकट होता है कि स्वतंत्र भारत की कैसी तस्वीर सरदार भगत सिंह के हृदय में थी। सरदार भगत सिंह अखंड भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके क्रांतिकारी साथियों में भारत के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी सभी क्षेत्रों के लोग थे। भगत सिंह मानव मात्र को अपना भाई समझते थे तथा भारत को हिमालय से समुद्र तक एक राष्ट्र मानते थे, जिसमें कई जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। इन सभी का राष्ट्र धर्म एक है, ये उनका विचार था। वे आदर्श क्रांतिकारी नेता थे। उनकी स्वतंत्रता ये नहीं थी कि गोरों का शासन समाप्त हो जाए

0: और भारतीय शासन करने लगे। वरन वे चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था कायम हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, धर्म और संप्रदाय के नाम पर भोली भाली जनता बेवकूफ न बनाई जाए। वे सिख होकर भी मानव मात्र को अपना भाई समझते थे। 2 फरवरी 1931 को जेल से गुप्त रूप से उन्होंने साथियों के नाम एक पत्र भेजा था। उस समय भगत सिंह के सामने गांधी इरविन समझौते का भी खाका था, जो इन क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था। उस पत्र की कुछ पंक्तियों में ये कहा जाता है कि भगत सिंह के हृदय में आज़ादी की कितनी बड़ी तमन्ना थी, उसका हमें पता चलता है। राजनीतिक संग्रामों का समझौता एक अत्यावश्यक अंग है। किसी भी कौम के लिए जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी चाल थोड़े समय के लिए धीमी हो तो उसके नेता पीछे पड़ जाएं, किंतु जनता की बढ़ती हुई ताकत समझौतों को ठुकरा कर उस आंदोलन को जययुक्त करा देती है। नेता पीछे रह जाते हैं, आंदोलन आगे बढ़ जाता है। अपने भाई करतार सिंह को उन्होंने पत्र में लिखा था, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, फानी रहे या न रहे। अर्थात मेरे बलिदान के पीछे स्वतंत्रता के विचारों की बिजली चमकेगी, ये मुट्ठी भर मिट्टी का नश्वर शरीर रहे या न रहे। उनके विचार और भाव बहुत सत्य थे। भगत सिंह के नाम के पीछे आज भी राष्ट्रीयता के भावों की बिजली चमकती है।
1: विचार बिंदु में भी आप सुन रहे थे सरदार भगत सिंह के विचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुने श्री जीपीएम सिंह से मनोज कुमार सिंह की बातचीत। विषय है पंपिंग सेट की देखभाल।
1: आज का जो खेती किसानी बाटे भैया वो वैज्ञानिक तौर तरीका पर आधारित बाटे। कृषि यंत्रन का प्रयोग बहुत बढ़ गया बाटे और यह कारण बाटे कि अपन खेती किसानी में भी सुधार भय बाटे, पैदावार भी अच्छी होत बाटे। लेकिन बहुत जरूरी ये होता है कि जितना भी कृषि यंत्र हैं उनकर सही ढंग से रख रखाव के बारे में जाना जाए। कहें कि भैया देखिए, हर खराबी के लिए, हर रख रखाव के लिए विशेषज्ञ के बुलावा संभव नहीं बाटे। और बहुत जरूरी होता है खेती किसानी में पंपिंग सेट लगभग सभी किसान भाई रखे बाटे और पंपिंग सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहें कि कोनो भी फसल के बढ़वार खाती, पैदावार खाती पानी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो पंपिंग सेट का देखभाल कोने ढंग से किया जाए जोने से कि वो सुरक्षित रहे, ज़्यादा समय तक चले और अपने खेती किसानी के लाभ पहुँचावत रहे। यह विषय में जानकारी दे बदे आज अपने बीच आमंत्रित हैं श्री जीपीएन सिंह भैया, कृषि अभियंता हैं, यह विषय का जानकार बांटें, विशेषज्ञ बांटें। श्री जीपीएन सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत बांटे। देखें, आज के समय में अगर देखा जाए तो पंपिंग सेट ज़्यादातर किसान भाई के पास बांटे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बांटे। कहें कि बिजली का तो कोनो ठिकाना ना रहत। लेकिन देखे में यह हुआ होता भैया कि कभी जरूरत जब पड़त है, समय जब आवत है, तो वो अपन पंपिंग सेट खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, जो उनसे बड़ी दिक्कत आवत है। तो किसान भाई कोने कोने बातन का ध्यान रखें जो उनसे कि अपन जो पंपिंग सेट बांटे उस सुचारू रूप से चलत रहे।
2: देखिए, हमारे किसान भाइयों का पंप जो है सुचारू रूप से कार्य करे, इसके लिए प्राथमिक स्तर पर यह आवश्यक है कि पंप बैठाने का सही स्थान का चुनाव किया जाए। सही बैठाने का तरीका वह पंप को इंजन या मोटर से कपलर शाफ्ट या बेल्ट पुली के माध्यम से जोड़ने का तरीका भी सही हो
1: जी।
2: इसके अलावा स्थान के चुनाव में ध्यान रखें कि पंप जल स्रोत के जितने पास हो सके उतना पास रहे या 15 फीट से दूर ना हो
1: जी।
2: जल निकासी वाली पाइप में जोड़ और मोड़ कम से कम रहे। खेत के सबसे ऊंचे स्थान पर पंप लगाना चाहिए और प्रयास यह रहे कि पंप खेत के बीच लगे जिससे कि जल चारों तरफ जा सके।
1: अच्छा अच्छा
2: पंप बेल्ट से चलाएं या मोटर व इंजन से जुड़े रहे।

0: लेकिन इसके लिए फाउंडेशन ब्लॉक जो बनाया जाता है उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि फाउंडेशन ब्लॉक जो है 42 इंच लंबा, 24 इंच चौड़ा और 24 इंच ऊंचा रहे।
1: जी
0: इस 24 इंच में से 18 इंच जो है ज़मीन के नीचे रहेगा, 6 इंच जो है ज़मीन की सतह से ऊपर रहेगा। और
1: अच्छा,
0: इस फाउंडेशन ब्लॉक में जिस पे हम पंप सेट को बैठाएंगे उसमें जो नट बोल्ट जो लगेंगे, बोल्ट जो लगेगा वो 5/8 इंच मोटा होना चाहिए
1: अच्छा,
0: और 18 इंच लंबा होना चाहिए। इससे जो है आवाज़ नहीं आती है। और इस फाउंडेशन में जो सीमेंट बालू और गिट्टी का अनुपात है वह जो है 1:3 और 5 का होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इससे इंजन मोटर और पंप जो है अच्छी तरह से बैठ जाता है और हिलता नहीं है तो आवाज़ उसमें नहीं आती है।
1: भैया मतलब अनुपात पर बड़ा विशेष ध्यान देवे के चाहिए। एक चीज़ देखें जो बहुत सामान्य समस्या आ रहा था कि कबो कबो जिया पंप पानी नहीं देत बाटे या चाहे पानी छोड़ देत बाटे,
0: जी,
1: तो एकर का कारण हो सकत बाटे और एकर का निदान बा?
0: इसका देखिए मुख्य कारण तो ये होता है कि पंप में जो फुटवाल्व लगा रहता है उसमें जो है अगर फुटवाल्व में अगर पानी नहीं है या फुटवाल्व नहीं लगा है तो ये उसमें प्राइमिंग करना पड़ता है। प्राइमिंग अर्थात कि उसमें जो है पहले हमें पानी भरना पड़ता है सक्शन पाइप में, जैसे उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे तब जो है वह पानी खींचता है। जल निकासी के पाइप की ऊंचाई अधिक होना भी एक कारण होता है।
1: तो मतलब बहुत अधिक ऊंचा ना रखना
0: जी,
1: चाहिए,
0: अगर अगर जल निकासी का पाइप जो है बहुत ऊंचा रखे हैं
1: ज्यादा
0: तो
1: पानी चढ़ावे के पड़ जाता है तो ये
0: जी
1: लिए दिक्कत
0: जी
1: होता है।
0: और उसमें एक कारण ये भी रहता है कि जो है आप ये पंप का आरपीएम जो है कम हो, जिस रफ्तार से पंप को चलना चाहिए उस रफ्तार से नहीं चल रहा हो,
1: पूरा हवा नहीं बांध पा
0: या
1: रहा।
0: फिर एयर लीकेज हो कहीं जोड़ में, सक्शन लिफ्ट अधिक होना, या फुटवाल में कचरा भी जमा हो जाने से जो है ऐसा होता है।
1: जी,
0: तो इसमें जो है यह बहुत ज़रूरी है कि जो फुटवाल्व हम लगाते हैं उसमें कुल छिद्रों का जो व्यास होता है, क्षेत्रफल होता है, छिद्रों के व्यास का क्षेत्रफल जो है वो हमारे सक्शन पाइप के व्यास के क्षेत्रफल से थोड़ा अधिक होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी उसमें जा सके। और जहाँ तक आरपीएम की बात है, आरपीएम अर्थात जिस चक्कर पे जितने चक्कर पे पंप को
1: भैया एक
0: घूमना
1: मिनट
0: चाहिए,
1: में जितना चक्कर वो लगा लेता
0: जी
1: है।
0: 1 मिनट में जितना चक्कर वो लगा लेता है उसको उसका नियंत्रण जो है पुली के माध्यम से किया जाता है। पुली का नाप अगर इंजन मोटर या पंप जिससे भी पंप जुड़ा हो अगर उसमें अगर सही नहीं है, सही अनुपात में नहीं है तो भी जो है या तो आपका पंप जो है ज़्यादा रफ्तार से चलेगा या तो कम रफ्तार से चलेगा। अगर कम से चलता है तो आपका पानी जितनी मात्रा में देना चाहिए वह नहीं देगा। ज़्यादा रफ्तार से चलता है तो आवाज़ बहुत करेगा और टूट फूट की संभावना बेयरिंग्स वगैरह में हो सकती है।
1: एक चीज़ भैया ये देखे में आवत है कि देखिए आप बताएं, बहुत अच्छी जानकारी दी है कि का कारण होता है पानी ना देवे का चाहे पानी छोड़ देवे का। और आप बताएं भैया कि पानी पहले भर दे अगर तो ऐसे
0: जी
1: सहूलियत रहता है, लेकिन कुछ लोगों को देखे में यह होता है कि पानी भरत समय क्या करते हैं कि गोबर ओबर मिला लेते हैं
0: जी जी
1: पानी में, तो ई का कारगर बाटे?
0: इससे क्या होता है कि गोबर वगैरह मिला देने से वो जो है फुट पंप जो है जाम होने की भी संभावना रहती है। और जब यह पानी जो है पंप के इम्पेलर में आता है तो इम्पेलर में अगर पानी आ गया तो उसमें लोहे का जो घर्षण होता है कचरे, मिट्टी और गोबर जैसी चीज़ों से जब घर्षण उसका बढ़ता है तो उसका जो है वॉल्यूम जिसे कहते हैं वो जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है पानी जितना फेंकना चाहिए वह उतना पानी नहीं देता है।
1: ये बात है।
0: और तो फिर कारण और भी बन जाते हैं जैसे कि इम्पेलर अगर उल्टा, जैसे अगर आपने बिजली से अगर चला रहे हैं मोटर पंप से अगर तार उल्टा लगा दिए हैं तो भी आपका पानी न देगा। जी
1: एक बात ये देखें, पानी जो ना कि कबो कबो नहीं देत बाटे चाहे कम देत बाटे, चाहे देखे में यह होता है कि चलत चलत रुक जाता पंपिंग सेट भी है,
0: जी
1: चाहे भैया जो ना कि पानी गर्म हो जाता के, चाहे बहुत ज़्यादा आवाज़ आवत हो के
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो एक समस्या का कारण बाटे और ऐसे कैसे निपटें किसान भाई, कैसे क्या
0: इसमें
1: करें?
0: किसान भाई हमारे ये ध्यान दें कि समय समय पे पंप के दोनों छोर पर जो दिए गए बेयरिंग्स रहते हैं उसकी ग्रीसिंग अच्छी तरह से कर लें, उसको साफ़ कर लें। अगर नया ग्रीस लगा रहे हैं उसमें तो पहले बेयरिंग्स को साफ़ करके उसकी ग्रीसिंग अच्छी तरह से कर लें और उसके लिए जो है ग्रीस कप जो है बना हुआ रहता है। और दूसरी चीज़ होती है उसमें एक चीज़ होती है ग्लैंड बॉक्स जो एयर लीक नहीं होने देता है। तो इस ग्लैंड बॉक्स में एक डोरी लगी रहती है, उस बॉक्स में

0: डोरी को लगा के ग्रीस उसमें भरा जाता है।
1: अच्छा,
0: उसमें जब ग्रीस भरते हैं तो यह ध्यान रखें कि ग्रीस का कसाव जो है सही रहे।
1: गलन डोरी जो उनके बोला कि भैया गांव देहात
0: जी, अच्छा, उसका अच्छा, जो है कसाव सही रहे।
1: अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहब बहुत संक्षेप में, पुली का आप बताएं कि बड़ा महत्व बटे तो पानी के जो है कि फेंकाव में भी पानी के खिंचाव में भी, तो भैया पुली का नाप कितना महत्वपूर्ण बटे संक्षेप में बताओ यार।
0: पुली का नाप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा चक्कर चलने पे, आवश्यकता से अधिक चक्कर एक प्रति मिनट लेने पे पंप में टूट फूट की संभावना, बेयरिंग वगैरह की शाफ्ट के टेढ़े होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी,
0: या फिर पंप के या मोटर या इंजन जो भी चल रहा हो उसमें गर्म होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: उसमें से तीन चीज़ें आपकी दी रहती हैं, दो मशीनों के आपको जो है चक्कर प्रति मिनट दिया रहता है और एक कोई पुली रहती है। इन तीनों, जब तीन चीज़ दी हुई हैं तो चौथी पुली का नाप आप स्वयं जो है ज्ञात कर सकते हैं उसी अनुपात में।
1: भैया श्री जीपीएन सिंह जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दी हैं संक्षेप में कि पंपिंग सेट का देखभाल कौन ढंग से किया जाए। निश्चित तौर पे किसान भाई इसे लाभ उठे हैं, आपके जानकारी दे बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुन रहे थे श्री जीपीएन सिंह से मनोज कुमार सिंह की बातचीत पंपिंग सेट की देखभाल।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव की वार्ता, बच्चों में डायरिया कारण और उपचार।
1: डायरिया का अर्थ है मल में अनायास रूप से पानी की मात्रा का बढ़ जाना। इसे हिंदी में अतिसार भी कहते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में उल्टी दस्त या डायरिया बच्चों की मृत्यु दर का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे कि भारत में दस्त का मुख्य कारण संक्रमण ही है, चाहे वह वायरल हो, बैक्टीरियल हो या अन्य प्रकार के संक्रमण भी हो सकते हैं। कभी कभार फूड एलर्जी के कारण भी डायरिया होता है। ऐसे तो डायरिया किसी भी मौसम में हो सकता है, परंतु गर्मी एवं बरसात के मौसम में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह समस्या बच्चों में ही नहीं किसी भी उम्र में हो सकती है। प्रायः 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों में यह समस्या ज्यादा पाई जाती है या ये बच्चे ज्यादा अधिक शिकार होते हैं इस बीमारी से। ज्यादातर दस्त गंदगी के कारण होता है। दूषित पेयजल, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, माताओं में साक्षरता की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। कमजोर एवं कुपोषित बच्चे आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। जिन बच्चों में अपर्याप्त या अल्प स्तनपान होता है वो बच्चे भी आसानी से शिकार होते हैं। प्रैक्टिसिंग ऑफ पुअर हाइजीन और अनहाइजीनिक बॉटल फीडिंग भी फैक्टर है डायरिया बढ़ाने के लिए। डायरिया के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहली चीज जो मैंने बताई कि मल में अनायास रूप से पानी की मात्रा का बढ़ जाना, पेट में ऐंठन होना, उल्टी होना, मछली होना, बुखार आना, ये सब दस्त के लक्षण हैं। बच्चों में दस्त को लेकर यह भी धारणा है कि दांत निकलने के कारण बच्चों को उल्टी दस्त होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से एक मिथ्या है। अगर किसी बच्चे को उल्टी दस्त होते हैं तो क्या करें? क्योंकि कारण कुछ भी हो, बच्चों में पानी की कमी होना स्वाभाविक है। बच्चों को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन है या नहीं, इसके लक्षण कैसे पहचानें? बच्चे को बार बार प्यास लगना, चिड़चिड़ा होना, आंखों का गड्ढे में धंस जाना, मुंह का सूखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पेशाब का कम होना या ना होना, या फिर बच्चे का सुस्त हो जाना, बच्चे का खाना ना खाना। अगर बच्चा सुस्त होता है, पेशाब नहीं करता है और खाना नहीं खाता है तो ये गंभीर लक्षण हैं। इसमें आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं या तुरंत बच्चे को लेके अस्पताल जाएं। कारण कुछ भी हो, उपचार में सिर्फ 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है ORS और जिंक, दूसरी चीज है खान पान, तीसरी चीज है सफाई। करंट गाइडलाइंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उपचार में ORS का घोल और जिंक का प्रयोग करें। उल्टी दस्त की शुरुआत होने पर घर पर उपलब्ध चीजों से आप पानी की कमी रोक सकते हैं। घर में बना चावल का माड़, दाल का पानी, वेजिटेबल सूप, नारियल पानी और गाजर का सूप, मट्ठा इत्यादि बच्चों को तुरंत देना शुरू करें। आजकल सरकारी संस्थानों में बाजार में प्रचुर मात्रा में जीवन रक्षक घोल उपलब्ध है, जहां से आप इन्हें लेकर उचित मात्रा में पानी मिलाकर बच्चों को बार बार दे सकते हैं। घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए 1 लीटर

0: पानी उबालकर उसे ठंडा करें। अब उसमें 8 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिलाएं। इसे चम्मच द्वारा या गिलास द्वारा बच्चे को धीरे धीरे पिलाते रहें। इसमें स्वादानुसार नींबू का रस या संतरे का रस भी आप मिला सकते हैं। 10 में बच्चों को क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। ग्लूकोज पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या चाय बच्चों को बिल्कुल ना दें। बच्चे को बराबर मात्रा में खाना खिलाते रहें। यह भी एक मिथ्या है कि उल्टी 10 में समस्या होने पर अक्सर लोग खाना देना बंद कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और खाना अच्छे से खिलाना चाहिए क्योंकि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उल्टी होने पर भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खिलाते रहें। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को स्तनपान कराते रहें। सफाई का हर संभव ध्यान रखें। हर बार मल साफ करने के बाद हाथ धोएं। खाना पकाते समय, खाना परोसते समय और खाना खिलाते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें और बच्चों को भी बार बार हाथ धोना सिखाएं। खाना खाने से पहले एवं बाद में अवश्य हाथ धोएं। बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि आजकल डायरिया के टीके भी हैं उपलब्ध, जिनको लगवाना चाहिए। किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास लेकर जाएं? प्यास बहुत अधिक लगने पर, मुंह सूखने पर, पेशाब की मात्रा में कमी आने पर या 6 से 8 घंटे के बीच में पेशाब ना होने पर, अत्यधिक उल्टी हो जाने पर या बच्चा सुस्त हो जाए या बच्चे को मल के साथ खून आने लगे, इस स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। अत्यधिक मात्रा में 10 में पानी का होना भी एक समस्या है। अगर बच्चा उतना पानी नहीं पी पा रहा जितना कि वह पानी लैट्रिन में निकल रहा है, उस स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। आपका एवं आपके बच्चों का जीवन अनमोल है, इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें। 10 होने पर सही मात्रा में जीवन रक्षक घोल और जिंक का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव की वार्ता, बच्चों में डायरिया, कारण और उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स और रात 8 बजे संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये तीनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा 7 बजे से, फिल्मों से भजन 7:10 पे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन और 12:15 पर पंडित सीआर व्यास का ख्याल गायन। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज 8:45 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 9 बजे, 10:05 पर, शाम 5 बजे और रात 8:15 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर दिव्या श्रीवास्तव से और शाम 7:45 पर अंकिता चतुर्वेदी से भजन और गीत सुनिएगा।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में 10:30 पर कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव, सूरज सोनकर और चंद्र प्रकाश पाठक। कार्यक्रम एक ही कलाकार से फिल्म संगीत दिन में 11 बजे आप सुन सकते हैं। बोलते नगमे कार्यक्रम 11:30 पर। आपकी पसंद कार्यक्रम 12:30 पर होगा। 100 बजे पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की महिलाएं सुनेंगी सुमन दुबे से प्रतिमा मिश्रा की बातचीत, महिला स्वास्थ्य समस्याएं और होम्योपैथी। साथ ही संगीता राय से लोकगीत सुनिएगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 2:30 पर होगा। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर होगा।

पाठ होगा और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम और गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम कहकशा 9:30 पर। तो ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: व्याख्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है?
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब को नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर था सुधा मल्होत्रा का, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में, और अब आइए सुनते हैं हेमलता को अखियों के झरोखों से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से बचन, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 7:20 होने को हैं, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की। कहा, देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता। कहा, युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद कल भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए।
2: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में कल पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध

0: प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मंगलवार को नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। अयोध्या के श्री मणिराम दास छावनी में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।
3: मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर बने 6 लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित समारोह में 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। टीपी नगर पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुसुमनगर, देवरिया, बिहार, महाराजगंज और नेपाल तक आने जाने वाले लोगों की यात्रा में काफी सुविधाजनक हो जाएगी। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के 10 एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे।
4: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत कल प्रदेश के बिजनौर जिले

0: में एक साथ 57 तालाबों की खुदाई का काम शुरू किया गया। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां 409 अमृत सरोवरों के बाद अब 562 चिन्हित स्थानों पर जल संचयन के लिए ढांचा मजबूत किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्रिटिकल जोन में भूजल स्तर में सुधार करना है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 25 जुलाई तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी में खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को जन आंदोलन में बदलने की अपील की। कहा, देश के युवाओं को बनाना चाहिए इसकी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर जताई चिंता। कहा, युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। आज 995 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनिए उस्ताद आमिर खां का ख्याल गायन, राग है बैरागी भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन राग था बैरागी भैरव। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए वाद्य वृंद रचना।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
5: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने

0: वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
1: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति

0: मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई

0: न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूँ। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, दो एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर

0: पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा सेज गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस नीट पेपर लीक इश्यू इन पार्लियामेंट एंड फॉर्मुलेट इफेक्टिव पॉलिसी टू इंश्योर परमानेंट सोल्यूशन टू द इश्यू। इंडिया टू मेक 5 स्मॉल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑपरेशनल बाय 2033। Center approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
3: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the neat paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
4: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
2: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include

0: energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपये मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदामात अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफ़र को भी तेज़ करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर आज़म मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें देही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दिगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये मीटिंग वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई, जिसमें हुक्मरानी को मज़ीद मुअस्सर और मजबूत बनाने, मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने, अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेज़ी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेज़ी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निज़ाम को जदीद बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत का विज़न एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तआवुन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है, ताकि इस चैलेंज से ज़्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वज़ीर आज़म मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने PM कुसुम स्कीम की ज़रिए शोबे की काया पलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फ़ायदा पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायज़ा लिया जाए, ताकि भारत की अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोज़गार के मौक़े और मुस्तक़बिल की मुलाजमतों की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फ़ायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की ज़रूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर व खौज ज़रूरी है।
4: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, लफ्ज अगर दिल से निकले तो सदियों तक गूंजते हैं और आवाज अगर सच्चाई का पैगाम बन जाए तो वे इतिहास रच देती है। सचमुच आवाज केवल ध्वनि नहीं, वो भावनाओं की भाषा होती है, वो उम्मीद होती है, भरोसा होती है, अपनापन होती है, एक ऐसी अदृश्य डोर जो दूर दराज बैठे अनगिनत दिलों को एक सूत्र में बांध देती है। कभी खेतों में हल चलाते किसान के कानों तक, कभी सीमा पर डटे जवान के मन तक, कभी विद्यार्थियों की जिज्ञासा तक, तो कभी किसी बुजुर्ग की तन्हाई तक, एक स्नेहिल आवाज जब पहुंचती है तो वो केवल सूचना नहीं देती बल्कि रिश्ते भी बनाती है। यही शक्ति है रेडियो की और यही पहचान है आकाशवाणी की। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। 23 जुलाई का ये दिन भारतीय जनसंचार के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ये दिन जिसने भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का स्वर्णिम अध्याय लिखा।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आज समय को, पन्ने को हम लोग पलटते हैं, जानते हैं उस सफर को जिसने भारत की आवाज को घर घर तक पहुंचाया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC ने भारत का पहला संगठित रेडियो प्रसारण आरंभ किया। ये भारत के संचार इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उस समय रेडियो कोई सामान्य वस्तु नहीं था, न टेलीविजन था, न इंटरनेट और न ही मोबाइल फोन। समाचार, संगीत, विचार और दुनिया की हलचल लोगों तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम धीरे धीरे रेडियो बनने लगा। कुछ सप्ताह बाद ही 26 अगस्त 1927 को कोलकाता से भी IBC का दूसरा प्रसारण केंद्र आरंभ हुआ और यहीं से भारत की नियमित रेडियो प्रसारण की नींव और मजबूत हुई। शुरुआती संघर्ष जितना ही संघर्ष था उतना ही प्रेरणादायक भी था। IBC एक निजी संस्था थी। धीरे धीरे भारत सरकार ने समझ लिया कि रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि शिक्षा, सूचना और जन जागरण का एक सशक्त माध्यम बना। इसी सोच के साथ 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने प्रसारण सेवा अपने हाथों में ले ली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS की स्थापना कर दी। ये निर्णय था जिसने भारतीय प्रसारण व्यवस्था को स्थायित्व और नई दिशा दी। आकाश वाणी बनने का तक का सफर। समय के साथ रेडियो का महत्व भी बढ़ा। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ये केवल नाम परिवर्तन नहीं था बल्कि भारतीय प्रसारण व्यवस्था के एक नए युग का आरंभ था। इसके बाद रेडियो के माध्यम से समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा, कृषि विज्ञान और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का विस्तार तेजी से होने लगा। 1956 में आकाशवाणी नाम को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। आकाशवाणी अर्थात आकाश से आने वाली वाणी। ये नाम अपने आप में कितना सुंदर, कितना काव्यमय और कितना भारतीय है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि आकाशवाणी शब्द की शुरुआत 1956 से हुई, जबकि इसकी कहानी इससे कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। इस शब्द का प्रारंभिक प्रयोग डॉक्टर MV गोपाल स्वामी ने 1930 के दशक में मैसूर में अपने निजी रेडियो स्टेशन के लिए किया था। बाद में ये शब्द भारतीय जनमानस को इतना प्रिय लगा कि 1957 में से ऑल इंडिया रेडियो का आधिकारिक नाम हिंदी बना दिया गया। आज आकाशवाणी केवल नाम नहीं बल्कि विश्वसनीयता, गरिमा, भारतीय संस्कृति का पर्याय बन चुका है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाए।

रेडियो का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी सादगी है, न चमक न दमक न दृश्य न प्रभाव न दिखावे का आकर्षण, सिर्फ एक सच्ची आवाज और उस आवाज से जुड़ती हुई लाखों धड़कने। यही कारण है कि रेडियो को अक्सर द थिएटर ऑफ द माइंड कहा जाता है, एक ऐसा माध्यम जहां दृश्य श्रोता स्वयं अपनी कल्पना से रचता है। रेडियो सुनते समय हर श्रोता अपनी कल्पना का एक अलग संसार बनाता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

आकाशवाणी ने भारतीय संगीत, लोक कला, साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम किया। शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो, कवि सम्मेलन, नाटक, कृषि दर्शन, युवा कार्यक्रम, महिला जगत, बाल कार्यक्रम या समाचार, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रसारित किया जाता है। इस मंच ने देश के अनेक महान गायकों, कवियों, साहित्यकारों और कलाकारों का पहचान दिलाई। डिजिटल युग में रेडियो आज तकनीक बदल गई है। एफएम रेडियो, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से रेडियो पहले से ही कहीं अधिक सुलभ हो चुका है। श्रोता भारतीय कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन आवाज की गर्माहट, अपनापन, भरोसा आज भी वही है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक सच्ची, संवेदनशील और जिम्मेदार आवाज की अहमियत कभी कम नहीं होगी। रेडियो केवल ध्वनि नहीं बल्कि भरोसा है। ये केवल सूचना नहीं बल्कि संस्कृति का आईना है। ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक अदृश्य डोर है। आइए इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि संवाद की मर्यादा, सत्य की प्रतिष्ठा और सकारात्मक विचारों की मशाल को सदैव जलाए रखेंगे। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की एक बार फिर से दिली मुबारकबाद और सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म डर से, आवाजें हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिवहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर 9:15 होने को है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर। 9:15 होने को हैं, हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में

0: पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
1: शामली जिले की धरती को कीटनाशकों के जहर से बचाने के लिए कृषि विभाग ने समेकित कीट प्रबंधन IPM के तहत सोलर लाइट ट्रैप तकनीक की पहल की है। यूरिया और DAP की बढ़ती खपत के बीच यह आधुनिक तकनीक पर्यावरण की रक्षा करेगी और किसानों को फसल के होने वाले 20-40% आर्थिक नुकसान से बचाएगी। पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार फसल से 3-4 फीट ऊपर लगने वाला यह लाइट ट्रैप सूर्यास्त के बाद प्रकाशों से कीटों को आकर्षित कर नष्ट कर देगा। इससे अंडों की श्रृंखला टूट जाएगी, जिससे गन्ना टॉप बोरर, सफेद गिडार और धान का तना छेदक जैसे कीट पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि पहले चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी ब्लॉकों के लिए 250 सोलर लाइट ट्रैप आवंटित किए गए हैं। 635 की कीमत वाले इस उपकरण पर 431 का DBT अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों को यह मात्र 204 में उपलब्ध होगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। शामली जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सहकारिता गन्ना और इफको की सभी संस्थाओं पर CCTV कैमरे लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। किसानों को जोत के अनुसार संतुलित खाद की पर्याप्त उपलब्धता, उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, अभद्रता और बेवजह हंगामे पर अंकुश को यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी आलोक यादव के निर्देश पर जिले के सभी प्रमुख उर्वरक वितरण केंद्रों को सर्विलांस के दायरे में लाया जा रहा है। इसके तहत सहकारिता विभाग की 43 संस्थाओं, 36 सहकारी समितियों व उनके साथ उपकेंद्रों, गन्ना विभाग के 18 केंद्रों और इफको के 4 केंद्रों पर CCTV स्थापित किए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए खाद के स्टॉक लोडिंग और वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ ही AR कोऑपरेटिव और गन्ना अधिकारियों को तहसीलों क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी है। सभी संबंधित विभाग इन कैमरों को अपने कार्यालयों से लिंक कर सीधे कमांड और मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों को जोत के आधार पर पर्याप्त व संतुलित खाद मिलेगी। कालाबाजारी, ओवर रेटिंग और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए समितियों और बिक्री केंद्रों को CCTV से जोड़ा जा रहा है। स्टॉक की जानकारी भी SMS से मिलेगी। लापरवाही मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शामली में जिला अस्पताल में जल्द ही थायराइड, विटामिन डी और अन्य जरूरी हार्मोन्स की जांच शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक इम्यूनोइस एनालाइजर, हार्मोन्स एनालाइजर मशीन के संचालन का बजट जारी हो चुका है। CMS डॉक्टर मनोज कुमार अखोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रत्येक CHC पर यह सुविधा उपलब्ध करानी है। योजना के तहत POCT के कर्मचारी सभी CHC से मरीजों के सैंपल एकत्र कर जिला अस्पताल पहुंचाएंगे, जहां जांच के बाद रिपोर्ट सीधे मरीजों के व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। एंड्रॉइड फोन न होने पर मरीजों को संबंधित CHC से ही हार्ड कॉपी मिलेगी। इस आधुनिक मशीन से थायराइड प्रोफाइल, इंसुलिन, विटामिन B12, प्रजनन व गर्भावस्था संबंधी हार्मोन्स और कई संक्रामक रोगों की सटीक व तेज जांच संभव होगी। रिजेंट किट और स्टाफ की उपलब्धता के साथ 30 जुलाई तक मशीन के सुचारू संचालन की पूरी संभावना है। शामली जिले ने गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पेराई सत्र 2025-26 के क्रॉप कटिंग परिणामों के आधार पर शामली 969.12 कुंतल प्रति हेक्टेयर के रिकॉर्ड औसत उपज के साथ लगातार 8वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। जिला गन्ना अधिकारी रणजीत कुशवाहा ने बताया कि यह जिला वर्ष 2018-19 से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जहां पिछले 8 सत्रों में उत्पादकता ग्राफ बेहतरीन रहा है। इस बार प्रदेश रैंकिंग में मुजफ्फरनगर 900.96 प्रति हेक्टेयर के साथ दूसरे और मेरठ 825.64 कुंतल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। गन्ना विभाग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय शामली के किसानों की कड़ी मेहनत, लगन और आधुनिक वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाने को दिया है। इससे जिले ने गौरव बढ़ाया है। शामली में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में

0: टीबी मरीजों की खोज में बड़ी सफलता मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने 1 जनवरी से 30 जून तक लक्ष्य से अधिक 1996 मरीजों की पहचान कर 101% की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अथर जमील ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से पोषण योजना के तहत मरीजों को 4 अवधि तक प्रतिमाह 1,000 की आर्थिक सहायता सीधे आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके तहत 100 मरीजों की सूची तैयार कर निक्षय पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिन्हें पहली किस्त के रूप में 3,000 दिए जाएंगे। शेष 6 माह का उपचार पूरा होने पर दूसरी किस्त मिलेगी। विभाग ने जिन मरीजों की बैंक केवाईसी अधूरी है, उन्हें इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन घटने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत मुफ्त जाँच कराने की अपील की है। शामली जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की अनूठी शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम चरण में विभिन्न समूह की 25 महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें ई रिक्शा चलाने के लिए 20 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। करीब 1.5 लाख रुपए की लागत वाले इन गुलाबी रंग के ई रिक्शा पर समूह की पूरी जानकारी अंकित होगी। प्रशासन ने 25 ई रिक्शा का ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही ये सड़कों पर दिखाई देंगे। हाल ही में कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, CMO कार्यालय, विकास भवन और पुलिस ऑफिस जैसे प्रमुख सरकारी दफ्तर पूर्वी यमुना नहर पर स्थानांतरित हुए हैं, जिससे वहाँ लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। यात्रियों की सहूलियत और महिलाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में इन्हें इसी रूट पर चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक यादव ने बताया कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आगामी चरणों में पिंक ई रिक्शा को पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा।
1: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपराड़ा यादव ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अपराड़ा यादव ने मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस शिक्षा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। उपाध्यक्ष अपराड़ा यादव ने स्कूल चलो अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपाध्यक्ष ने वन स्टॉप सेंटर एवं पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र में 10 बच्चे भर्ती पाए गए। उपाध्यक्ष ने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाओं की जानकारी भी ली। उपाध्यक्ष ने कहा कि NRC से वापस लौटने के बाद भी बच्चों की नियमित देखभाल की जाए ताकि कुपोषण की पुनरावृत्ति न हो। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शैक्षिक कैशलेस शिक्षा योजना का शुभारंभ करने से शिक्षकों में काफी खुशी है। गंभीर बीमारियों का इलाज कराना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने अब इसे आसान कर दिया है। इस योजना से शिक्षकों को बहुत फायदा होगा, शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। अम्बेडकर नगर में विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से यूनिफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग एवं स्टेशनरी के लिए धनराशि भेज दी गई है। प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए भेजा गया है। अम्बेडकर नगर के प्रभारी और प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिले के अलग अलग ग्राम पंचायतों में आयोजित जन चौपालों में शामिल हो रहे हैं। श्री राजभर ने कहा कि सरकार प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों में राहत चौपाल के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तहसील टांडा के बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों में 7 जुलाई से राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल में आपदा से बचाव एवं राहत उपाय की जानकारी दी जा रही है। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर फलदार पौधों का भंडारा आयोजित किया गया। ट्रेड में आयोजित इस भंडारे में फरियादियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को फलदार पौधे वितरित किए गए। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता, जन जागरूकता एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। अम्बेडकर नगर में समरस वन स्थापना के तहत लगभग 10 लाख पौधों का रोपण किया गया। कटेहरी विकासखंड के ग्राम पतौना में स्थित अम्बेडकर पार्क में समरस वन की स्थापना का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। अंबेडकर नगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लोहिया भवन सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 184 सड़क सुरक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक अंबेडकर नगर में संपन्न हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष व जिलाधिकारी को आयोग के गठन के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व पिछड़ेपन प्रकृति कारण आदि की समीक्षा की गई। अंबेडकर नगर में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों की समस्या के निदान के संबंध में भारत सरकार के टेक्सटाइल निदेशक अश्विनी पांडे और DM ईशा प्रिया ने बुनकरों और उद्यमियों के साथ बैठक की। टेक्सटाइल निदेशक ने इकाइयों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने बुनकरों की समस्याओं से टेक्सटाइल निदेशक को अवगत कराया। अंबेडकर नगर में इस समय खेती किसानी का काम तेजी से चल रहा है। धान की रोपाई का काम अपने आखिरी चरण में है। मानसून के आने और बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। ज्यादातर किसान इस समय खेतों में खाद की बुआई कर रहे हैं।

0: जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अम्बेडकर नगर में भूमि विवादों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए लोक महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टांडा तहसील क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा और SDM पुष्पेंद्र पटेल की मौजूदगी में लोक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 3 विवादों का निपटारा किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल में अभी आपने सुनी शामली और अंबेडकर नगर जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी के
2: प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर हमारा अगला कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सामाइन, आकाशवाणी लखनऊ के उर्दू प्रोग्राम के माहाना सिलसिले जायका में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर, आदाब कबूल फरमाएं। सामाइन, खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं बल्कि तहजीब, मोहब्बत, सकाफत, रिवायत और मेहमान नवाजी की एक खूबसूरत अलामत भी है, और इन जायकों को तख्लीक करने में एक माहिर शेफ का किरदार, मेहनत, तजुर्बा, तख्लीकी सलाहियत और लगन भी शामिल होती है। इसी सिलसिले की आज की किस्त में आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ और तजुर्बेकार शेफ जनाब रोशन साहब, जिन्होंने अपने जायके और महारत से बेशुमार लोगों के दिल जीते हैं। उनसे हम उनके पेशावराना सफर, खाना पकाने की फन, नई तराकीब, बावर्ची खाने की एहतियातों और जायकों की दुनिया से मुतालिक दिलचस्प गुफ्तगु करेंगे। आइए गर्मजोशी के साथ उनको अपने उर्दू प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
3: मेरा नाम रोशन है और मैं क्लार्क अवध लखनऊ में शेफ हूँ। मैं 25 साल से खाना बना रहा हूँ और खाना खिला रहा हूँ। खाना बनाना ही मेरा शौक है और खाना खिलाना उससे भी बड़ा शौक है, क्योंकि मैं अभी लखनऊ में हूँ तो बोलते ना, तहजीब से आप खाना बनाओ और तहजीब से आप खाना खिलाओ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं इन 25 सालों में इंडिया के ऑलमोस्ट सभी जगहों पर काम किया है, जैसे कि हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर, मुंबई, गोवा, ऑलमोस्ट सारे शहर को टच किया है, बिकॉज हर शहर में अपना ही एक जायका है। बट इन सब से जो मुझे मेरा पसंदीदा जायका है और खाना है वो लखनवी फूड, क्योंकि लखनवी फूड इस हम कहते हैं रॉयल कुजीन ऑफ इंडिया। ये नवाबों का शहर, नवाबी खानों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि यहाँ का खाना बिरयानी सब बहुत ही अच्छा है, काकोरी कबाब उससे भी अच्छा है, एंड एक और कबाब है वो है गलौटी कबाब। इन सब चीजों का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इनका जायका अगर इन खानों को दिल से बनाया जाए तो इनके जायकों के सिवा किसी और चीज का खाने का मन ही नहीं करेगा।
2: बिल्कुल,
3: तो थैंक यू लखनऊ, लखनऊ के वासियों को मेरा दिल से नमस्कार।
2: सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने शेफ बनने का फैसला कब और क्यों किया?
3: सर मैं शेफ की पढ़ाई 1998 में स्टार्ट किए थे, होटल मैनेजमेंट करने का सोचा था। उसके पहले मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ही होटल मैनेजमेंट किया था, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि आप ये करो, उसके बाद इनके चार डिस्ट्रिक्शन हैं, उनमें से आपको जो पसंद होगा उनमें जाना। तो हमने 3 साल तक की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे खाना ही बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेफ ही बनूंगा।
2: बिल्कुल,
3: और उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं सोचा, एंड मेरा फोकस था कि मुझे एक अच्छा शेफ बनना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है। खाना खिलाना पहले से शौक था, इसलिए मैंने खाना बनाना सीखा और खाना खिलाना भी अच्छे से सीखा, क्योंकि ये तहजीब आपको अपने घर से ही मिलेगी।
2: बिल्कुल, एक कामयाब शेफ बनने के लिए किन किन खूबियों का होना आपकी नज़र में ज़रूरी है?
3: आज की डेट में मेरी नज़र में कामयाब शेफ बनने के लिए आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है।
2: बिल्कुल,
3: और उसके अलावा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं।
2: बिल्कुल,
3: और किस जगह का खाना बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी। तो तीसरी चीज़ है कि आपका नाक जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, समझना, मतलब आपको पता चल जाए कि आप क्या बना रहे हो और उसका फ्रेग्रेंस क्या है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं हर इंग्रेडिएंट का एक कैरेक्टर होता है, वो क्या फ्लेवर, जैसे इलायची का फ्लेवर हो गया, दालचीनी अगर यूज़ करते हैं दालचीनी का हो गया, दगड़ फूल यूज़ करते हैं तो उनका फ्लेवर, ये सब फ्लेवर आपको आपके
2: दगड़ फूल क्या होता है?
3: दगड़ फूल एक गरम मसाला का पार्ट है।
2: अच्छा अच्छा,
3: क्योंकि फ्लावर की तरह आता है, जंगली है, बट उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है।
2: अच्छा,
3: जनरली वो वेस्टर्न खाने में यूज होता है।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो वो सारे चीजों को रखते हुए आपको समझना चाहिए। उसके अलावा आपको नॉलेज रखना है कि आपको खाना कितने लोगों का बनाना है, कैसे बनाना है, किस कुकिंग स्टाइल से बनाना है, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे ही कुकिंग स्टाइल चेंज करेंगे खाना कुछ और बन जाएगा।
2: जी,
3: तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है।
2: मतलब नाक की अहमियत बहुत है,
3: नाक की अहमियत, आपकी जीभ की अहमियत, आजकल
2: नाक और जबान की अहमियत बहुत है,
3: बहुत अहमियत है एक अच्छे शेफ बनने के लिए।
2: बिल्कुल,
3: एंड लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज के यंग जनरेशन की हैबिट हो गई है गुटखा, सिगरेट, पान,
2: जी,
3: मसाला।
2: जी, बिल्कुल।
3: तो मेरा एक ही गुजारिश है, जो भी यंग जनरेशन शेफ है, इन 2-3 चीजों से आप दूर रहो तो यू बिकम अ बेस्ट शेफ इन इंडिया, और
2: बिल्कुल
3: इंशाल्लाह आप वर्ल्ड के भी शेफ बन सकते हो।
2: सर आपकी नजर में अच्छे खाने की असल पहचान क्या है?
3: आज के रेट में सर खाने की पहचान होती है कि आपने कैसे उसको परोसा है, किस तरह

0: जीभ से
1: जी
0: किस बर्तन में तहजीब डाला है, कि उसमें कितना प्यार डाला है, देखने से ही पता चल जाता है कि आपका खाना कैसा बना होगा। उसके बाद आपका टेस्ट है, आप जैसे ही खाओगे आपके मुंह में आएगा वो क्या बनाया है।
1: बिल्कुल
0: जैसे काकोरी कबाब, काकोरी कबाब शिद्दत से बनाई जाती है, सिगरी पे बनाई जाती है, रोस्ट होता है, बट वो आप दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट
1: बिल्कुल
0: अगर वो सॉफ्ट नहीं हो और
1: तो
0: इट्स
1: वो
0: नॉट
1: मजा नहीं
0: मेल्टेड
1: आएगा
0: इन
1: खाने
0: माउथ,
1: में।
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मुंह में जाने के बाद वो घुले ना
1: बिल्कुल
0: तो पता ही नहीं चलेगा कि काकोरी है या सीख कबाब है।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: वो चीज़ें मुझे लगता
1: काकोरी
0: है
1: और सीख कबाब में क्या फर्क होता है सर?
0: सर,
1: कुछ
0: काकोरी जो है बहुत टाइम एंड बहुत दिक्कत वाला प्रिपरेशन है, क्योंकि
1: अच्छा
0: इसमें इतना मिंस किया जाता है मटन को, इतनी सारी गरम मसाला का यूज़ होता है, फ्लेवरफुल होता है। एंड ये काकोरी कबाब का इन्वेंशन इसलिए किया गया था कि नवाब साहब थे हमारे
1: जी
0: जो जिनके दांत टूट गए थे, उनको
1: अच्छा
0: कबाब खाना था,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: इसलिए उन्होंने खान सामा को बोला कि ऐसा कबाब बनाओ जो हम खा सके। तो खान सामा ने उस दिन रात के लिए उन्होंने काकोरी कबाब बनाया, नवाब साहब को उतना ही पसंद आया जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था
1: कितना अच्छा
0: कबाब,
1: बन जाएगा।
0: हाँ ये गोश्त का कबाब इतना अच्छा बनेगा जो जिसके लिए दांत की जरूरत नहीं पड़ी।
1: और ये सीख कबाब?
0: सीख कबाब थोड़ा सा हार्ड होता है, कीमा होता है बारीक कीमा, बट
1: अच्छा
0: काकोरी कबाब के जैसा नहीं होता। ये
1: अच्छा
0: सीख कबाब आयरन रॉड पे लगा के इसे तंदूर में रोस्ट किया जाता है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी,
1: आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है जिसे बनाना आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
0: ऐसे तो मैं पसंदीदा डिश मेरा एक है पनीर हजरत महल,
1: अच्छा पनीर
0: ठीक
1: हजरत
0: है,
1: महल जो
0: बिकॉज
1: फलकनुमा
0: मैं
1: में
0: आज
1: बनती
0: के डेट में जो फलकनुमा में बनता
1: है।
0: है।
1: जी जी
0: एंड लेकिन मैं कोरमा बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, चिकन कोरमा,
1: अच्छा
0: एंड उसके साथ खमीरी रोटी खाना बहुत पसंद करता हूँ।
1: खमीरी रोटी।
0: हाँ जी
1: आजकल लोगों के खानों में आपको क्या तब्दीलियां नजर आती हैं?
0: सर, हमारे यहाँ अभी 3 जनरेशन चल रहा है।
1: जी
0: जनरेशन वाइज अगर देखा जाए तो लोग जो टीनेजर्स हैं, जो 17-18 से लेके 25-26 तक के हैं,
1: बिल्कुल
0: वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ गए हैं।
1: बहुत ज्यादा
0: हेल्दी
1: दिख
0: फूड
1: रहा
0: खाना पसंद नहीं करते हैं उनको, चिकन बर्गर, पिज्ज़ा,
1: है
0: नूडल, पास्ता,
1: मोमोज
0: इन सब
1: वगैरह।
0: चीज़ों, मोमोज, इन सब चीज़ों, जबकि अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ भी बनता था, और पुराने ज़माने में जो हम बोलते ना कि आज से 20 साल पहले रोटी की महत्व जो था, बेसन की रोटी,
1: जी
0: भाकरी की रोटी,
1: ये
0: इन
1: आजकल
0: सब,
1: देखने नहीं
0: हाँ
1: मिलती
0: इन
1: है।
0: सब चीज़ों में ग्लूटीन कम होता था। अब
1: जी
0: क्या है ना कि हम ग्लूटीन मैदे में बनता है, क्योंकि आप जब भी मैदा आप डो बनाओगे मैदे का, तो उसमें आप रबड़ जैसा फीलिंग आएगी,
1: बिल्कुल
0: और जितनी बार आप खींचोगे फिर छोड़ोगे वो दोबारा हो जाता है। ग्लूटीन इस काइंड ऑफ चिंगम जो हम खाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: बात।
0: वैसे ही है, ग्लूटीन आप खाते हो आपके स्टोमक में कहीं पे भी जाके अटक जाता है, चिपक जाता है वो, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो
1: हम
0: गई
1: लोग
0: हैं।
1: जिसे वो तंदूरी आजकल ले आते हैं आसानी के लिए घर पे
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: बनाने पड़े,
0: सर,
1: तो ये कैसा है तंदूरी खा?
0: तंदूरी मीन्स सोया चाप, ये सब की बात कर रहे हो?
1: नहीं, तंदूरी रोटी होती है ना।
0: तंदूरी रोटी भी ऑलमोस्ट उसमें से चोकर निकाल दिया गया है, वो मैदा के
1: मैदे की अक्सर
0: पहले
1: लोग
0: फॉर्म
1: बनाते
0: में,
1: हैं।
0: जो जैसे जहाँ से मैदा स्टार्ट होता है बनना, गेहूं
1: जी
0: वो पीस के ही मैदा बनता है, तो लास्ट फॉर्म जो आप रोटी देख रहे हो ना, जो ऑलमोस्ट मैदा के रूप में हो गया, आप रोटी आज के डेट में खा रहे हो,
1: जी
0: चोकर को हमने निकाल दिया, जिसमें कि फाइबर होता है उस हमने हटा दिया है।
1: हटा दिया।
0: आप चोकर वाला आटा यूज़ करो, आपके स्टमक को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उतना ही फ्रेश रहोगे जितना फ्रेश खाना खा रहे हो, उसके बाद भी आपको
1: आजकल
0: फीलिंग
1: हमारे
0: रहेगा।
1: घरों में ये होता है जब हम आटा पिसाने ले जाते हैं तो कहते हैं कि, औरतें कहती हैं कि बहुत महीन आटा पिसो,
0: हाँ, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी
1: इतना
0: होता है ना सर, देखो जितना वो महीन होगा वो
1: जी।
0: उतना रबड़ बनेगा, और
1: तो ये क्या
0: उसको
1: फायदेमंद है या
0: नहीं, ये नुकसानदेह है, क्योंकि
1: नुकसानदेह?
0: ये ग्लूटीन फॉर्म में
1: बिल्कुल
0: आता है। आप जितना दरदरा खाना खाओगे आप उतना ही अच्छा
1: हमारे सेहत के
0: करोगे,
1: लिए बेहतर है।
0: हाँ सेहत के लिए बेहतर है।
1: बिल्कुल
0: आप बाजरा खाओ, बेसन खाओ, क्योंकि इसमें ग्लूटीन नहीं है, इसमें वो रबड़ जैसा फॉर्म नहीं है,
1: जी जी बिल्कुल।
0: वो नहीं है
1: तो बावर्ची खाने में सफाई की कितनी अहमियत होती है?
0: सर। सफाई तो हर जगह होनी चाहिए, नॉट ओनली
1: बिल्कुल
0: बावर्ची, ठीक है, लेकिन बावर्ची में बहुत ज़्यादा हाइजीन का महत्व है। आपको हर चीज़ साफ सफाइयत रखना चाहिए। आप क्रॉस कंटेमिनेशन होने का ज़्यादा चांसेस है, मतलब क्योंकि हर चिकन, जैसे चिकन है उसका कैरेक्टर अलग है, आप अगर मटन पका रहे हो उसका कैरेक्टर अलग है,
1: अलग है।
0: आप फिश पका रहे हो उसका कैरेक्टर अलग है, वेजिटेबल में भी अलग अलग वेजिटेबल्स के कैरेक्टर
1: बिल्कुल
0: अलग
1: अलग
0: है।
1: अलग
0: आप एक साथ सबको रख दोगे तो सब कैरेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, बैक्टीरिया फॉर्म होगा, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है,
1: अच्छा
0: आप
1: नहीं हो।
0: बीमार पड़ सकते हो। दूसरी
1: बिल्कुल
0: चीज़, आप खाना बनाने से पहले अपनी सफाई को सैनिटाइज करो, जिस जगह पे बना रहे हो, जिस बर्तन में बना रहे हो, उसको अच्छी तरह से धो, क्लीन करो, फिर
1: जी
0: बाहर खाना बनाना स्टार्ट करो। फिर जब आपका खाना बन जाता है तो जिस बॉल में रखोगे उसे भी अच्छी तरह से क्लीन करो, साफ
1: बिल्कुल
0: करो, उसके बाद आप उसे रख के फिर अच्छे से ढक्कन लगाओ। खाने का भी एक टेम्परेचर होता है कि आप इतने से इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खाना खा सकते हो, इससे और इससे सेंटीग्रेड पे बैक्टीरिया लाखों करोड़ों के स्पीड में बढ़ता है। आप देखोगे कभी कोई खाना खाने के बाद किसी का स्टोमक अपसेट हो जाता है,
1: बिल्कुल होता है।

0: ठीक है, किसी को डायरिया हो जाता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, ये बैक्टीरिया फॉर्म होने की वजह से ही होता है,
1: जी
0: जिसको हम
1: जैसे
0: फूड
1: हम लोग
0: पॉइजनिंग
1: जैसे
0: कहते
1: हमारे
0: हैं।
1: यहाँ कुछ खाने बचते हैं तो उसको फ्रीज में रख दिया जाता है, तो फ्रीज का खाना कैसा है?
0: सर फ्रीज में बैक्टीरिया, अगर फ्रीज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है
1: अच्छा
0: तो बैक्टीरिया फॉर्म नहीं होता।
1: अच्छा
0: और
1: चार
0: आप
1: डिग्री
0: हाँ
1: सेंटीग्रेड
0: हाँ लेकिन उसकी भी सर्टन टाइम है कि आप
1: जी
0: इसके बाद ही इतने दिन तक ही रख सकते हो या इतने देर तक ही रख सकते हो,
1: बिल्कुल
0: उसके बाद आप जब भी कोई खाना गर्म करते हो या पकाते हो तो आपको उसको 65 डिग्री एवव गर्म करना है।
1: 65 डिग्री
0: हाँ एवव गर्म करना है, उसके बाद ही वो खाना खाना
1: खाना
0: चाहिए,
1: नहीं चाहिए
0: ठंडा करके खाना नहीं चाहिए क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: बैक्टीरिया फॉर्म होता रहता है।
1: वो अभी ये कुछ दिन पहले की बात है कि हम लोग बाहर गए थे तो उन्होंने फ्रीज का ही चावल हम लोगों को खिलाया,
0: नहीं
1: होटल वालों
0: वो
1: ने,
0: नहीं
1: वो
0: नहीं वो
1: रखे हुए
0: गलत
1: थे फिर
0: बात
1: मेरे ख्याल
0: है।
1: से ला के रख दिया
0: नहीं
1: उन्होंने।
0: जो चीज़ें फ्रेश बननी चाहिए वो फ्रेश ही बननी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: जो चीज़ें फ्रेश नहीं बननी चाहिए उसमें आपको वो खाना ही नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपको लगे कि आपका स्टमक खाना खाने के बाद अपसेट हो।
1: बिल्कुल
0: आप डायरेक्ट मना कर दीजिए कि मैं, आप हमें टाइम ले लीजिए, आप हमें फ्रेश खाना दीजिए बना के,
1: बिल्कुल
0: कोई बात नहीं। आप एक आधे घंटे की जगह पर आप 1 घंटा ले लीजिए बनाने में,
1: जी
0: लेकिन प्लीज़ मेक अ गुड फूड,
1: गुड।
0: हेल्दी फूड, गुड फूड।
1: सर लखनऊ के पकवानों की कौन सी खसूसियत उन्हें दुनिया भर में मुनफरिद बनाती है,
0: दुनिया
1: मतलब
0: भर में
1: अलग
0: लखनऊ
1: बनाती है?
0: बहुत फेमस है,
1: जी जी
0: इनका जायका ही बहुत ही अच्छा
1: अलग
0: है,
1: है
0: अलग है।
1: जी
0: आप उतने ही प्यार, जितने तहजीब से यहाँ के लोग खाना बनाते हैं, जितने प्यार खाने में डालते हैं, उतना ही खाना हमें प्यार से परोसा जाता
1: परोसा
0: है।
1: जाता
0: हम
1: है
0: खाने भी लोग यहाँ के बहुत ही ज़्यादा लखनवी फूड को प्रेफर करते हैं, एंड नॉट
1: जी
0: ओनली मतलब लखनऊ के लोग, आप
1: जी
0: बाहर भी चले जाओगे तो आपको काकोरी कबाब, बिरयानी और गलौटी, ये तीनों चीज़ तो मिलेगा ही।
1: काकोरी कबाब, बिरयानी या गुलावटी,
0: गलौटी,
1: ये तीनों
0: हलावट
1: चीज़ें
0: कबाब, ये तीनों
1: कहीं भी
0: चीज़
1: मिल
0: आप
1: जाएंगी
0: कहीं भी
1: हमें
0: मिलेगा क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस चीज़ है सर।
1: जी।
0: लेकिन इतना आसान भी नहीं है, आप बिरयानी, काकोरी और
1: बनाना
0: गलौटी
1: इतना आसान
0: बनाना
1: भी नहीं
0: बहुत है
1: जी
0: क्योंकि बहुत पेशेंस होता है, रखना पड़ता है इन तीनों को
1: जी
0: बनाने के लिए। आप स्ट्यू भी जाओगे तो आपको स्ट्यू भी मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड,
1: जी
0: ठीक है, जो सुबह मॉर्निंग में स्ट्यू खाते हैं खमीरी रोटी के साथ
1: बिल्कुल
0: या फिर निहारी खाते हैं। अब पहले था कि निहारी आपको नेकल से बनता था, जो बकरे का पैर
1: पैर
0: होता है
1: होता था
0: उससे बनता था, जिसको हम निहारी गोश्त बोलते हैं,
1: बोलते
0: लेकिन आज के डेट में लोगों ने उसे भी चेंज करके निहारी गोश्त कर दिया
1: गोश्त
0: है।
1: भी कर दिया आ रहा है,
0: हाँ
1: एडमिशन कर दिया है
0: लेकिन निहारी का मज़ा तो निहारी में ही है,
1: पाए वाली
0: पाए
1: निहारी
0: वाले
1: में
0: निहारी
1: जी
0: में।
1: जी अगर आपको किसी बैनुल अक्वामी शख्सियत के लिए खाना तैयार करने का मौका मिले तो आप कौन सा पकवान उनको पेश करेंगे और क्यों?
0: हाँ अगर मुझे ये चांस मिले किसी अच्छे
1: बड़ी
0: सेलिब्रिटी के
1: शख्स
0: लिए,
1: हाँ
0: बड़े शख्सियत के लिए या फिर जो आउट ऑफ इंडिया
1: कंट्री
0: से
1: है
0: आए
1: हाँ
0: हुए
1: जी
0: हैं उनके लिए, तो मैं लखनवी फूड ज़रूर बनाना पसंद करूँगा, उसमें भी कोरमा, बिरयानी एंड काकोरी कबाब।
1: अच्छा। नए शेफ्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जिसमें आना चाहते हैं कि हमें भी शेफ
0: नए
1: बनना है?
0: शेफ के लिए बस एक ही है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर फोकस होना चाहिए, कुछ करने की लगन होनी चाहिए
1: जी
0: कि आपको कुछ करना है और आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो ये सब चीज़ें फोकस होनी चाहिए एंड
1: जी
0: नॉलेज कि आप किस तरह का शेफ़ बनना चाहते हैं, इंडियन बेस्ड शेफ़ बनना चाहते हैं या ओवरऑल वर्ल्ड कुजिन का शेफ़ बनना चाहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ाई स्टार्ट करो एंड उस पर आप पूरे फोकस के साथ काम करोगे, एक दिन आप ज़रूर एक अच्छा शेफ़ बनोगे।
1: बनोगे बिल्कुल। क्या आपने कभी किसी मुश्किल सूरत हाल में भी बेहतरीन खाना तैयार किया है? अगर हाँ तो तजुर्बा कैसा रहा आपका?
0: तजुर्बा मैंने बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया है,
1: ये
0: मैं
1: मुश्किल ऐसा वक्त आ गया कि
0: मुश्किल,
1: मुझे जल्दी से खाना बनाना है
0: हाँ मैं
1: और
0: कश्मीर जम्मू में था और
1: जी
0: मुझे अब्दुल्ला साहब के लिए खाना बनाना था, उनके प्रोटोकॉल बहुत होते हैं,
1: अच्छा
0: पहले उनका खाना चेक होता है एंड उसके बाद फूड इंस्पेक्टर खाना को चेक करते हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो भी खाना चेक करते हैं, तब जाके वो खाना आप उनके वो में जा जोन में ही रह के आप खाना बना सकते
1: जी
0: हो
1: जी जी
0: क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद वो चेक होने के बाद ही सर्व होता है। तो मुश्किलें आती हैं बट अच्छा लगता है कि मैंने, आई फील प्राउड कि मैंने उनके लिए भी खाना बनाया
1: खाना
0: है।
1: बनाया। मुख्तलिफ रियासतों या मुल्कों के खानों में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर करती है?
0: सबसे ज़्यादा है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड प्रिपरेशन, वहाँ के लोग बहुत मायने रखते हैं, जो कि आपको बोलते हैं ना इंडिया का
1: जी
0: धरोहर है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ का खाना है, कि आप खाना अगर दिल से बना रहे हो तो
1: जी जी
0: खाना अच्छा ही बनेगा
1: बिल्कुल
0: और आप पूरा वर्ल्ड सर्च कर लोगे, हर घर में शेफ़ नहीं मिलेगा, पर इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर
1: हर
0: घर
1: जगह शिव
0: में
1: मिलेंगे,
0: शेफ़ है, हर घर में
1: घर
0: शेफ़
1: में
0: है,
1: शिव है सही बात
0: किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उनको पता होता है कि मुझे खाना किन के लिए बनाना है
1: बिल्कुल
0: और वो पूरा पूरे शिद्दत के साथ, तहजीब के साथ, दिल से खाना बनाती हैं। और
1: बिल्कुल
0: आप किसी के भी घर में चले जाओ कोई नहीं बोल सकता कि आपके घर का खाना अच्छा नहीं है,
1: अच्छा नहीं बिल्कुल सही
0: वो
1: बात
0: कभी चेक नहीं करती शेफ़ की तरह कि खाना
1: बिल्कुल
0: हमने बनाया और चेक करना है। मैं उनसे बड़ा शेफ़ किसी को नहीं

0: मानता, एक माँ जो फीलिंग से खाना बनाती है उसको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या खाना पसंद है या मेरे शौहर को क्या खाना पसंद है,
1: बिल्कुल
0: वो खाना कोई नहीं बना सकता।
1: नहीं बना सकते बिल्कुल। सर हमारे सामईन को कोई ऐसी डिश बनाना सिखाएं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद हो, उसके क्या क्या लवाजमात हैं, सब
0: मैं
1: चीज़ें
0: तो
1: बताइए।
0: सबसे अच्छा जो जो पसंद करता हूँ, घर में पराठे बनते हैं,
1: जी जी
0: आप उसमें पराठे बनाने के लिए आटा का यूज़ करते हो, घी का यूज़ करो, अजवाइन का यूज़ करो, हल्का सा सॉल्ट
1: मतलब
0: डालो।
1: सादे पराठे की बात करें,
0: हाँ
1: सादा
0: सादे
1: पराठा।
0: पराठे की बात,
1: जी
0: उसके साथ आप स्ट्यू खा सकते हो, उसके साथ आलू का भुजिया या बैंगन का भुजिया मिक्स वेज खा सकते हो। तो
1: जी
0: सादा पराठा इज़ गुड फॉर हेल्थ। आप उसमें जैसे अजवाइन यूज़ करोगे तो अजवाइन पाचन क्रिया को बढ़ाता है,
1: बिल्कुल
0: और सबसे अच्छा चीज़ बोला जाता है कि आपको डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उसमें अजवाइन का यूज़ करो। डो को गूंथते समय जैसे आटा लिया, सॉल्ट डाला, हल्का सा अजवाइन डाला, उसके बाद अच्छा सा पानी डाल के डो बनाइए, उसको फिर आप 3 लेयर में आप उसे बेलिए, और हर परत में आप अपना घी यूज़ कीजिए, शुद्ध घी,
1: शुद्ध जो
0: मिलावट वाला
1: घर,
0: नहीं।
1: जी, जो
0: और
1: घर पे
0: फिर
1: बनाते हैं
0: हाँ
1: वो
0: जी, घर में
1: इस्तेमाल
0: जो
1: करते
0: बनता
1: हैं।
0: है घी वो आप यूज़ करो,
1: जी
0: एंड फिर उसके बाद तवे के ऊपर सेक के आप उसको प्यार से दाल के साथ खा सकते हो, सब्जी के साथ खा सकते हो, जो
1: जी
0: खाना जो सब्जी आपको पसंद है, वेजिटेरियन खाना तो वो हेल्दी रहता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, लंच आप अपने अनुसार खा सकते हो, मटन भी खा सकते हो, चिकन भी खा सकते हो, हेल्दी होता है।
1: बिल्कुल। एक शेफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ होती है?
0: अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो बहुत ही टफ है, क्योंकि हर दिन हमें नए गेस्टों से मिलना पड़ता है, हर
1: बिल्कुल
0: दिन
1: सही
0: हम एक
1: बात,
0: नए लोगों से मिलना पड़ता है, और इंडिया में ऐसा है कि सबका टेस्ट अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: एंड उनके टेस्ट के अनुसार हमें बना खाना बनाना पड़ता है। पर टफनेस तब आती है कि एक ही टेबल पे 10 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने एक ही चीज़ का ऑर्डर किया। अगर वो अब लोग हैं, सारे जगह से लोग आए हुए हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई लखनऊ से हैं, कोई हैदराबाद से हैं, ईच एंड एवरी पर्सन का टेस्ट अलग होता है, क्योंकि उनका जायका ही अलग है।
1: बिल्कुल
0: और मुझे अगर बोला जाए कि आप एक स्ट्यू बनाओ, लखनवी स्ट्यू, तो मैं तो रेसिपीज़ को, खानों को उसी रेसिपीज से बनाऊंगा जो मुझे पता है जो चीज़ बनता है लखनऊ में।
1: बिल्कुल
0: बट लखनऊ से वो फूड सर्व किया जाता है, पर जो स्पाइसी खाते हैं उनको वो स्ट्यू पसंद नहीं आएगा।
1: बिल्कुल सही बात।
0: अब अगर हैदराबाद के लोग हैं, उनको मैं लखनवी बिरयानी खाने के लिए बोलूं कि सर आप ट्राई करो, तो वो यही बोलेंगे कि क्या इतना फीका खाना है, जबकि लखनवी बिरयानी हैदराबादी बिरयानी से लाख गुना अच्छा है,
1: बेहतर है
0: बेहतर है, सेहत के लिए भी अच्छा है, उसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, रॉयल है, और फिकनेस बहुत ज़्यादा है उसमें। क्या है कि आप यहाँ खाना बनाओगे तो दो घर छोड़ कर फिकनेस जाता है,
1: बिल्कुल
0: कि पता चलता है कि किसी के घर में आज के डेट में
1: क्या बन
0: मेहमान
1: रहा है
0: नवाजी हो रहा है और बिरयानी बन रहा है,
1: बिल्कुल सही बात
0: तो वो है सर। तो ये सबसे बड़ा टफनेस है कि हमें उनको सेटिस्फाइड भी करना है, और दिल से भी सेटिस्फाइड करना है, खाने के साथ भी सेटिस्फाइड करना है।
1: अपने करियर का कोई यादगार वाकया हमारे सामईन के साथ आप शेयर कीजिए,
0: वाकया तो सर बहुत सारे हैं,
1: जो सबसे अहम हो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो हमारे सामईन के साथ शेयर करें।
0: अब मैं एक पार्टी के लिए गया हुआ था
1: जी
0: और 15 अगस्त का दिन था, और मुझे इस सिटी से दूसरे सिटी में जाना था, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखना पड़ता है, बट
1: चलो
0: थैंक्स टू सिस्टम की, सिस्टम ने अलाउ कर दिया और हम अपनी जगह से सफल करके दूसरी जगह पे खाना बनाने के लिए गए। लेकिन एक और टफनेस हो गया कि दिन के जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ बारिश स्टार्ट हो गया, और वो शुक्र था कि जो जिसमें हम खाना सर्व कर रहे थे वो वाटरप्रूफ था,
1: अच्छा
0: बट बहुत मुश्किल से होता था कि खाना हमें शिफ्ट करना है, खाना लगाना है, फिर जैसे ही रिफ़िल करना है खाना, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। बट सारे लोगों की टीम, हमारे टीम और हम वहाँ की टीम जो कंपनी थी वहाँ पे, सबने मिलके उस
1: मैनेज किया
0: पार्टी
1: उसको किस
0: को
1: तरीके से।
0: सक्सेसफुल बनाया।
1: जी तो आखिर में आप हमारे सामाईन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह का खाना खाएं जिससे वो तंदुरुस्त और सेहतमंद भी रहे?
0: सर जहाँ तक मैं फील करता हूँ, हमें हमारे को हैप्पीनेस, खुश रहना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: खुशी इज़ रिक्वायर्ड। खुशी तो तब आती है जब आप अच्छा खाना खाओगे,
1: अच्छा खाना खाएंगे
0: क्योंकि जैसे एक अच्छे कार को चलाने के लिए अच्छे पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए एक अच्छा खाना
1: खाना
0: ही
1: ज़रूरी है।
0: ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन हम मेहनत करते हैं, फिर रात में आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो। अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हमारी सोच अच्छी नहीं होगी,
1: बिल्कुल सही बात
0: हमारी
1: है
0: सोच अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा काम नहीं करेंगे। इसलिए मेरा गुजारिश है सभी से, सभी लोगों से, लखनऊ
1: बिल्कुल
0: वासियों से भी, एंड ऑल ओवर द इंडिया जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ आप हेल्दी खाना खाइए और खुश रहिए, जितना आप
1: बिल्कुल।
0: खुश रहेंगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रोशन साहब, यकीनन हमारे सामईन ने आपके तजुर्बात, मशवरों और ख़यालात से बहुत कुछ सीखा होगा। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने तजुर्बात, मालूमात और दिलचस्प बातों से हमारे सामईन के इल्म में इजाफा किया, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं।
0: बहुत बहुत मेहरबानी, होप कि आप हमारे

0: बातों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार
1: सामाइन, आज के माहाना प्रोग्राम जायका में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगले महीने जायके के एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाजत। आदाब।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिव्या श्रीवास्तव से गीत, और अब आइए सुनते हैं दिव्या श्रीवास्तव से ही भजन, रचना है अभिलाष दास की।

दिव्या श्रीवास्तव के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया है कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगों के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। यह घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री एलिए बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोनास योनोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोब्जे में आकाशवाणी संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया।

0: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हीरो से। आवाजें हैं मनहर उदास और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे।

श्रोताओं, ये आप सुनते हैं फिल्म धुरंधर में अरिजीत सिंह को गीत लिखा है शाश्वत सचदेव और इरशाद कामिल ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म अलग अलग में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। अब आइए सुनते हैं फिल्म एनिमल का गाना, आवाज़ है विशाल मिश्रा की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरविंद कुमार यादव, सूरज सोनकर और चंद्र प्रकाश पाठक से लोकगीत। तो पहले सुनते हैं हरविंद कुमार यादव और साथियों से ये पचरा।

अभी आप सुन रहे थे हरविंद कुमार यादव और साथियों से गंगा गीत। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। और आइए अब सुनते हैं सूरज सोनकर से देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे सूरज सोनकर से दादरा। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी, और अब आइए सुनते हैं चंद्र प्रकाश पाठक से कजरी।

लोकगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार। कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। और ऐसी ही एक जादुई आवाज़ का नाम है किशोर कुमार। एक ऐसा फनकार जिसने हंसी को भी सुर दिए, आंसुओं को भी धुन दी और मोहब्बत को भी आवाज़ दी। अभिनेता, गायक, संगीतकार, गीतकार, निर्माता और निर्देशक, हर किरदार में बेमिसाल, हर अंदाज में लाजवाब। उनकी गायकी में शरारत भी थी, दर्द भी, मस्ती भी थी, तड़प भी। वे सिर्फ गायक नहीं थे, बल्कि हर गीत को अपनी आवाज से अभिनय करने

आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे उस बेमिसाल शख्सियत को जिनकी धुनें आज भी हर पीढ़ी के दिलों में गूंजती हैं। आइए सुरों के उस जादूगर, उस अनोखे इंसान किशोर कुमार को दिल से सलाम करें।

किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बी वेयर ऑफ किशोर यानी किशोर से सावधान का साइन बोर्ड लगा रखा था। एक बार

0: माता एच एस रवेल उनसे मिलने पहुंचे। पैसे मिलने के बाद जब रवेल साहब ने हाथ मिलाया तो किशोर कुमार ने मजाक में उनका हाथ हल्के से काट लिया और बोले, बोर्ड पढ़ा नहीं था क्या? उनके बंगले में कई पेड़ थे जिन्हें उन्होंने नाम दे रखे थे। वे रोज़ उनसे बातें करते थे और उन्हें अपना दोस्त मानते थे। परिवार के लोग बताते हैं कि उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था।
1: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

किशोर कुमार अक्सर कहा करते थे, दूर जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। उनका सपना था कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने जन्मस्थान खंडवा लौट जाएं।

लगभग 92 फिल्मों में 245 गीत किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए गाए। जितेंद्र के लिए 202 गीतों में पार्श्व गायन किया। देवानंद के लिए 119 गीतों में पार्श्व गायन किया और अमिताभ बच्चन के लिए 131 गानों में किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी।

उपलब्ध हिंदी फिल्म डिस्कोग्राफी के अनुसार किशोर कुमार ने लगभग 1142 एकल गीत यानी सोलो सॉन्ग और बड़ी संख्या में युगल तथा बहुगायक गीत गाए। किशोर कुमार ने सबसे ज़्यादा आशा भोसले के साथ लगभग 687 फिल्मों में अपनी आवाज़

लता मंगेशकर के साथ उन्होंने लगभग 343 गीतों में पार्श्व गायन किया। अनुराधा पौडवाल के साथ 39 गीतों में अपनी आवाज़ दी। उषा मंगेशकर के साथ उन्होंने लगभग 33 गीत

मेल प्लेबैक सिंगर्स में जिनके साथ अपनी आवाज़ें साझा की उनमें मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने लगभग 72 गीत गाए, महेंद्र कपूर के साथ

इसके अलावा किशोर कुमार ने मन्ना डे साहब के साथ लगभग 37 गीत गाए, अमित कुमार के साथ 31 गाने गाए, आर डी बर्मन के साथ उन्होंने 18 गीत गाए और शैलेंद्र सिंह के साथ किशोर कुमार ने 18 गाने गाए।

यानी सबसे अधिक युगल गीत किशोर कुमार ने आशा भोसले के साथ गाए। दूसरे स्थान पर लता मंगेशकर हैं, जिनके साथ उन्होंने लगभग 343 गीत गाए।

जहाँ एक ओर किशोर कुमार अपने मेहनताने को लेकर बेहद सख्त थे, वहीं महान फिल्मकार सत्यजीत रे के लिए उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड करने के बाद कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। उन्होंने रे साहब का सम्मान करते हुए फीस लेने से इनकार कर दिया था।

0: ये लो, हम घोड़े से गिर गए।
1: Strepsils Pure Voices, 100% pure and natural. No added flavor, no preservatives.

किशोर कुमार पर केंद्रित एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

एक बार किशोर कुमार को पता चला कि किसी युगल गीत के लिए उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब से अधिक पारिश्रमिक मिला है। उन्होंने निर्माता से कहा कि रफ़ी साहब को उनसे कम भुगतान नहीं होना चाहिए, ये उनके बड़े दिल और साथी कलाकारों के प्रति सम्मान को दर्शाता।

किशोर कुमार ने सबसे अधिक गीत आनंद बख्शी के लिखे गाए। 70 और 80 के दशक में आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी के साथ आनंद बख्शी और किशोर कुमार की जोड़ी ने सैकड़ों लोकप्रिय गाने दिए।

0: किशोर कुमार का व्यक्तित्व उनकी आवाज़ की तरह ही अनोखा था। बिंदास, बेफिक्र, हास्य प्रिय और सिद्धांतों पर अडिग।
1: हमको तरसाए ऐसा कोई साथी।
0: शायद यही वजह है कि वे एक गायक नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार शख्सियतों में गिने जाते हैं।

0: आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने हमने आपको सुनवाए उनके नाम हैं। पहला गीत हमने बेमिसाल फिल्म से लिया था, किशोर कुमार की आवाज़ थी। कार्यक्रम का दूसरा गाना पराया धन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: दिल मेरा लल जाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी।
0: कार्यक्रम का तीसरा गीत हमने लिया था लावारिस फिल्म से, जिसे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। इसके बाद हमने आपको सुनाया था किशोर कुमार की आवाज में आंचल फिल्म का गाना। पांचवा गीत परवरिश फिल्म से हमने लिया था, आवाज़ें थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह की। और कार्यक्रम का ये जो आखिरी गीत आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, इसे हमने लिया कलाकार फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़। आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है हमारा

आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है हमारा खास कार्यक्रम बोलते नगमे।

0: इसको ठुमरी और कजरी के अंदाज में गा दिया।
1: हम ये भी बता दें कि संदेश शांडिल्य ने इसका संगीत तैयार किया है।
0: बहुत
1: सारे
0: सुंदर।
1: गाने जो और जो संगीतबद्ध हुए हैं वो प्रीतम के संगीत निर्देशन में हुए हैं। और जिस हिसाब से कहानी की बुनावट की गई है, जहाँ पर एक शोख लड़की जब फर्स्ट हाफ में जो चुलबुली सी दिखाई पड़ती है, जिसके व्यक्तित्व में जीवन जिंदगी बोलती हुई सी, नाचती हुई सी, घूमती हुई सी दिखाई पड़ती है, और वही लड़की जब सेकंड हाफ में आकर उदास होती है, जब प्रेम से मिले दुख को अपने भीतर वो पाती है, तब उसका व्यक्तित्व कितना थम सा जाता है, कितना रुक सा जाता है।

0: कैसा लगा?
1: नेहा जी देखिए, अभी हम लोग खिलखिला कर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने ये गीत सुनवाया, ये पहला बस इसका मुखड़ा भर सुना है, तो बहुत सारी यादें जो होती हैं जहन में वो दस्तक देने लगती हैं, जो कुछ उदासियां लेकर आती हैं, एक मिलन का ख्वाब भी सजाती हैं, और एक इंतज़ार, जो प्रतीक्षा होती है, उसका जो दर्द होता है, तनाव होता है, वो लगता है कि ये जो बारिश हो रही है और जो होने वाली होगी जब कोई आएगा, तो वो जो बारिश आंसुओं की होती है, वो आंसू की बारिश जो है, वो उस बारिश में यानी सावन में जब ढलेगी तो हरियाली छा जाएगी और उम्मीद की एक रोशनी सी जाग पड़ेगी।
0: जरा सोचिए, जब इम्तियाज़ अली ने जब वी मेट बनाई, बिल्कुल बबली सा किरदार है करीना कपूर इस फिल्म में, उनका नाम गीत है, हैप्पी गो लकी और ठाएं लग रही हैं जैसे डायलॉग हैं, वहीं पे इम्तियाज़ अली ये सोचते हैं कि इस जनरेशन को भी कुछ ऐसे रूहानी गीत दे देना है जिसको वो सदियों तक याद रखें, और उन्होंने जो सोचा हुआ भी वैसा ही। तब उस्ताद राशिद अली खान साहब याद आते हैं, और उन्होंने

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है हमारा खास कार्यक्रम किस्सा गोई, जो कि मिर्जा गालिब पर आधारित है।
1: किस्सा गोई। बेशुमार लम्हों की वो तारीखी इबारतें जो समय की डायरी में पोशीदा थीं, दिलचस्प राज बनकर आज जज्बात की स्याही को छूकर बेसाख्ता मन के पन्नों पर उतर आई हैं, किस्से कहानियों की बयानियां बनकर।
2: और दोस्तों, मन के पन्नों पर उतरती इन्हीं नायाब कहानियों के कुछ नायाब दिलकश पलों को चुनकर हम हाजिर हैं अपने नए कलेवर नए अंदाज में सजे प्रोग्राम किस्सा गोई के साथ। आप सभी को हमारा नमस्कार।
3: नेहा जी,
2: जी
3: बात जब किस्सा गोई की हो तो आंखों में उतर आता है मासूम बचपन, और साथ ही जाग पड़ते हैं कल्पनाओं के वो सारे मंजर जिन्हें हमने कभी दादी नानी के झुर्रीदार हाथों की सलवटों पर करवटे बदलते हुए जहन में उकेरा था।
2: वंदना जी, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरी दादी जो आप कह रहे हैं ना, ये सलवटे और झुर्रीदार, उनके पतले से हाथ, इतना मजा आता था। उनके हाथों को तकिया में समझ लेती थी और सोने में बड़ा अच्छा लगता था। और देखिए, वक्त के साथ जिनमें कभी जीवन की सख्तियां तो दिखी ही, कभी नरमियां भी नजर आई। यानी कहानी कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, तो कुछ तर्जी बया है।
3: तो चलिए, अब हम भी किस्सा गोई के कैनवस पर उकेरते हैं रोचक किस्सों की वो चित्र जिनमें छुपे हैं अदब के रंग।
2: अदब के रंग, ओहो, यानी किस्सा जुड़ा है अदब की दुनिया से। बात समझ में आई, लेकिन कुछ कुछ।
3: ओहो, तो चलिए, कुछ कुछ हुआ है ना
2: जी,
3: उससे गुजरते हुए बहुत कुछ जानने के लिए सुनाते हैं अपने दोस्तों को ये बेहतरीन गजल। क्या पता इसे सुनते हुए हमारे दोस्तों के साथ साथ आप भी समझ जाएं कि आज किस दानिश्वर के जीवन के दिलचस्प किस्से से रूबरू होंगे हम। तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है ये बेहतरीन गजल।

0: वाह बेहद उम्दा मानिक हेज दिल नशीन गजल।
1: देखिए नेहा जी, आप तारीफ गजल की कर रही थी तो वाकई कमाल की गजल थी
0: जी,
1: लेकिन फिलहाल पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके दिमाग के घोड़े कहाँ तक दौड़े और क्या कुछ पता करके आए हैं, जरा मुझे जल्दी जल्दी फटाफट बताइए।
0: दोस्तों देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं धीरे धीरे और ये समझती है ना तुरंत, ये क्या कोई सुपर फास्ट गाड़ी है क्या, है ना। लेकिन फिर भी चलिए, जितने मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े हैं मैं थोड़ा अंदाज लगाती हूँ, है ना। हाँ, पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है वंदना जी।
1: क्यों,
0: ठीक है,
1: आगे निकल गए क्या?
0: आपके दिए क्लू को डिकोड करना मुझे थोड़ा सा दुश्वार तो लग रहा है, कंफ्यूज भी हूँ कि आप बात किसकी करना चाहती हैं, किस्सा कोई कार्यक्रम के अंतर्गत जगजीत सिंह साहब की गजल सुनाती हैं, अदब की बात करती हैं। अदब से एक बात मुझे याद आ रही है।
1: अच्छा,
0: एक तस्वीर उभर आई है।
1: ओहो,
0: मैं बोलूं
1: तस्वीर है, जरा ये बताइए।
0: मैंने जो जहन में सुना देखा जो तस्वीर बन चुकी है उनकी अदब के नाम से, वही लंबे से जिनके माथे पर टोपी है और कुछ गोरे से हैं और जब चलते हैं तो कुछ लोग उनसे बिल्कुल खौफ खाते हैं और कुछ करुणामय स्वर और शब्द उर्दू के अल्फाज फारसी की भी बातें करते हैं।
1: मुझे ये लग रहा है नेहा जी,
0: जी
1: कि क्लू कुछ कुछ जो है वो राज जो था, वो रहस्य जो था, वो पर्दा थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। आप पहुंच रही हैं।
0: पहुंच गई।
1: सच में? हाँ, क्योंकि देखिए बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और हमारे दोस्तों ने तो तुरंत पकड़ लिया होगा जब गजल सुनी होगी, और बात किस्सा गोई की हो रही है, बात अदब की जा रही है।
0: हाँ।
1: और ये गजल किसकी थी जिसकी आपने तस्वीर अभी अभी उकेरी है ना?
0: मिर्जा गालिब साहब की।
1: क्या बात है, तो आपने पकड़ लिया।
0: शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि गालिब साहब को जैसे

0: आप हम और सभी लोग जानते हैं, एक जहन में पाक साफ तस्वीर उभर आती है ना, और ऐसा लगता है जैसे पन्ने दर पन्ने खुलते जा रहे हैं सदियों के जीवन के। नहीं
1: तो देखिए, जब आपने पहचान ही लिया है, और हम दोस्तों को खैर ये भी बताते चलें कि जिक्र होगा आज दोस्तों मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान साहब का, जो अपने तखल्लुस खालिब से जाने जाते हैं और जो उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान शायर रहे हैं, और फारसी कविता के एक प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करने का जो श्रेय है नेहा जी, वो भी उन्हीं को दिया जाता है, यानी गालिब साहब को। और जो मजेदार किस्सा है, देखिए वो आमों के शौकीन थे,
0: आम खाने के,
1: बिल्कुल आम के बहुत शौकीन थे, और आमों के लिए तो वो कहाँ कहाँ से उनके लिए आम मंगाए जाते थे, और आमों को लेकर भी बहुत दिलचस्प किस्से इनके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल आज एक अदब की जब दुनिया की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं नेहा जी, तो कुछ उससे जुड़ा कुछ किस्सा आपको याद आ रहा है?
0: एक मिनट, ये आम वाली बात जानकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई आया याद आया क्योंकि दिमाग पे जोर डालना पड़ता है भाई
1: लेकिन बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते
0: दोस्तों अब हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए सुनाते हैं वो किस्सा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि अदब की दुनिया में गालिब साहब का नाम स्वर अक्षरों में क्यों झिलमिला रहा है। दोस्तों बात उन दिनों की है जब दिल्ली सल्तनत पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज था। बहादुर शाह जफर साहब खुद भी बड़े शायर थे और उनके उस्ताद थे मशहूर व मारूफ शायर शेख इब्राहिम ज़ौक। और कहते हैं कि गालिब और ज़ौक साहब के बीच प्रतिद्वंद्विता उर्दू साहित्य के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है।
1: सच कहा नेहा जी,
0: याद आया?
1: बिल्कुल याद आया
0: जी, आगे की बात।
1: तो दोस्तों हुआ यूं कि एक बार गालिब साहब अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे
0: जी।
1: और ज़ौक साहब पालकी में बैठे हुए वहां से गुजर रहे थे।
0: फिर
1: हुआ यूं कि ज़ौक साहब को आता देख कर गालिब साहब खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो हाजिर जवाबी जो तंजिया अंदाज था उसके लिए भी गालिब साहब बड़े मशहूर हुआ करते थे
0: जी।
1: तो उन्होंने एक मिसरा कहा,
0: बना
1: है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हालांकि उस समय ज़ौक ने मियां गालिब को कुछ कहा नहीं, पर इस तंज की शिकायत नेहा जी बताइए उन्होंने किससे की होगी?
0: बहादुर शाह जफर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने गालिब के नाम शाम की दावत और मुशायरे के लिए न्योता भी भिजवा दिया। असल में इस न्योते के जरिए ज़ौक गालिब को बादशाह सलामत के सामने भेषत करना चाहते थे।
1: लेकिन गालिब साहब भी कम नहीं थे, उन्हें इस बात की भनक तो लग चुकी थी कि दरअसल मामला क्या है, आखिर मरता क्या ना करता। गालिब साहब पहुंचे मुशायरे में, और उनके पहुंचते ही बादशाह सलामत ने सवाल दागा
0: जी
1: कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता कहकर आपने गालिब साहब ज़ौक साहब का मजाक क्यों उड़ाया?
0: और उसके बाद दो घड़ी मिर्ज़ा गालिब साहब सोचे और घबराए, जान बचाने के लिए कह दिया कि ये उनकी नई गजल का एक मिसरा था। असल में दोस्तों मिसरा गजल के एक हिस्से को कहते हैं। इस पर बादशाह ने मिसरे को पूरा करने के लिए कहा। अपनी ही बात में खुद को फंसता देख मियां मिर्ज़ा ने मिसरे को कुछ ये कहकर पूरा किया कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
1: क्या बात है, क्या हाजिर जवाबी है नेहा जी।
0: मतलब उन्होंने ये कह दिया कि गालिब की आबरू क्या है नहीं?
1: लेकिन
0: बचा लिया खुद को,
1: बचाने की कोशिश तो बहुत की उन्होंने। लेकिन ज़ौक साहब बहुत अच्छे से समझ गए थे कि मिर्ज़ा साहब निरी झूठी बातें कर रहे हैं, ये शायरी जो कर रहे हैं, शायरी की आड़ में बचने की कोशिश उन्होंने जो की है वो झूठी बात है। इसलिए गालिब साहब को जाल में फंसाने के लिए उन्होंने खुद ही इसकी खूब तारीफ की, बहुत वाह वाह मुकर्रर किया, और उसके बाद धीरे से महफिल में कहा कि जरा मिर्ज़ा साहब इस गजल को पूरा कीजिए ना।

0: सुनाइए हमें भी।
1: तो दोस्तों हुआ यूं, मिर्जा गालिब साहब ने वहीं बैठे ही बैठे जो गजल कही उसे हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज में। बाखुदा आप सब भी खायल हो जाएंगे मिर्जा साहब की हाजिर जवाबी, अकलमंदी और उनकी सुखन वरी की।
0: और हाँ दोस्तों, जब गजल के बाद मिलेंगे तो जानेंगे कि किस शायर का वो कौन सा शेर था जिस पर फिदा होकर मिर्जा साहब अपना पूरा दीवान न्यौछावर करने को तैयार हो गए थे। फिलहाल तो वक्त हो रहा है इस खूबसूरत गजल के साथ लुत्फ अंदोज होने का, तो मुलाहिजा फरमाइए।

0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1: अर्ज किया है,
2: इरशाद हो।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
3: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।
1: अल्लाह।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।

کیا بات مرزا مقرر

0: हैं और भी दुनिया में सुखन पर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और। तो चलिए इस बयानी में जोड़ते हैं वो खास किस्सा जिसका जिक्र हमने किया था। दोस्तों गालिब के समकालीन ही एक और मशहूर शायर हुए। अब आप बताएंगे कौन हुए?
1: बिल्कुल अरबी फारसी

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचे जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संसद समीक्षा रात 8 बजे। संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर सुनिए पंडित C.R. व्यास का गायन। संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद 12:30 पर। पनघट कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी सुमन दुबे से प्रतिमा मिश्रा की बातचीत, महिला स्वास्थ्य समस्याएं और होम्योपैथी। इसी कार्यक्रम में संगीता राय के गाए कुछ लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:30 पर। संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर बाद 4:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:00। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं रोज की तरह 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे मैयर दीन और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत किसान चर्चा के प्रतिभागी किसान होंगे पन्ना लाल। सात बजकर 7:31 पर काव्य कौमुदी के अंतर्गत बीना मिश्रा की गाई कुछ रचनाएं प्रसारित की जाएंगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत। फिल्म संगीत रात्रि 8:15 पर। सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय 8:30 और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: आकाशवाणी एट 90 की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज।

केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध सारंग में गाया ख्याल। गायक कलाकार पंडित सी आर व्यास।

बजकर 30 मिनट पर ग्रामीण जन सुनेंगे मैयर दीन और साथियों के गाए लोकगीत। इसके अलावा मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत किसान चर्चा के प्रतिभागी किसान होंगे पन्ना लाल। सात बजकर 31 मिनट पर काव्य कौमुदी के अंतर्गत बीना मिश्रा की गाई कुछ रचनाएं प्रसारित की जाएंगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन और गीत। फिल्म संगीत रात्रि 8:15 पर सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय 8:30 और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: रात्रि 8:15 पर। सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय 8:30 और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध सारंग में गाया ख्याल। गायक कलाकार पंडित सी आर व्यास।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में गाया ख्याल। गायक कलाकार थे पंडित सी आर व्यास। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। अब सुनिए संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बारिश के कुछ गाने। कार्यक्रम पेश कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, खिड़की से जरा बाहर देखिए, आसमान ने आज काले बादलों की चादर ओढ़ ली है। हवाओं में वो सोंधी सी मिट्टी की खुशबू है और पत्तों पर गिरती बूंदे कोई सांस छेड़ रही हैं। जी हाँ, आपके शहर में इस बरसात ने दे दी है दस्तक। और मैं हूँ मधु, आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद में बारिश के तरानों के संग। भाई, हमारे श्रोताओं ने भी तो कुछ इसी तरह के गानों की फरमाइश कर दी है कि मधु जी, आज तो फिर रिमझिम के ही गाने होने चाहिए। तो भाई क्यों ना हो, बाहर बारिश की बूंदें गिर रही हैं और अगर आपके हाथ में समय अदरक वाली चाय और गरम गरम पकौड़े हो और रेडियो पर आपका मनपसंद कार्यक्रम चल रहा हो, वो भी बरसात के गानों के संग, तो भाई आज तो दिन ही बन गया। तो फिर चलें आज के इस खास सफर पर, क्योंकि हम आज सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, आज हम उस बारिश की हर बूंद में छुपे उस सुकून को भी महसूस करेंगे जो हमें अपनी ही यादों की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए इस सुहाने मौसम की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के उस एवरग्रीन गाने के संग जिसको बारिश में जरूर सुना जाता है। बारिश हो और बारिश के गाने ना बजे, जैसे कि ये गाना फिल्म बेताब से, और इस गाने की

इस गीत को पसंद किया था। टीकमगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या सोमल, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। सुखरी कला से अमित जंघैल, शकुन, आरुषि, आदित्य और अंजलि। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। तो भाई बात चल रही है इस बारिश की और याद आता है हमें हमारा बचपन भी। वो भी क्या दिन थे कि जब स्कूल में इसी बात पर छुट्टी कर दी जाती थी, रेनी डे हो गया और हम सवेरे से ही खिड़की के सामने बैठे रहते थे कि काश पानी इतना तेज़ बरसे स्कूल ना जाना पड़े, और स्कूल नहीं जाएंगे तो छोटी छोटी हम अपनी कागज़ की नाव बनाएंगे और उस कागज़ की नाव को घर के बाहर जो पानी इकट्ठा हुआ है उसमें तैराएंगे और देखेंगे किसकी नाव फास्ट जा रही है, किसकी बड़ी स्लो और किसकी लुढ़क गई। तो भाई ये तो था बचपन जो बारिश की यादों से जुड़ा हुआ था। और हाँ, एक बात और थी कि हम लोग गड्ढों में भी बड़ी जानबूझ के छपाक छपाक करते थे और माँ डांटती थी, अरे अंदर आ जाओ भाई, कपड़े गंदे हो जाएंगे, सर्दी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों अब हम हो गए हैं बड़े, लेकिन आज भी जब बारिश की पहली बूंद हमारे चेहरे को छूती है ना, तो अंदर बैठा हुआ वो बच्चा फिर से मुस्कुरा देता है, मचल जाता है। बचपन की उन्हीं खूबसूरत सी भीगी यादों के नाम एक बेहद ही खूबसूरत सा नगमा जगजीत सिंह की आवाज़ में। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। और ये गाना जब आप सुनेंगे ना तो आप भी अपने बचपन की गलियों में खो जाएंगे। और इस गाने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। कोल सिटी बरकाकाना से शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी, अफजल और इनके परिवार के अन्य सदस्य। महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल, शुभम जायसवाल और दुर्गेश्वरी देवी जायसवाल। डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया। तो सुनिए ये गाना।

दोस्तों, सवेरे उठते ही जब खिड़कियों पर काले काले बादल दिखते हैं और कानों में आवाज़ आती है उन बूंदों की ना, तो नज़र में आपके कोई ख़ास चेहरा आ जाता है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो कहते हैं ना कि बारिश और मोहब्बत का बहुत ही पुराना नाता है और इस रिश्ते को मुकम्मल बनाती है एक कप चाय। जी हाँ, हाथ में हो एक कप चाय और दूसरे हाथ में हो उनका हाथ या फिर उनकी याद और सामने गिरती हुई बारिश, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और अगर आप भी अपनी बालकनी में बैठकर इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं तो अपने पार्टनर को दीजिए एक प्यारी सी स्माइल, और अगर वो दूर है तो उन्हें एक खूबसूरत सा मैसेज लिख के भेज दीजिए। मोहब्बत के इस भीगे भीगे से एहसास को लफ्जों में पिरोया है अगले गाने ने, और चलिए हम आपको सुनवा देते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो ये था 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गाना, जिसकी फरमाइश आई थी रतलाम से जगदीश ठाकर, नायमा अंजुबाई ठाकर, युवराज सिंह और शिवांगी ठाकर, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज सीमा, तन्वी सोनी, लक्ष्य मानवी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरसू जाजोरिया और गुड्डू, प्रयागराज से हैं मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, बाला कनौजिया, हनी कनौजिया और गौरी कनौजिया, प्रयागराज से ही विकास और नीतीश आर्या। तो आपने जिस गीत की फरमाइश की उसे तो हमने सुनवा दिया और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, बॉलीवुड सॉन्ग में तो बारिश के ऊपर एक से बढ़कर एक गाने हैं, लेकिन कुछ गाने वाकई सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन सब गानों के बीच में कहीं वो सुरेश वाडेकर जी का गाया हुआ गाना ना रह जाए, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। याद आया आपको? जी हाँ, ये है चांदनी फिल्म का गाना और इस गाने की फरमाइश हमें जिन श्रोताओं ने की है, आइए सुनते हैं उनके नाम। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और मुरली वर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,

दोस्तों, मौसम जो है वो अपने पूरे शबाब पर है, पर वक्त का पहिया तो रुकता नहीं है और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहेंगे कि जिंदगी की उलझनों को थोड़ी देर के लिए किनारे पर रख दीजिए, बाहर निकलिए, इस बारिश को महसूस कीजिए, इसकी बूंदें अपने चेहरे पर गिरने दीजिए। ये कुदरत का तरीका है हमें ये बताने का कि धोने से सिर्फ गंदगियां साफ नहीं होती, कभी कभी दिल के बोझ भी हल्के हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद, जो प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को दिन में 12:30 बजे प्रसारित किया जाता है। और चलते चलते एक गाना मेरी तरफ से भी आप सबके लिए, मुस्कुराते रहिए और भीगते रहिए इस बरसात में। तो दीजिए मधु को इजाजत, नमस्कार।

बारिश की बूंदों से लबरेज आज का संदेशों पर आधारित आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे थे। कार्यक्रम पेश किया मधु कुमार ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर बाद 4 बजे, रात 8 बजे संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे। अभी हम आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर

0: परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in the NEETA paper leaks. Mr. Modi also asserted that protecting students' future remains the top priority of the government. In a social media post, Prime Minister Modi said nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. PM Modi's statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. Mr. Modi said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. He asserted that those who try to harm the future of the youth will not be spared. The Prime Minister added that the decision has been taken as part of a series of measures to safeguard the interests of students. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, urged the opposition to cooperate for the smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition.
2: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place today. However, the Congress party imposed conditions. Imposing conditions suggests that your intentions are not right, as it appears that you want to prevent the discussion.
1: Despite the appeal by Mr. Rijiju, the opposition members continued with sloganeering and trooped into the well. As the pandemonium continued, presiding officer Dilip Saikia adjourned the house till 2 p.m. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of paper.

0: रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 14 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अवामी सहूलियात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशहाल मुस्तकबिल के अज़्म को नई तहरीक फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तरक्याती प्रोजेक्ट अवामी सहूलत, अवामी एतमाद और तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश के अज़्म का ताकतवर इजहार हैं। तकरीब से पहले वज़ीर आला ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुनासिब कार्रवाई की हिदायत दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग कल अयोध्या के श्री मनीराम दास छावनी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर ट्रस्ट ने वाजह किया कि राम भक्तों का अकीदा पहले की तरह मजबूत है और मंदिर में आने वालों की तादाद मुसलसल बरकरार है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इंतखाब के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने दरख्वास्तों की बड़ी तादाद और अमल की संजीदगी को देखते हुए एक माह के इजाफी वक्त की दरख्वास्त की थी, जिसे ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। उस वक्त तक इंतजामी काम को हमवार रखने के लिए सेक्रेटरी की तकरीरी को भी मंजूरी दे दी गई है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तमाम डिवीज़नल कमिश्नरों और ज़िला मजिस्ट्रेटों के साथ हफ्ता वाराना जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इजलास में मरदमशुमारी 2027 और असातज़ा के लिए चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम समेत मुख्तलिफ अहम स्कीमों के पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जैसा कि वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातज़ा को चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम के तहत लाया जा रहा है। इस स्कीम का बाकायदा आगाज 26 जुलाई को वज़ीर आला के ज़रिए आगरा से होना है। महकमा मौसमियात ने आज से 25 जुलाई तक रियासत में बाज़ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान बारिश की वजह से रियासत की कई अज़ला में नदियां तिगयानी पर हैं। शारदा नदी पलियाकला लखीमपुर खीरी में ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी ख़तरे के निशान के करीब पहुँच गई है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले में महकमा आबपाशी और ज़िला इंतजामिया ने हिंदन और यमुना नदियों में सैलाब के इम्कान के पेश नज़र तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम पनघट।

0: जया, अरे ओ जया, अरे बहनी, हम कहा राम राम।
1: राम राम सत्या बहनी। और आपन पनघट सुने बैठी सब बहनी लोगन के जया और सत्या के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: जया, देखा आज पनघटे पर आवत रहू तो मौसम का आंख में चौली देखू कि नहीं।
1: हाँ, और का देखा, कभो ऐसे लगे थे कि अभी ना बरसी हो, तनको बल्ब छिल में एकदम पानी बरसे लगे
0: हाँ,
1: थे।
0: और
1: हाँ,
0: फिर थोड़ी देर में ऐसा घाम निकल जाते हैं
1: हाँ
0: कि उमस भी शुरू हो जाता है ना।
1: हाँ और देखा ये मौसम जो है, सही बताई तो सत्या बहिनी, एकदम ऐसा है कि लगे कि अब थोड़ी देर में ठंडक मिल जाए तो थोड़ी देर में इतनी तेज गर्मी लगे लगे थे कि लगे थे कि अब का हो हुआ है।
0: देखा, मौसम तो से कुछ कहा चाहत है।
1: उका
0: वो ई कहा चाहत है कि देखा, तो से मौसम ई कहा चाहत है कि बहनी देखा, जैसे कि हम लोग हर मौसम में आपन जोन बटे तालमेल मौसम के साथ बैठाई ली थी ना। अब देखा, जैसे क्षण में बारिश होता है ना, और क्षण में धूप निकलत है, तो वही अनुसार हम लोग अपने घर में, घर गृहस्थी में आटा का व्यवस्था, गेहूं की सुखाई के पहले से धोई के रखब ताकि बरसात में सूख न पाए, तो एकर व्यवस्था एक तरीके से अपन तैयारी मौसम के अनुसार तालमेल बैठा के कर लीन जाता। और
1: बिल्कुल।
0: हाँ, और जौने दिन लागत था कि सबेरे से मौसम साफ है तो आदमी देखा कपड़ा लत्ता सुखावे वाला काम

0: में सब कर लेते हैं। तो देखा जय प्रकार हम लोग आपन जोन बटे तालमेल बैठाई थे ना मौसम के अनुसार, ऐसे जान ले आवे वाली जो नई पीढ़ी है उनके जीवन के जो मूल्य है ओके समझत भाई बच्चन आपन तालमेल कैसे बैठावे वह बहुत जरूरी है जानब।
1: बिल्कुल सही कहो सत्या बहनी कि देखा आजकल की जो पीढ़ी है उनके जो जीवन मूल्य है उनके साथ हम लोगों का तालमेल बैठाओ थोड़ा सा, जैसे कि देखा कहा जाते हैं ना कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी सोच बदल जाती
0: बिल्कुल
1: है ना, तो देखा जब सोच बदलती तो कहूँ ना कहूँ अपन मूल्य भी बदल जाते, अपन काम करे की क्षमता अपन सोच अपनी चीज़ सब बदल जाती। पर देखा जब हम अपने पुराने समय का याद करी तो उमा यही रहा कि हमार जो दादा दादी हैं या हमार जो पुरनवा हैं उन सब का देखा उन सब आज भी हम लोगन के साथ तालमेल मिलावत है। तो यही तरह देखा हमहू लोगन का आज की पीढ़ी जो आए रही है अपने आप का थोड़ा सा उनके साथ ढाले में ही अपने हमार सबकी बुद्धिमानी
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: सही कहती हो। और देखा एक बात और है, यह जगह

0: जोन हमार जोन जोन दादा दादी हैं या हमार जोन पुरनवा हैं, उन सब का देखा उन सब आज भी हम लोगन के साथ तालमेल मिलावत है। तो यही तरह देखा हमहू लोगन का आज की पीढ़ी जोन आए रही है अपने आप का थोड़ा सा उनके साथ ढाले में ही अपने हमार सबकी बुद्धिमानी है।
1: बिल्कुल है सही कहती हो। और देखा एक बात और है, यह जगह मेल होता टे 19वीं सदी और 21वीं सदी के है ना, तो हम लोग ये बच्चे जो है 21वीं सदी के हैं है ना, तो इनकर जिस तरीके से चारों कहती विकास हो रहा बा है ना, और शिक्षा में तरह तरह के तकनीकी शिक्षा के साथ साथ देखा कितनी अच्छी बदलाव हो रहा बा, तो ये बच्चे जो है ये नए समय के है, नए सोच के, नए विचारधारा के है ना।
0: बिल्कुल सही।
1: तो इनके विचारन के स्वीकार करब हम लोगन के लिए बहुत जरूरी है।
0: देखा सत्या बहनी तो बात करो तो देखा आज यही पे हम लोग बत कही भी करब कि देखा आज की पीढ़ी और जीवन मूल पर ओके पहले देखा आज जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी है, तो आज हम अपने पनघटे के माध्यम से हमारे जो श्रोतागण है उनका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी। रेडियो की आवाज देश की आवाज है। हाँ। आवाज की वह शक्ति है जो पूरे देश का एक सूत्र में बांध दे वही का कहा जाता है कि प्रसारण है। हर वर्ष 23 जुलाई का भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनावा जाता है। ये दिन 23 जुलाई 1927 का भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई रही। यह दिन भारतीय प्रसारण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये शिक्षा, सूचना, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का भी सशक्त माध्यम है।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। एहमन देखा एक नहीं, हर राज्य के हिसाब से अलग अलग भाषा पे जो बटे प्रोग्राम दिन जाता है, कहा जाता है 22 तरह की भाषाओं के एक मिलजुल करके जो प्रसारण किया जाता है हर राज्य के भाषा, ताकि लोगन के समझे में कोई दिक्कत ना हो। और देखा अलग अलग भाषाओं का जब मेल का होता है, अलग अलग विचारन जब एक साथ एक सूत्र में बंध जाती है, तो ये जो उन कहू विचारन के विचार के व्यक्त करे के माध्यम होता है, एक तरीके से लोगन का विचार जन जन तक लोगन के तक जाता है, ओकर माध्यम अगर बनत है तो अपन रेडियो।
0: बिल्कुल सही। और देखा सत्या बहनी जब टेलीविजन रहा, जब अभी देखा टेलीविजन है, इंटरनेट, मोबाइल जैसे जब सुविधाएं नहीं रही, तब देखा रेडियो के माध्यम से लोगन तक समाचार, संगीत, कृषि संबंधी जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान, स्वास्थ्य संबंधी सलाह, शिक्षा, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पहुंचाने में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी प्रसारण माध्यमों से लोगन में जागरूकता फैलावे में और देशभक्ति की भावना जगावे में रेडियो अपन योगदान दिए है,
1: और लोगन तक अपन सूचना समाचार के माध्यम से देखे हो पुराने लोग भैया रे, समाचार सुबह और जो रात में आवत रहा ओकर टकटकी लगाए के समय से पहले समाचार के पहले भोजन वगैरह कह के आराम से, कहे कि उनके अंदर ये रुचि रहत रही, एक जिज्ञासा रहत रही कि इतने समय हमारे देश में का बाटे और जोन बटे का हो रहा बा, अलग अलग जोन बटे सूचना प्रसारण जोन बटे समाचार के माध्यम से होत रहा और लोगन तक सारी जानकारी पहुंचत रही।
0: बिल्कुल सही देखा सत्या बहनी। कहीं ऐसी ऐसी जगह भी हमारे जो रेडियो है, ऐसी ऐसी जगह भी अपन प्रसारण किए जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सके कि वहाँ तक मतलब आसानी से जो जानकारी है वहाँ तक पहुँच सकी। एक ही साथ साथ देखा प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में भी देखा रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम साबित हुआ रहा।
1: बिल्कुल देखा जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगावत भय जोन बटे मौसम की जानकारी दिन जाते थे, जबकि जैसे कि जो नदी किनारे समुद्र के किनारे मछुआरे हैं या फिर जो भी भैया लोग खेती किसानी के लिए पहाड़ों पर भी कुछ लोग निवास कर रहे थे,
0: बिल्कुल,
1: तो मौसम की अगर सूचना उन्हें पूर्व रूप से रहता, जैसे वही हम थोड़ी देर पहले बत कही कहते रहे तालमेल बैठा है ना, तो वो मौसम के अनुसार अपन के मौसम के आवे के पूर्व अपन काम निपटाए के जो मानसिक जोन बटे तनाव से मुक्त हो जाता।
0: हाँ, और देखा जो अपन देखा आज के डिजिटल युग में भी भले मोबाइल है, चाहे इंटरनेट है, चाहे सोशल मीडिया है, पर देखा रेडियो के अपन आज भी एक अपना अलग महत्व है ना। देखा एफएम रेडियो है, सामुदायिक रेडियो और ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से आज भी करोड़ों लोगों तक विश्वसनीय विश्वास का साथी बना हुआ है। रेडियो के बल देखा रेडियो के जो ने आवाज़ नहीं बल्कि आवाज़ समाज की धड़कन है रेडियो जो है, जो हर दिल तक ज्ञान, सूचना और प्रेरणा पहुंचावत है।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। और अगर कहा जाता है ना कि 3 घंटा 4 घंटा का सफर लंबा सफर कर रहा है, तो अपने देखा अगर निजी साधन से या कौनों भी साधन से जा रहा है, तो हमन अगर रेडियो

0: रेडियो के मात्र एक छोटा सा बटन ट्यून कर द घुमा द हाँ, तो घंटों का सफर जोन बटे कितने आसानी से कट जाता, मन भी नहीं बोझ होते, कहा जाता हो जे कि रेडियो घुमाओ, है ना?
1: बिल्कुल। और देखा सत्यवानी, जब देखा एक आपस का ही जो प्रेम है हम लोगन के बीच, एक जब रेडियो और जो हमारे जो श्रोतागण है उनके बीच जो हम लोगन के जो प्यार है, प्रेम है ना, एक ही कभो भी कोनो भी समय आ जाए, कब कोई भी समय बीत जाए, पर देखा ये प्रेम कभो भी खत्म ना हुए।
0: बिल्कुल, है ना? कि यही प्रेम हम लोगन के आज पनघट तक खींच के ले आए हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: है ना?
1: बिल्कुल
0: यही सही। के माध्यम से हम बहनी भैया हरेन तक जो है अपन बात रख सकत है, बहनी भैया हरेन के कार्यक्रम में कुछ जो भी है सब भैया हरेन के सुनावा जात है, बतावा जात है।
1: बिल्कुल सत्य बनी, देखा हम लोग जोन भी आज के समय में जोन भी अभी आप देखा आज भी हम सब लोग अपन जोन अपन अपन विचार है वो सब लेके प्रस्तुत हुए हैं, पर देखा आज भी जो हमार और जो एक हमारा जो श्रोतागण उनके बीच का जो प्रेम है ना वो रेडियो के माध्यम से ही संपन्न हो पावत है। और देखा जब बात रेडियो की आवत थी तो देखा ऐसा लगे थे कि मन में कुछ एक गुनगुना है जो चल जाते हैं, और देखा मन के सारी दुख दुविधा सब दूर हो जाते हैं। इतना अच्छा रेडियो का जो है हमारा जो रिश्ता है लोगन से। और देखा सच बताई सत्य बहनी, तो जब शब्दों में सच्चाई और उद्देश्य होए तो उनकी गूंज रेडियो की तरंगों से पूरे समाज का जागरूक कर देती।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ, कहे कि देखो हर घर में कोई मोबाइल के माध्यम से, आजकल देखा मोबाइलों पे इतने अच्छे अच्छे ऐप आए हुए हैं,
1: बिल्कुल सही
0: है ना, जैसे न्यूज ऑन AIR और जो तरह तरह के, कि आप कहीं भी बैठा है भारतवर्ष में या विश्व में कहीं भी बैठा है, आप अगर विदेश में भी बैठा है ना अपने भारत के जो उन बटे आकाशवाणी जो है सुनना चाहत हैं, रेडियो सुनना चाहत हैं, तो ऐप के माध्यम से आप जो है आप निवासी जहाँ के हैं और आप रोजी रोजगार के लिए परदेश में पढ़े, लेकिन वहाँ की भाषा में आप सब कुछ सुन सकते हैं कहीं।
1: बिल्कुल। और देखा जब हम आज अपनी पीढ़ी की बात करत रहे तो देखा हमार कई बार हमारी जो पीढ़ी भी है आजकल, देखा ओहू हमारे रेडियो से कैसे मन से जुड़ी हुई है। देखा वो पढ़ाई करत समय, चाहे अपन कोनो काम करत समय, चाहे कहूँ भी हो, देखा जब रेडियो बजत है तो उनके मन के जो तार है वैसे भी उनसे जुड़ जात है। तो देखा रेडियो के अपन एक महत्व है। और देखा चलत चलत प्रसारण का उद्देश्य केवल समाचार पहुँचाऊ नहीं बल्कि लोगन का जोड़ब भी है, शिक्षित करब और राष्ट्र निर्माण में योगदान देव भी है।
0: बिल्कुल सही कहती हो, कहे कि देख हर कोई अपने अपने स्तर से योगदान राष्ट्रहित में देता है ना, जरूरी है कि अपने विचार के सही रखें, सकारात्मक रखें, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखें, है ना, और ऐसी भावना कोशिश करें जैसे हम आप तक पहुंचाई रही, आप भी केहू तक पहुंचावें, ताकि कहा जाता है ना एक कड़ी से कड़ी जुड़त रहता है।
1: बिल्कुल सही।
0: और देखा हम अपने रेडियो के माध्यम से बहनी भैया हरन से यह कहब कि आवाज का बहुत महत्व होता है, है ना?
1: देखा करो कुछ अच्छा बोलत है ना तो दिल से जाके छू जाते
0: हैं दिल। और देखा आप कितनी भी जल्दी में रहे थोड़ी देर के लिए आदमी ठहक
1: जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखा जब तू ठहरे की बात करो तो चला आप थोड़ा सा ठहराव हम लाई अपनी बातचीत में, और कस न एक लोकगीत सुना जाए और सुनावत है संगीता राय बहनी।
0: तो चला इनसे एक ही नीक नीक दादरा सुन लीन जाए।
1: चला सुन लिया जाए।

0: सत्या बहनी,
1: हाँ
0: देखा कितना अच्छा गीत रहा। संगीता राय बहनी कितने अच्छे से जो उन्हें सुनवाई। और देखा जब बनघटे पे कोनो गीत हो जाते तो बातचीत के बाद जब गीत होते तो ऐसा मन थोड़ा ऐसे हल्का हल्का सा हो जाता ना।
1: बिल्कुल बहनी, गीत गाने मन प्रसन्नता का एक अलग ही तरह से कहा जाता है, जेका आज का दिन व्यायाम या थेरेपी जेका कहला है ना, मन प्रसन्नता का सबसे अच्छा थेरेपी गीत गाना ही होता बहनी। और एक के साथ साथ देखा, आजकल के समय में हर कोई कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से कुछ न कुछ समस्या से पीड़ित है ना। अगर हमें बहनी हरण का बात की जाए तो ये जो देखा, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर घर में कुछ न कुछ समस्या बहनी हरण के लगा रहता है ना।
0: बिल्कुल। हाँ
1: और देखा फिर उनका लगा था कि

0: कौन तरह के उ करी दवा करी। कभी कदा कहू के अंदर मन में भय बैठा रहता है कि कौनो जो है नुकसान ना हो, या तो फिर उसके उपचार के लिए। तो यही सब बातन के हम ध्यान में रखत भय आज अपने पनघटे पर एक जौन बटे कार्यक्रम है।
1: बातचीत है, और
0: हाँ
1: बातचीत है महिला स्वास्थ्य समस्याएं और होम्योपैथिक।
0: बिल्कुल
1: और देखा इमा बात की है डॉक्टर सुमन इमा जो बातचीत में है डॉक्टर सुमन दुबे से प्रतिमा शुक्ला बात की है, तो
0: हाँ
1: चला तू सुनो और बहनी लोगन भी सुने।
0: बिल्कुल
2: स्त्री यानी सारी सृष्टि की रचना अपने अंदर समेटे हुए पूरे दृढ़ निश्चय से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करत कभी कभी आपन ख्याल नहीं रख पोतिन। ऐसे में हमार बहनी हरिन कभी कभी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाथिन, काहे से कि वो अपने परिवार के लिए ज्यादा समर्पित होथिन। यही बात का ध्यान में रख के आज हम अपने पनघट पर आमंत्रित करे यही होम्योपैथिक डॉक्टर सुमन दुबे का। सुमन दुबे जी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमार विषय है होम्योपैथी और महिलाओं की समस्याएं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पनघटे पर।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। देखें आजकल हर लड़की में हर स्त्री में
3: जी
2: एक प्रकार से लड़की कहा जाए
3: जी
2: स्त्री के बारे तो बाद में आवा था, लड़कियन में माहवारी का समस्या बहुत आम हो गया है। कुछ लड़कियन में तो ठीक है नॉर्मल चलता है सब कुछ, लेकिन ज्यादातर लड़कियन में माहवारी समस्या बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे आगे चल के ये विकट रूप ले ले था, एक का कारण है।
3: जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। होम्योपैथी चिकित्सा एक बहुत ही सरल, सुविधाजनक और प्रभावकारी चिकित्सा पद्धति है और हर वर्ग की महिलाओं में, चाहे वो बच्ची हो, जवान हो, वृद्ध हो, क्योंकि बीमारी देखिए महिलाओं में प्रत्येक उम्र में हो सकती
2: जी,
3: है,
2: जी।
3: जरूरी नहीं है कि वो खाली लड़कियों में ही हो। तो हर वर्ग हर उम्र की महिलाओं में समस्याएं आती हैं
2: जी।
3: और उन समस्याओं के समाधान के लिए होम्योपैथी एक बहुत ही लाभकारी चिकित्सा पद्धति है। बिना किसी साइड इफेक्ट के आप इस पैथी के द्वारा सुचारू रूप से बहुत सारे उपचार में लाभदायक सिद्ध होती है।
2: लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा भी कहा जाता है होम्योपैथिक दवा जो ना है थोड़ा समय ज्यादा लेता।
3: जी थोड़ा समय जरूर लेती है, परंतु इसका जो निदान है वो बिल्कुल परमानेंट होता है। मतलब
2: अच्छा,
3: आपका
2: पूरी
3: जो
2: तरह
3: भी
2: से
3: समस्या है वो जड़ से समाप्त होती है। उसके
2: हाँ।
3: कारण पे हम जाते हैं किस कारण से समस्या आई और फिर उस कारण का निदान करते हैं और अपने आप ही मरीज में स्वतः वो लाभ देखने को मिलने लगते हैं।
2: मतलब कि अगर हमारे बहनी हरिन में कोनो भी ऐसी समस्या आए वो घरेलू उपचार ना कहके सबसे
3: जी
2: पहले डॉक्टर साहब के पास जाएं। और
3: जी
2: आजकल का वह लोग हकीम के पास भी चला जाते हैं, कोनो वैद्य
3: जी
2: वगैरह हैं उनके पास भी चला जाते हैं, लेकिन
3: जी
2: आज के समय में इतना ज्यादा टाइम ना आया है कि आप जगह जगह जाए के 10 जगह दवा लें ओकरे बाद फिर कहीं सही जगह पहुंचे। तो कोशिश करें कि इन्हन बीमारी के लिए पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं और
3: जी
2: उनसे
3: जी
2: सलाह मशविरा लेके उनके अनुसार दवा का प्रयोग करें और जब तक ओके एक समयावधि हो तब तक प्रॉपर दवा करें पूरी
3: बिल्कुल
2: तरीके से ताकि वह रोग से वो निजात पाए सके।
3: जी जैसे मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारी बहनें हैं और जो हमारी बच्चियां हैं छोटी, वो अपनी जो समस्याएं होती हैं जो कि उनके कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिनको कि वो जल्दी शेयर नहीं करती हैं, मतलब जल्दी बताती नहीं हैं।
2: हाँ।
3: तो यदि वो डॉक्टर के पास आती हैं और किसी लेडी डॉक्टर के पास जाती हैं तो उन खुलकर अपनी समस्याओं को बताएं। जैसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें कहने में औरतें संकोच करती हैं, लड़कियां संकोच करती हैं, कैसे बताऊं, तो वो खुलकर मुझे जब बताएंगी तो मैं उन चीजों को या हम डॉक्टर्स उन चीजों को समझ के फिर उसके बाद उनका जो परफेक्ट उनके लिए जो मेडिसिन होगी, जो उनके लिए सलाह होगी, वो हम उन्हें देंगे और उसका वो लाभ भी पाएंगे।
2: डॉक्टर साहब इसके साथ साथ एक चीज और होता है, देखें डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो सामने से इस सोच जावत हमेशा कि डॉक्टर का मृदुभाषी हो जरूरी है, डॉक्टर ऐसा हो जैसे हम खुल के सारी बात कर ली, डॉक्टर शुरुआत में ही ऐसी कोनो बात ना कहा है जैसे कि हम अपन आधी अधूरी बात कह के सिर्फ चला और बाद में ही हो कि कुछ चीज रह गया। और ई मनोस्थिति एक स्त्री का एक स्त्री डॉक्टर ही समझ सका
3: जी बिल्कुल,
2: है ना, आपसे बेहतर एक क्यों भी ना जान सका
3: जी बिल्कुल। जैसे कि छोटी बच्चियां हैं या किशोरावस्था में हैं लड़कियां जिनको कि पीरियड्स संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पेट में

0: दर्द होना, पेड़ों में दर्द होना, या सफेद पानी जाना
1: हाँ जैसे सफेद
0: योनि के
1: पानी को
0: रास्ते से,
1: लिकोरिया भी कहा था शायद।
0: जी लिकोरिया कहा जाता है। और ये ऐसे तो नॉर्मली जो है थोड़ा बहुत योनि का रास्ता गीला होता है, परंतु यदि यही ज्यादा हो जाए और इसके साथ साथ दूसरे लक्षण हो, जैसे खुजली हो, लाली हो, सूजन हो, दर्द हो, तो संकोच नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना निदान करवाना है। और मेरे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं, जिनको मैंने देखा है कि यदि वो शुरू से उस इलाज को नहीं करेंगी तो वही चीज आगे चल के विकट समस्या बनती है। यदि उन शुरुआत में ही उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया और डॉक्टर के पास गई, सलाह लिया, उचित दवाएं खाई, तो वो बिल्कुल उसका निदान संभव है। परंतु यही सब चीजें जब वो लेट कर देती हैं, जब बढ़ जाती हैं समस्याएं, फिर आती हैं, तो फिर निदान करने में भी थोड़े टाइम लगता है और उनको भी तकलीफ होती है। मेरा तो ये मानना है कि यदि आप समय रहते ही आते हैं डॉक्टर के पास, सलाह लेते हैं, दवाएं लेते हैं, तो आपका अवश्य, होम्योपैथी में तो इतनी अच्छी अच्छी दवाएं हैं कि जिनके द्वारा लड़कियों की और महिलाओं की, क्योंकि इनके द्वारा कोई साइड इफेक्ट जल्दी देखने में नहीं आता है, साइड इफेक्ट है ही नहीं। अगर आप इसको सही तरीके से ले रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, परंतु बहुत जल्दी इनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो न समस्या है, जैसे आप कहें लिकोरिया का योनि
0: जी
1: थोड़ा बहुत गिली रहा था, ये विवाह पश्चात ज्यादा समस्या बना था या विवाह के पहले?
0: नहीं, विवाह के पहले भी ये समस्याएं रहती हैं, क्योंकि लड़कियां अपनी समस्याओं को संकोच की वजह से बता नहीं पाती हैं, खुल के कह नहीं पाती हैं, माँ से भी नहीं शेयर करती हैं। देखिए, अब एक जमाना हुआ करता था कि कोई, मतलब ये सब बातों पे बात करना ही किसी को अच्छा नहीं लगता था, परिवार के ही लोगों को नहीं आता, अच्छा चुप रहो, ये सब क्या बोल रही हो, ये सब कुछ नहीं है, तो वो संकोच के कारण बता नहीं पाती थी। परंतु धीरे धीरे लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझ रही हैं और अपने लिए काफी जागरूक भी हो रही हैं, तो वो सेहत के प्रति जागरूक हैं, तो वो तुरंत हमारे पास आती हैं और हमसे सलाह लेती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसको कैसे रोकें मैम, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, तो हम फिर उसमें उनको सलाह देते हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप इसे खाओ, इस तरह से खाओ, इस डोज में खाओ, रेगुलर खाओ, कैसे खाना है, सारी चीजें निर्देशित करते हैं, उस हिसाब से वो लोग खाते हैं और लाभ भी उनको मिलता है। तो जैसे कुछ दवाएं हैं, मैं जिनका नाम बताना चाहती हूँ, कि जैसे जब ये महिलाओं में समस्याएं होती तो किस तरह की होती हैं,
1: जैसे
0: आपने देखा होगा कि अक्सर महावारी के दौरान आके बताती, पेट में दर्द है,
1: हाँ पेड़ों में भी
0: उल्टी लग
1: दर्द
0: रही है,
1: बताती हैं।
0: उल्टी
1: हाँ
0: लग रही है, कमर में दर्द है, मन नहीं लग रहा है किसी काम में,
1: जी
0: अवसाद की स्थिति डेवलप हो जाती है, जैसे डिप्रेशन में चली जाते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: 3 दिन पीरियड्स हैं तो 3 दिन वो बच्ची उठ ही नहीं पाती बिस्तर
1: ऐसे में
0: से।
1: गर्मी का भी शिकायत हो था, गर्मी
0: जी
1: भी ज्यादा लगा था।
0: जी गर्मी भी लगेगी, इसके अलावा ठंडी भी लग सकती है, क्योंकि खून की कमी यदि है तो उसको कंपन भी हो सकता है, बॉडी में शिवरिंग हो सकती है और चक्कर आएंगे, उल्टी होगी, बेहोश होके गिर भी सकती है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है आपकी बॉडी से, जो फ्लूइड है, ब्लड आपका क्या है, फ्लूइड है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर वो लॉस होगा तो आपका टेम्परेचर डाउन होगा। तो इसमें कुछ दवाएं हैं, जैसे आपका पल्सिटिला है, सबाइना है, सीपिया है, बेलाडोना है, नेट्रम म्यूर है, मैग्नीशिया फॉस है, ये सब मेडिसिन्स हैं कुछ, जो हम लक्षणों के आधार पे उसको मिलान करके फिर हम उस पेशेंट को देते
1: देते
0: हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये मेडिसिन्स आप खाइए, इस पावर में खाइए, इतने दिन खाइए, और फिर वो जब उन्हें लेता है तो धीरे धीरे उसमें लाभ उसको मिलना शुरू हो जाता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, ऐसा भी हो सका था कि से थोड़ा बहुत अगर आदमी की शिकायत है कोनो ऐसी बीमारी
0: जी
1: का, हमारे बहनी हरिन का, तो का वो ये दवा का अपने घर में रख सकत हिन और
0: बिल्कुल,
1: यूज कर मतलब प्रयोग में ले सकत हिन?
0: हाँ बिल्कुल रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेने के पश्चात ही उसका सेवन करें तो
1: हाँ
0: ज्यादा बेहतर होगा।
1: मतलब दवा हमें कितनी ले का है, कब ले का
0: जी
1: है, ये
0: जी
1: जरूरी है जानब।
0: जो मुख्य बात है वो यही है कि आप डोज का सही सिलेक्शन डॉक्टर ही करेगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कितने दिन तक करना है ये भी डॉक्टर ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी बीमारी किस हद तक हमारे हमारे नियंत्रण में आती है, डोज तो हम ही निर्धारित करेंगे ना, और कितने दिन हमें चलाना है ये भी हम निर्धारित करेंगे। तो इस कारण हमेशा बहनों को ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है या कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं, तो हमेशा डॉक्टर को दिखा के, किसी के कहे सुने पे नहीं, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही उसका सेवन करें।
1: डॉक्टर साहब।

0: अब एक चीज और देखें, हमारे बहनी हरण में अगर शुरुआती दौर में ये चीज पे अगर वो ध्यान ना देती तो एकरे अलावा एक गंभीर रूप से कौन कौन बीमारी से ग्रसित हो सकत हैं, एकरे बारे में बताओ।
1: जैसे गंभीर रूप की बीमारी यही हो सकती, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है कैंसर। धीरे धीरे जब इन्फेक्शन आपके बॉडी में बढ़ता है और आपने नेगलेक्ट किया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसकी तरफ समस्या को लाइटली ले लिया, हल्के में ले लिया, अरे ठीक है ठीक हो जाएगा, इधर उधर के कहे सुने में दवा खा लिया, तो इससे और वो बढ़ जाता है, समस्या और बढ़ जाती है। तो उसके लिए कम टाइम से आइए, जांच कराइए, ऐसा नहीं है, जांचें भी कराते हैं, देखते हैं कि किस वजह से हो रहा है। इन्फेक्शन है, यूरिन में भी होता है इन्फेक्शन, बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन होता है, अंडाशय में इन्फेक्शन पहुंच सकता है, फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच सकता है। तो हम पहले तो डिटेक्ट, हमने उसकी जाँच कराई, डायग्नोसिस करी, क्या है, केस क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा कह, बहनों को ये मैं एडवाइस करना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ कि वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, जांच कराएं, उसके बाद दवाओं का सेवन शुरू करें।
0: डॉक्टर साहब, कुल मिलाई के हमार बहनी हरिन कोनो भी तकलीफ आए तो अगर दवा खाती यहाँ तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और
1: जी
0: डॉक्टर की निगरानी में, देख रेख में वह दवा का प्रयोग करें। काहे से दवा का मात्रा ज़्यादा हो जाए तबो खतरनाक है, कम होए तबो
1: तो
0: खतरनाक
1: भी
0: है।
1: खतरनाक।
0: इसलिए अगर आप पूर्ण रूप से डॉक्टर की निगरानी में दवा लेती यहाँ तो आप सुरक्षित रही हैं और दवा आपको फायदा भी करे। डॉक्टर साहब, आप हमारे पनघटे पर आई और हमारे बहनी हरिन के इतनी सारी अच्छी बात बताई, जरूर हमारे बहनी हरिन इसे सीख ली है, समझ ली है और नीम हकीम खतरे जान न डाल के सही और अच्छे डॉक्टर के पास जाए के आपन इलाज कर रही है जब उनका शुरुआती दौर में कोनो भी ऐसा लक्षण महसूस हुए तो। डॉक्टर साहब, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: सत्या बहनी, देखा कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर सुमन दुबे बहनी। ओके, साथ अब देखा एक गीत कसना सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल
2: तो चला सुनावा दी संगीता राय बहनी।

0: सत्य भी नहीं,
1: हाँ
0: देखा कितना अच्छा गीत रहा ना।
1: वाकई में देखा, हम तो कल्पना करे लग रही है कि नन्हे से छोटे से किशन कन्हैया कैसे लगत रहा हूँ, सुंदर प्यारे से,
0: हाँ, है ना? नटखट तो ऐसे ने देखा, उनका टोना ना लगे। हाँ पर देखा सत्य भी नहीं,
1: हाँ
0: गीत गवने भी हो गई और देखा जो उन्हें बातचीत भी हो गई, तो अब कस ना देखा तो कहो स्वाद की कुछ बात हो जाए।
1: बिल्कुल बहनी। और तू हमसे एक बात कह रहू, देखा भिंडी तो हर घर में बना था, लेकिन तू एक बार हमसे कह रहू कि जोन बटे रसेदार वाली सब्जी भिंडी का, तो हम बल्कि घबराए गए कि बहनी कैसे बना था। आपके नैया आओ तो जरूर बताऊ, है ना? तो चला तनी हमहू बताऊ माँ बहनी हरन कर
0: कि रसेदार भिंडी कैसे बनी थी। देखा रसेदार भिंडी बहुत आसान है। देखा सबसे पहले तो भिंडी धोए के सुखा ले ताकि पानी ना रहे उमा। हाँ रसेदार में देखा कहा जाता है, लोग ऐसा सोचा थे कि देखा रसा लग जाए तो लेबले हो जाए ना,
1: हो जाता, सही कहा।
0: तो ओका ध्यान रखे के लिए सबसे पहले ये करेगा कि भिंडी का धोए के सुखा ले का है। और देखा जैसे भी जोन भी मतलब आकार में ओका खाए का ओका आकार में काट ले, चाहे गोल चाहे लंबी, और फिर ओके बाद जो ने हल्का सा कढ़ाई में तेल डाल के ओका हल्का फ्राई कर ले, कुल मिला के ओका तल ले और तल के ओका निकाल ले, ठीक है। ओके बाद वही कढ़ाइया में थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन, अजवाइन से छोका लगावे तो और स्वाद बढ़ जाते हैं।
1: मतलब जैसे रसेदार सब्जी का मसाला बना था वैसे
0: बिल्कुल,
1: ही
0: देखा
1: बना
0: इमा सादा रहा थे। हाँ इमा प्याज पड़ जाए थोड़ा सा, एक प्याज लगभग 2 से 3 कली लहसुन, अदरक, मिर्चा, हाँ एक तेल में डाल ले, हल्का सा जीरा डाल ले। डाले के बाद एक खूब अच्छे से जो ने लाल हो जाए तक एक जो ने तल ले। तले के बाद हल्दी थोड़ा सा डाले का, हल्का सा हल्का गरम मसाला, हाँ और बस डाल के खूब अच्छी सी एक जो ने कहा जाता है ना कि एक तरी तैयार हो जाए, बस वही में भिंडी तुरंत डाल देखा है। और डाले के बाद देखा एक तुरंत गरम गरम खाए का है, यदि तो थोड़ी देर का भी रख देबू तो मैं ऐसे लगे कि जो ने लिसलिसापन आए हुआ है, एक तुरंत निकाला तुरंत खाओ और फिर देखा पराठा हो चाहे रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगा थे।
1: देख बताऊ तो बड़ा नीक बहनी, अब घरे जाए के हमहू बनाऊ भाई, है ना?
0: बिल्कुल, और देखा अच्छी बना थी, थोड़ा अलग कुछ खाए का मन हो तो भिंडी की सब्जी मतलब स्वादिष्ट भी लगा
1: बिल्कुल।
0: थी।
1: तो जब तू इतना अच्छा नए तरीके से भिंडी के बताए हो तो हमार मन करा तटे कस ना एखनी तो है नीक नीक गीत सुनाई दे रिश्ते नाते फिल्म से।
0: चला सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: सत्या बेनी, देखा लता मंगेशकर जी की आवाज़ में कितना सुंदर गीत रहा।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी, और गीत गौनई जब ऐसे रहे बहनी हरेन के साथ, सिंगार से खनक गयो कंगना, तो समझ लो बहनी कितना निक लगता है ना।
0: बिल्कुल, अब देखा जब अब गीत गौनई हुई हुआ तो कसना अब एक संदेश है, सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल बहनी,
0: तो चला सुना जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरेन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
0: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन

0: के बाद, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
1: बेसब्री से इंतजार रही।
2: जया,
3: हाँ,
2: देखे, इंतजार तो हम लोगन के भी रही। जैसे कोनो बच्चा परीक्षा देत है तो परिणाम का इंतजार रहत है, या कोनो बहनी रसोईया में बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनावा थीं तो उनके इंतजार रहते कि घर के लोग खाए के बाद क्या प्रतिक्रिया दी हैं, है ना। वही तरह इंतजार हम लोगन के भी है कि बहनी हरे अपन विचार सुझाव जरूर दी हैं। तो ओकरे साथे अब विदा ली जाए बहनी हरन से।
3: राम राम बहनी हरे।

ये था ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम पनघट। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, दोपहर समाचार की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the Games. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham in 2022, with competitions spread across 4 venues with an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. The Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening. 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी आश्वासन दिया देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण

0: दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले सदन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे।

0: सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय

0: में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
1: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश

0: से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
3: विमलेश जी, बाहा या बहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
3: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
3: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
3: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी,

0: अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहां से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं, फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को, पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
3: चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहां जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या?

0: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
1: जी महाराज।
0: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
2: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
0: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
2: अच्छा, तो ये प्रकरण है तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
0: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटें, पेड़ को ना काटें महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
2: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
3: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
4: महाराज की जय! महाराज की जय!
5: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
6: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
5: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
7: आज मैं राजा बनूंगी।
8: आज मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
2: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
7: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
1: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
7: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
1: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
7: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
1: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
1: महाराज की जय हो। जय हो।
5: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
0: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है, और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
13: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
5: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
14: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
13: चोरी।
5: राजा ने इधर उधर देखा

0: वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
1: ये सच है, मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
2: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
1: झूठ?
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
2: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
1: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन, आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया।
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
7: अरे मशकूब भाई,
8: जी जनाब,
7: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
8: लीजिए जनाब।
7: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
8: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
7: रखो रखो।
8: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
7: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो, रखो।
8: शुक्रिया
7: शुक्रिया।
6: अमृत वाला आ गया।
9: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की

0: बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
1: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
2: मशकूब भाई।
3: जी जनाब।
2: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
3: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
2: लाओ। बस बस।
3: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
2: सही कहा मशकूक भाई।
3: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
2: अभी तक तो कुछ नहीं।
3: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
2: अरे नहीं नहीं
3: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
2: भाई
3: जी,
2: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
3: क्या बात करते हैं,
2: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
3: इसमें नेकी की क्या बात है?
2: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: ये तो मेरा फर्ज था।
2: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
3: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
2: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
3: अच्छा,
2: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
3: ये तो बड़ा नेक काम है।
2: अब ये लीजिए।
3: ये किताब, ये किताब किस लिए?
2: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
3: अच्छा,
2: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
3: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
2: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए।
3: तौबा तौबा तौबा,
2: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
3: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे न लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
4: अरे भाई, अकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
5: जनाब,
6: लाजवाब इंसान है वो।
4: क्या बात करता है,
6: बहुत अच्छे इंसान।
0: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
0: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
7: पैसा लाए हो?
8: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
7: जो मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो।
8: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
7: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
8: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
7: बच्चे को गोद में उठाओ।
8: बच्चे की जान बचा लीजिए।
7: चलो निकलो बाहर।

0: 이거
1: 삼말 잡아야지.
0: 어차
1: 삼말 잡아야겠어.
0: 잡아 이거라.
2: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब।
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला? ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला? क्या किया? या खुदा माफी, माफी रहमत। अमर तो आला आ गया, क्या खूब रंग जमाक।
0: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
3: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमाक,
0: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
1: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं।

0: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बजे है ये सभा सम्पन्न होती है। अगली सभा 4 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 4 बजे हैं, दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा सीमा पार गुजरात और

आज हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन। नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम।

महावीर चक्र से सम्मानित, 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का। इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। यह एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी हुआ। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ, जानेंगे आगे।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही

विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर क्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की

भारत का हाथ पकड़ के उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसे उड़ाने भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसा मिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर जेट सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और

हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटर्न टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साइबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंक्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनसॉम मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे। लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

आज हम संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर, लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद

घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए।

विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं कमाल खान की आवाज में प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से। संगीत है विजू शाह का, शब्द रचना रैकवार की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए अभिनेत्री फिल्म का ये गाना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना मजरूह की।

सजना सजना ओ सजना।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज में, चमेली फिल्म से। संगीत है संदेश शांडिल्य का, शब्द रचना इरशाद कामिल की।

0: रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हमारे

0: हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और व्हाट्सअप एवरीवन। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूं उन्नति
1: और मैं हूं आपका साथी अभिषेक।
0: आज का शो है काफ़ी स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मीडियम की जिसने जनरेशंस को कनेक्ट किया है और जिसकी वजह से हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं।
1: दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई इंफोटेनमेंट का, कम्युनिकेशन का, जानकारी पाने का कोई साधन ही नहीं हो, तो वो मंजर ज़रा कैसा होगा। सचमुच इमेजिन करना भी आज की दुनिया में कितना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई कल्पना करने वाली बात है। चलिए आपको बता ही देते हैं, ये बात सीधे जुड़ी है हमारे आज के विषय से।
0: आज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी भारतीय प्रसारण दिवस। लेकिन ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये सेलिब्रेट करता है कम्युनिकेशन की पावर, आवाज़ों का सफ़र और स्टोरीज जो हर घर तक पहुंची। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे? 23 जुलाई 1927, इसी दिन मुंबई से भारत का पहला ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था।
1: सोचिए, नो स्मार्टफोन्स, नो सोशल मीडिया, नो पॉडकास्ट, सिर्फ रेडियो, और उसी रेडियो ने लोगों को न्यूज़, म्यूज़िक और लाइफ से कनेक्ट करना शुरू किया। और वही छोटी छोटी सी शुरुआत आगे चलकर इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की फाउंडेशन बन गई। और थोड़े सालों बाद ब्रॉडकास्टिंग को गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया और 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम सब प्यार से जानते हैं आकाशवाणी के नाम से। और ये आकाशवाणी है, बस इतना सुनते ही न जाने कितनी यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं ना।
0: सही कहा अभिषेक, न्यूज़ हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, पोएट्री हो या क्रिकेट कमेंट्री, आकाशवाणी ने हर जनरेशन को कुछ ना कुछ दिया है।
1: और वैसे उन्नति, लोग सोचते होंगे रेडियो मतलब सिर्फ गाने वगैरह?
0: नॉट एट ऑल, रेडियो वॉज मच मोर देन एंटरटेनमेंट। गाँव में किसानों को वेदर अपडेट्स और खेती की टिप्स मिलते थे, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते थे और अलग अलग लैंग्वेजेस में न्यूज़ और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलती थी।
1: और सबसे अमेजिंग बात, रेडियो को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए पिछड़े इलाकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में इसका रोल आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आया टेलीविज़न का ज़माना। भारत में टीवी ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई 1959 यानी 1959 में। और फिर आया हमारा अपना दूरदर्शन।
0: दूरदर्शन ने सिर्फ शोज नहीं दिखाए, उसने पूरे देश को एक स्क्रीन पर कनेक्ट किया। रिपब्लिक डे परेड, इंडिपेंडेंस डे स्पीच, स्पोर्ट्स इवेंट्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स सब घर घर तक पहुंचने लगे। और 1982 में जब कलर टेलीविज़न आया, तब तो टीवी देखना एक सेलिब्रेशन बन गया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ब्रॉडकास्टिंग का स्टाइल टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। FM रेडियो, पॉडकास्ट, वेब रेडियो, OTT प्लेटफॉर्म्स, लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब कंटेंट लिटरली एक पॉकेट में है।
1: सच कहूँ उन्नति, आज की पॉडकास्ट भी जो चल रहे हैं, देखते हैं हम, बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और जो इतना ट्रेंडिंग भी है, वो भी कहीं ना कहीं रेडियो की ही देन है। और बस माध्यम बदला है थोड़ा सा, लेकिन स्टोरी टेलिंग की जो पावर है ना, वो वही है। और प्रसारण की अगर बात करें तो इसका असली महत्व तब समझ में आता है जब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी हो।
0: सही कहा, बाढ़, तूफान, हीट वेव्स, पैंडेमिक्स, ऐसे समय में रेडियो और टेलीविज़न ही सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। कोविड-19 के समय

में भी हेल्थ अपडेट्स, गवर्नमेंट गाइडलाइंस और एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई थी। तो दोस्तों, प्रसारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।

0: वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है भारतीय प्रसारण दिवस यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे। तो इस दिवस विशेष पर हम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर एक विशेष बातचीत जिसका विषय है प्रसारण पत्रकारिता और युवाओं की जिम्मेदारी। तो आइए सुनवाते हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी के साथ अभिनव प्रग पांडे की ये बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, युववाणी के इस कार्यक्रम में और इस विशेष साक्षात्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारे युवाओं के लिए है, हमारे युवा दोस्तों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और खासकर उस जैसे देश, भारत जैसे देश की जो विश्व का सबसे युवा देश है। हर साल 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, तत्कालीन बॉम्बे और

0: आज के मुंबई स्टेशन से उस समय देश का पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। बाद में 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी के नाम से जाना गया। और इसी उपलक्ष्य में हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। प्रसारण की जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या है पत्रकारिता, क्या है लोक सेवा प्रसारण, क्या है लोक सेवा प्रसारक, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आज आमंत्रित किया है वरिष्ठ प्रसारक, सीनियर जर्नलिस्ट और पत्रकारिता के गलियारों के डॉक्टर धनंजय चोपड़ा। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं युवाओं से, बात कर रहे हैं युवाओं की और बात कर रहे हैं युवाओं के लिए। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि प्रसारण, जिसको हम अलग अलग रूपों में जानते हैं, अगर समेकित रूप से, कंसोलिडेटेड रूप से हम जानना चाहें तो ये क्या है, वास्तव में प्रसारण है क्या?
1: दरअसल दुनिया में जब कम्युनिकेशन यानी संचार की दुनिया का विकास होना शुरू हुआ था, तो ये पाया गया कि हम अपने शब्दों को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहले तो अशाब्दिक संचार होना शुरू हुआ था। जब आदि मानव के हाथ में आग लगी थी तो वो मशाल बनाकर टीले पर खड़ा हो गया और मशाल घुमाने लगा। मशाल घुमाते घुमाते उसने कभी क्लॉकवाइज घुमाया, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी वृत्त में, कभी क्रॉस किया, और इस तरीके से उसने अपनी भाषा गढ़ ली। दरअसल वो विजुअल कम्युनिकेशन कर रहा था और विजुअल कम्युनिकेशन उस समय में ही आ गया। हमने तो टेक्नोलॉजी डाली आज के विजुअल कम्युनिकेशन में। लेकिन जब आग हाथ में लगी तो उसने खाना पकाना शुरू किया, मांस पकाया, मांस पकाया तो खाल निकाली, खाल निकाली तो ढोल बनाई। अब फिर वो मशाल के साथ ढोल बजाने लगा। जब ढोल बजाने लगा तो यानी कि दूर दराज कबीले के लोग जो बैठे रहते थे उनको मशाल एक दिशा में घूमती मिलती थी और उसके साथ हर तरह की ढोल मिलती थी। यानी मशाल अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक बार ढोल बजा डम डम डम डम, फिर जब ढोल बजा तो डमडमा डम डम, अब बदल गई ध्वनि, और इस तरीके से ध्वनि के प्रसारण की शुरुआत कर दी आदि मानव ने। हमने टेक्नोलॉजी डाली उस समय के ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को हम आज यहाँ तक ले आए हैं। अब आप सोचिए कि जब वो आग लगा रहा था यानी आग जलाकर खाना पका रहा था तो लकड़ी का कोयला बना होगा, कोयले से बैठे बैठे खाना पकने के इंतजार में उसने कुछ खींच दिया होगा, खींच दिया तो चित्र बनाया। अब चित्र को कोई ध्वनि तो देनी पड़ेगी ना, तो शब्दों की दुनिया आ गई। हमने ध्वनि प्रसारण की दुनिया वहां से बनानी शुरू कर दी थी। हमें पता चल चुका था कि हम ध्वनि के माध्यम से बहुत कुछ कह सकते हैं, ध्वनियों के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को अपने से जोड़ सकते हैं। प्रसारण की दुनिया के आधार में यही कुछ था कि हम तरह तरह के शब्द बनाएंगे, तरह तरह की ध्वनियाँ निकालेंगे और लोगों से हम अपनी बातचीत का सिलसिला यानी संचार की दुनिया को हम बड़ा कर देंगे, और यही हुआ। प्रसारण की दुनिया दरअसल बहुत ही एक तरीके से कहा जाए संवेदनशील दुनिया है। हम अपने शब्दों की ध्वनियों से न केवल लोगों का दिल जीत लेते हैं बल्कि दिल दिमाग में छा भी जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लिहाजा हमारी आवाज बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और कहा जाता है कि प्रसारण की दुनिया तो उन आवाजों को बुलंद करने का काम करती है जो आवाजें पीछे छूट गई हों, जो आवाजें दबा दी गई हों, या जो आवाजें बुलंद होने से रह गई हों। और शायद इसीलिए रेडियो की दुनिया बड़ी होती चली गई, और जब रेडियो की दुनिया आई तो लगा कि हम कहाँ कहाँ अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं और कहाँ कहाँ की आवाज़ हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, दोनों काम होना शुरू हो, और इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण दुनिया है।
0: जी बिल्कुल। अगर हम बात करें रेडियो की शुरुआत की, सीधे सीधे ऑल इंडिया रेडियो कह दें, आकाशवाणी कह लें, तो इसने समाज पर उस समय से किस प्रकार से प्रभाव डालना शुरू किया, और आज की अगर हम बात करें तो आज भी क्या इसकी प्रासंगिकता है?
1: दरअसल अगर हम देखें, जब हमारा देश बन रहा था आज़ादी के बाद, तब लगा कि कोई एक प्रसारण सेवा होनी चाहिए या जो कोई एक माध्यम होना चाहिए जिससे देश के विकास में लोगों को जोड़ा जा सके, और रेडियो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश की हरित क्रांति में रेडियो का बड़ा योगदान रहा। किसानों को जागरूक करने और उन्हें शिक्षित करने का काम तो रेडियो ने ही किया। बहुत समय ऐसा भी आया जब रेडियो ने शिक्षा का भी काम किया। वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन के चार काम हैं, आपको एजुकेट करना, आपको गाइड करना, आपको इंटरटेन करना और आपको इन्फॉर्म करना। ये चारों काम रेडियो ने शुरू कर दिया। रेडियो सूचनाएं भी दे रहा था, रेडियो मनोरंजन भी कर रहा था, रेडियो मार्गदर्शन भी दे रहा था, तो रेडियो शिक्षित भी कर रहा था, और इसलिए रेडियो की भूमिका हमारे देश

0: के विकास में लगातार बढ़ती चली गई। हम अगर आज की बात करें कि 21वीं सदी का हम 25 साल गुजार चुके हैं और इस 25 साल में हमने ढेर सारे तकनीकियों को, ढेर सारी टेक्नोलॉजी को हम उफान पर आते देख चुके हैं, फिर भी हम आवाज़ की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हुए हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के इस दौर में जब पॉडकास्ट है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, ऐसे सर्च इंजन्स हैं जहाँ पर आप कुछ भी डालिए, एक सेकंड से भी कम समय में आपके सामने आ जाता है। ऐसे में आप रेडियो की क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी और क्या संभावनाएं देखते हैं?
0: देखिए, रेडियो की पहुंच आज भी बड़ी है। आकाशवाणी की जो पहुंच है वह उससे पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बस्तर में काम करते करते जब हम दूर दराज के आदिवासी इलाके में गए और वहां रेडियो बसता हुआ मिल गया, तो आप देखें कि रेडियो की पहुंच बड़ी है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में यूं ही थोड़ी ना है कि हमारे प्रधानमंत्री इसमें मन की बात कर रहे हैं, ये यूं ही थोड़ी ना है कि रेडियो की दुनिया आज भी विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में मौजूद है। वहां पर आज भी विद्यार्थी अपने कमरे में रेडियो ही बजाते हैं और वही उनका सहारा बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि रेडियो की महत्व, रेडियो का महत्व बना हुआ है। हम आज भी अगर देखें तो बहुत सारी सूचनाओं को लेकर, बहुत सारे मनोरंजन को लेकर और बहुत सारे गाइडेंस को लेकर रेडियो महत्वपूर्ण है। आप अपने युवाणी कार्यक्रम को ही देख लें, हम यहाँ के माध्यम से अपने युवाओं को न केवल जागरूक करने का काम करते हैं बल्कि उन्हें तरह तरह की सूचनाओं से लैस करने का भी काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि रेडियो की भूमिका आज भी लोक प्रसारक, जो हम कहते हैं ना कि लोक प्रसारक है, ये जन जन का माध्यम बना हुआ है। और इसीलिए अब तो नई टेक्नोलॉजी के साथ जब हम रेडियो को लेकर चले हैं तो आपके मोबाइल पर भी रेडियो उपस्थित है। जाहिर सी बात है कि अगर हमें पुराने गीत सुनने हैं या हमें शास्त्रीय संगीत सुनना है या हमें नाटकों का मजा लेना है ना, तो फिर हमें रेडियो पर ही आना होता है। यही है इसकी काबिलियत।
1: अभी आपने एक शब्दावली प्रयोग की, लोक प्रसारक। हम आकाशवाणी और दूरदर्शन, प्रसार भारती के झंडे तले लोक प्रसारक हम हैं, हम जिम्मेदारी भी समझते हैं। हम आज बात कर रहे हैं युवाओं की। आज इस 6 इंच की डिवाइस के साथ हर युवा अपने आप में एक छोटा मोटा पत्रकार है। लोक प्रसारण क्या होता है? क्या इस तरह की सूचनाएं जो क्षण भर में आपके पास आ जाती हैं, मैं सूचनाओं की बात कर रहा हूँ, हर सूचना सही जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे में ये मोबाइल होना और इतना सूचना आधिक्य होना, आप कभी भी कुछ भी कोई भी जानकारी सूचना आप तक आ सकती है, क्या जिम्मेदारी लेकर क्या था खासकर युवाओं के लिए? क्योंकि ये पिछले कई सालों में हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का थोड़ा अभाव था। हालांकि आज बहुत सजग हो गए हैं युवा, फेक न्यूज़ को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पता होती हैं कि कब कहाँ पर कितनी कही जानी है और कब कही जानी और क्यों नहीं कही जानी है। आपको क्या लगता है ये जिम्मेदारी कितनी है हमारे युवाओं के ऊपर?
0: देखिए, पहला तो आपने जो लोक प्रसारक की बात की, दरअसल हम लोक हित की बात करते हैं, लोक जागरूकता की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लिहाजा हमें ये समझना होता है कि जब हम रेडियो को लोक प्रसारक का एक माध्यम मानकर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है एक लोक प्रसारक के रूप में कि जो आज की दुनिया है वर्चुअल ऑटिज्म की, उससे हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं। रेडियो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, जो सूचना क्रांति की दुनिया है, जब सूचनाएं आई थी ना, तो ये समझना जरूरी है कि जब सूचनाएं आ रही थी तो जखीरा चला आ रहा था। कहा जा रहा था कि हम फ्लैट अर्थ के जमाने में आ गए, हम सपाट धरती के जमाने में आ गए, हमारे पास सारी सूचनाएं हैं, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये समझना होगा कि सूचनाएं बिखराव लेकर आती हैं, स्कैटर्ड लेकर आती हैं, और जब हम उन्हें सिस्टमेटिक करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती हैं। और यही फर्क है उस 6 इंच के, जो आपने कहा ना कि वो मोबाइल में जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं हैं। जब हम उसे लोक प्रसारक की हैसियत से प्रसारित करते हैं तो हम उसे स्कैटर्ड फॉर्म में जो आई सूचनाएं हैं उसे सजाते हैं, उसे बनाते हैं, उसे संवारते हैं, उसे ज्ञान का रूप देते हैं और हम जागरूक करते हैं उसके जरिए। जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी का काम है। आप मोबाइल, एवरीवन इज जर्नलिस्ट नाउ, एवरीवन इज फोटोग्राफर नाउ, अब मास कम्युनिकेशन की डेथ हो गई, डेथ ऑफ डिस्टेंस, ये सब बातें चलती रही हैं, लेकिन उस बीच में हमें समझना होगा देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस।

0: सारे अंतर हैं सूचनाओं के जखीरे में और ज्ञान के जखीरे में। मैंने फिर दोहरा दूंगा, सूचनाएं बिखर कर आती हैं, बिखराव लिए होती हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में आती हैं, और जब हम उन्हें सजाते हैं यानी सिस्टमेटिक करते हैं तो वो ज्ञान के रूप में आती हैं। हम लोक प्रसारक के रूप में ढेर सारी सूचनाओं को अपने श्रोताओं के लिए सजाते हैं, बनाते हैं और उन्हें ज्ञान में परिवर्तित करते हैं ताकि उनके दिमाग में कुछ नया जुड़े, वो नया कर सकें। हम आपको बता दें यही रोक कर आपके अगले प्रश्न से कि हम चले थे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, सूचना क्रांति से। हम सूचना क्रांति के बाद आए ज्ञान क्रांति में, फिर आए नवाचार क्रांति में, अब नए नए विचारों की क्रांति के समय में है। जाहिर सी बात है कि हम इनोवेशन से निकल कर नए नए विचारों को कैसे लाएंगे जब तक हमें सिस्टमेटिक ढंग से सूचनाएं ज्ञान में परिवर्तित करना नहीं आएगा, तब तक हम ये काम नहीं कर पाए। और ये लोक प्रसारक के माध्यम से हम बखूबी कर सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ।
1: बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन 20 साल का एक युवा जिसके पास कोई ऐसी सूचना आई जो उसे भावनात्मक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत अधिक आंदोलित कर देती है, ऐसे में वो इतना धैर्य कहाँ से लेकर के आए, कैसे वो करे कि उस समय पर वो अपने उस आवेग को रोक करके उसकी पड़ताल करे, भले ही वो कितना मार्मिक हो, कितना ही विभत्स हो, कितना ही संवेदनशील हो, जो उसको हर तरह से एक तरह से निचोड़ रहा हो, झिंझोड़ रहा हो, ऐसे में वो क्या करे।
0: हमने बात करनी शुरू की थी जब दुनिया बनानी शुरू की थी और हम पठन पाठन की दुनिया में आए थे और शिक्षा की दुनिया में आए थे, तो हमने कहा था IQ का जमाना है। आज 21वीं सदी के 25 साल बाद लोग EQ की बात कर रहे हैं, इमोशनल कोशेंट की बात कर रहे हैं। हम संवेदनाओं का मैनेजमेंट कितना अच्छा कर ले जाते हैं, हम संवेदनाओं का प्रबंधन जानते हैं या नहीं, हम मस्तिष्क का प्रबंधन जानते हैं कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट की बात पुरानी हो गई, अब हम मस्तिष्क प्रबंधन पर आ रहे हैं, हम इमोशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यानी हम संवेदनाओं के प्रबंधन की बात कर रहे हैं। और साथ साथ जब हम संवेदना यानी सिंपैथी की बात करते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि एम्पैथी यानी समवेदना में आइए। और जाहिर सी बात है कि हम जो क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले विद्यार्थी तैयार करने, और अपने आप को हर युवा को तैयार करना है कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे, हम अपनी संवेदनाओं को कैसे धैर्यपूर्वक समझ पाएंगे। जाहिर है कि हम भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है कि हम ये समझें कि संवेदना और समवेदना क्या है, दूसरों के दुख को समझने की जरूरत है। जब तक हम उनके बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, मैं कहता हूं ना कि अगर आप लोगों के बीच में नहीं गए तो आपको कहानियां नहीं मिलेंगी। और कहानियां कहां से मिलती हैं? देयर आर सेवरल साउंड्स, हम साउंड्स की माध्यम में बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा देयर आर सेवरल साउंड्स इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में ढेर सारी ध्वनियां हैं, वो दुख की भी हैं, वो सुख की भी हैं, वो दुरूहताओं की भी हैं, विद्रूपताओं की भी हैं, वो परेशानियों की हैं, वो आंदोलन की हैं, देयर आर सेवरल ध्वनियां, बहुत सारी ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को समझने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है, एनालाइज करना यानी विश्लेषण करने की जरूरत है, और ये युवाओं को करना है। बदलती दुनिया और बदलते समय में टेक्नोलॉजी के बहाव में बह नहीं जाना है, बहाव के बयार में अगर बह गए तो हम भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। जाहिर है पूरी दुनिया में इस समय कहा जा रहा है IQ के साथ EQ लाइए ना, अब इमोशनल कोशेंट की बात कीजिए ना, अपने विद्यार्थियों के, अपने युवाओं के संवेदनात्मक स्तर को बढ़ाइए ना, ये जरूरी हो गया है। और इसीलिए युवाओं को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, पढ़ना पड़ेगा, और किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में आगे पढ़ने के लिए उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको गुनना बहुत ज़रूरी है, उसमें डूबना बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न और निकल करके आता है, कहते हैं कि कोई भी साहित्यकार अपनी रचना में पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता, ये कई साहित्यकार खुद भी कहते हैं, क्या पत्रकारिता में भी ये लागू होता है? क्या कोई पत्रकार अपनी रिपोर्ट में या कोई सूचना या कुछ ऐसा प्रसारित करते समय पूरी तरह से निष्पक्ष हो सकता है या उसे होना चाहिए?
0: बिल्कुल निष्पक्ष हो सकता है और निष्पक्ष होना भी चाहिए, हम हैं सभी के, पर हैं किसी के भी नहीं। दरअसल जो पत्रकार होता है वो सबका है, और हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम वो सच दिखाएं। हम जज नहीं हैं, हम निर्णायक नहीं हैं, ये देखो तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा है, ये देखो तुम्हारे समय में क्या हो रहा है, तुम तय करो। और इसके साथ साथ पत्रकारिता का धर्म है कि लोगों को जागरूक बनाए, उस लायक बना दे सूचनाएं देकर, ज्ञान देकर, कि वह समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तो केवल दिखा रहे हैं, बंधु आप तय करो कि क्या सही है और क्या गलत है। पत्रकारिता का मानक तो यही रहा है, पत्रकारिता निरपेक्ष

0: भाव से निष्पक्ष होकर काम करने की प्रवृत्ति है, और यह प्रवृत्ति अपने भीतर लानी पड़ती है, यह प्रवृत्ति लानी पड़ती है। हमारा कोई नहीं है, हम सभी के हैं, या हम सभी के हैं पर हैं किसी के भी नहीं। तुम सच, जो तुम्हारा सच होगा वो दिखा कर रहेंगे, जो सच है वो दिखाएंगे, हम छिपाएंगे नहीं, हम बताएंगे, और यही आधार है। लेकिन पत्रकारिता करते समय क्या हम ऐसा सच दिखा सकते हैं जो समाज तोड़ दे? क्या हम ऐसा सच दिखा सकते हैं जो लोगों को कष्ट दे सके? क्या हम लोगों की दुरुहताओं को कम कर सकते हैं? बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, और यही चीज सिखाई जाती है कि पत्रकारिता में हम बहुत सारे शब्दों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के दिल ना दुखें, लोगों के दिमाग में गलत बात ना जाए। हम दरअसल भारत की जो पत्रकारिता रही है उसने बड़ी जिम्मेदारी से किया है। हम आज़ादी के समय में हमारा ध्येय था कि हम आज़ाद हो जाएं, फिर उसके बाद हमने देश बनाया कि हम देश बनाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, फिर हमने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए पत्रकारिता किया, हमने वो दौर देखा इमरजेंसी के समय जब हमें प्रतिबंध लगाया गया, फिर हमने देखा कि देखिए साहब टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को कैसे लेकर चला जा सकता है, वो बाजार भी आया। हम जानते थे कि यहाँ मुनाफे और मिशन के मुठभेड़ में कहीं पत्रकारिता चली तो नहीं जाएगी, लेकिन भारत है, बचा रहता है। आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी नैतिकताओं के बलबूते अपनी दुनिया को बचाए हुए हैं, और युवाओं को यह सीखना चाहिए। यह तरीका है, यह सलीका है, यह शिक्षा है, यह दीक्षा है कि आप समझें इस बात को कि जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज हमारा भी उतना है जितना लोगों का है। जितनी जिम्मेदारी हम लोगों पर थोपते हैं उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। समाज को टूटने थोड़ी ना देना है, समाज को बिखरने थोड़ी ना देना है। हम चौथे खंबे हैं, तीन खंबा अगर संभाल रहा है समाज को, यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अगर समाज को संभालने में, देश को संभालने में लगे हैं, तो क्या पत्रकारिता को नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, यही तो जिम्मेदारी है। और इसीलिए लोक प्रसारक की महत्व तो बढ़ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं।
1: डॉक्टर चोपड़ा, बहुत सारे युवा आपको रील्स में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरह बोलना सीखना चाहते हैं। ऐसे युवा जो रेडियो में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर ये भी है कि अब तो AI आ गया है, अब हो सकता है इस क्षेत्र में करियर कम हो जाए। कैसे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, खासकर जो एक आप बात कह रहे हैं, रेडियो के लोग, रेडियो को सुनने से बोलने का जो एक तरीका है, जो तलफ़ुज है, जो उच्चारण है, वो रेडियो में अच्छा होता है। कैसे कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुँचे कि वो रेडियो में बोलना शुरू कर सके या सीख सके?
0: तकनीकियाँ हमारी मोहताज हैं, हम तकनीकियों के मोहताज नहीं है।
1: क्या बात कही आपने।
0: हमें नए नए शब्दों से जुड़ना पड़ेगा, और साथ जो आपने कहा ना वो तकल्लुस की बात कि हम कैसे बोलेंगे, क्या हमारे उच्चारण होंगे, क्या अच्छे उच्चारण होंगे, तो हम तो रेडियो में देखते हैं ना कि टंग ट्विस्टर्स आपके पास हैं या नहीं है, किंग कर्तव्य विमूढ़ आप बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आप उसे एकदम लय में बोलना शुरू करिए, अपनी कहानी पढ़िए, कहानी को लहजे में पढ़िए, और कहानी के लहजे में पढ़ेंगे ना तब आपको बड़ा मजा आएगा। कहानी सुनना भी बड़ा जरूरी है, जिस माध्यम में हम जाते हैं ना उस माध्यम से हमें जुड़ना बड़ा जरूरी होता है। जो लोग अखबार में काम करना चाहते हैं वो लोग अखबार में पढ़ना शुरू कर दें, और जो लोग रेडियो सुनना चाहते हैं, रेडियो में जाना चाहते हैं, वो रेडियो सुनना शुरू कर दें। लिहाजा ये एक ऐसी विधा है जिससे जुड़ने में बड़ा मजा आएगा। हम लोग के जमाने में तो ऐसा होता था कि हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्टर थे उनकी नकल उतारा करते थे और उससे सीख लिया करते थे कि साहब कैसे हम काम करेंगे और कैसे हम इस दुनिया में अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लिहाजा जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें सबसे पहला काम करना होगा कि अपने शब्द कोश को बढ़ाना होगा, खास तौर से संपादकीय बोल बोल कर पढ़ो, और उसको उच्चारण के साथ बड़े ढंग से आप पढ़ें। मैं तो कहता हूं, एक बात और कह दूं, कहानियां पढ़नी चाहिए बोलकर कहानियां। रेखा ने उस दिन दरवाजा बड़े धाक से बंद किया, आवाज सुनकर गौतम चौंक पड़ा, इतनी जोर से क्यों दरवाजा बंद करती हो तुम हर बार, मैं चौंक जाता हूं। अरे चौंको तुम, हम इससे क्या लेना देना है, अब ये जो बातचीत है ना, अब बातचीत के लहजा कैसे लाएंगे, ये कहां से आएगा? जब आप किसी की बातचीत सुनेंगे तो आप, हमने कहा ना, समाज की ध्वनियों को पकड़ना शुरू करो। आप कहीं कहोगे कि ऑफिस के बाहर मजदूरों की भीड़ जमा होने लगी थी, और वहां नारे लग रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद।

0: दिन का तो आपने नारे ही नहीं सुना। ऑफिस के बाहर मजदूरों की भीड़ लगने लगी थी और नारे गूंजने लगे थे, इंकलाब जिंदाबाद। शब्द है भैया, उसकी ध्वनि है, उस ध्वनि को पकड़ो। अगर किसी कमरे में कोई अध्यापक आ जाता है और शोर मच रहा है उस कक्षा में, तो अध्यापक ऐसे थोड़ी नहीं कहेगा, खामोश तुम लोग, शोर नहीं मचाओ, खामोश शोर मत मचाओ। अध्यापक बनकर बोलो, अभ्यास करो, देखो ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी आवाज के लिए दुनिया इंतजार कर रही है।
1: क्या बात है, दुनिया इंतजार कर रही है आपकी आवाज के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा कि अगर आपको बोलना सीखना है तो पहले आपको सुनना सीखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: खैर, बहुत अच्छी बातचीत रही, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो युवा दोस्त हैं, जो युवा श्रोता हैं, उनको बहुत अच्छा लगा होगा और ज़रूर वो इससे कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। अंत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो, या आप डॉक्टर धनंजय चोपड़ा हमारे माध्यम से हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें या अपील करना चाहें।
0: राष्ट्रीय प्रसारक दिवस में हम ये तय करें कि हम जनहित को सबसे ऊपर रखेंगे, हम जो भी लिखेंगे लोगों के लिखेंगे, स्वांता सुखाय नहीं, कि हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल ये तय करें, और ये भी तय करें कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है, ताकि आप अपने समाज में रहते हैं अपने देश को हर उस फेक न्यूज़, हर उस अफवाह से बचा सकें, जो जिस आग की बात डॉक्टर चोपड़ा ने की थी कि आदमी ने जब आग जलाना सीखा, उसने जलाना तो सीखा लेकिन लगाना और फैलाना नहीं सीखा, उसने जलाना सीखा और उसका एक रचनात्मक प्रयोग। आग जलाना आना चाहिए, उसको फैलाने से बचाना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। और जैसा कि चलते चलते रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि भले तकनीक हमारे पास है लेकिन उसको प्रयोग कैसे करना है, उन्होंने कहा था कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, तू है शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट देगी अंग है तीखी बड़ी ये धार। आपके पास तकनीक है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आप क्षण भर में ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं, लेकिन ये अपने साथ लेकर के आता है जिम्मेदारी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिम्मेदारी, आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं। खैर, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए युवावाणी, सुनते रहिए आकाशवाणी। अगली पार फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर डॉक्टर धनंजय चोपड़ा के साथ अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, जिसका शीर्षक था प्रसारण, पत्रकारिता और युवाओं की जिम्मेदारी। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें,
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: उन्नति, जिस मीडियम यानी जिस रेडियो के माध्यम से हम अपनी बात अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, आज उसी मीडियम के बारे में, क्योंकि आज है भारतीय प्रसारक दिवस, तो हमारी चाहे चर्चा का विषय रहा हो या फिर डॉक्टर धनंजय चोपड़ा सर की बातचीत रही हो, कितनी सारी बातें उन्होंने हमको बताई, और उन युवाओं के लिए भी जो रेडियो के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं और जो रेडियो में आना चाहते हैं, जो अपना तलफ्फुज़, अपनी भाषा, अपनी कम्युनिकेशन पर कमांड लाना चाहते हैं, कितनी सारी बातें उन्होंने बताई और हम सभी को सीखने को मिली।
2: बिल्कुल।
7: और आगे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने श्रोताओं को सुनवाते चलते हैं ये गीत।

0: प्रगति जी के साथ बढ़ते हैं एक कदम आगे की ओर। बात करते हैं आज के प्रेरणा पुंज की और एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं के मन में साहस और संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित की, और वो महान व्यक्ति थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
1: वो एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए नए विचार रखे और अनेक प्रयत्न किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य की आदरणीय पदवी जननायक के रूप में जनता से प्राप्त हुई थी।
0: तिलक जी को याद करते ही मन में एक ही वाक्य गूंजता है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इतनी शानदार घोषणा थी जिसने हर युवा के दिल में आजादी का बीज बो दिया था।
1: बिल्कुल, तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी और निडर स्वभाव के थे। शिक्षा में गहरी रुचि और देशभक्ति का जज्बा उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था।
0: एक बार स्कूल में उनके शिक्षक ने उन्हें झूठ बोलने के लिए कहा ताकि वे बच सकें, लेकिन तिलक ने डटकर जवाब दिया, सच से बड़ी कोई ताकत नहीं, अगर सजा भी मिले तो सच बोलूंगा। इतनी छोटी उम्र में भी सच्चाई पर अडिग रहते थे तिलक जी।
1: तिलक ने युवाओं को सिखाया कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश को बदलने के लिए भी होनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई ताकि भारत के युवा वैज्ञानिक, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी से बनकर आगे आए और देश का नाम रोशन करें।
0: और यही नहीं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे अखबार केसरी और मराठा के माध्यम से आम जनता में जागरूकता फैलाई, क्योंकि उनकी लेखनी तलवार से भी तेज थी जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला के रख देती थी।
1: लेकिन इस संघर्ष का रास्ता इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लंबी सजाएं दी, पर तिलक हर कठिनाई का सामना करते हुए कहते हैं, अगर न्याय और स्वतंत्रता के

0: लिए मुझे कष्ट सहना पड़े तो वो मेरा सौभाग्य है।
1: 1 अगस्त 1920 को दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। आज जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो तिलक जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
0: और युवाओं के लिए तिलक का संदेश बिल्कुल साफ है, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और अन्याय के खिलाफ डटे रहो।
1: स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे हमने बताया, ये उनका एक ऐसा नारा था जो हर युवा को प्रेरित करता है। और स्वराज केवल आज़ादी की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की पहचान है। उन्नति, मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को चलते चलते अपने प्रोग्राम का एक आखिरी गीत भी सुनवाते थे।
0: बिल्कुल।

0: उन्नति बात कर लेते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हमारी क्वेश्चनेयर सेगमेंट की, जो कि हमारा कल का सवाल था। आदित्य एल्वन मिशन किस सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था? जवाब है सन, यानी कि सूरज का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था।
1: इसी के साथ हमारा आज का सवाल है, COP क्लाइमेट समिट किस ग्लोबल इशू से रिलेटेड है? आप अपना जवाब हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं अपने फीडबैक्स और सजेशंस के साथ। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना जवाब हमारे नंबर पर, जो कि है 8004926250 पर।
0: इसी के साथ उन्नति हम अपने श्रोता साथियों से लेते हैं विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध

0: प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री साइकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉक्टर सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मेहरदीन और साथियों से लोकगीत और किसान चर्चा के अंतर्गत पन्नालाल से अरविंद उपाध्याय की बातचीत। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा काव्य कौमुदी।

कवि होंगी बीना मिश्रा। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में गीत और भजन सुनिएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत, 8:30 आप सुनेंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव का, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा, 10:00 फिल्म संगीत, 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संगीता शंकर का वायलिन वादन सुनिएगा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल रात 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा, 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर यतीन्द्र कुमार से मनोज कुमार सिंह की बातचीत। विषय होगा शाक सब्जियों के खेतों की तैयारियां एवं सावधानियां। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी की वार्ता होगी, बच्चों में डायरिया कारण लक्षण और उपचार। सुबह 7 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर श्री ऋषि मिश्र का ख्याल गायन। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर कलाकार होंगी मल्लिका चटर्जी और शाम 7:45 पर मंजू नारायण। 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज। 10:30 लोकगीत सुनिएगा विष्णु राजा, प्रभा सिंह और विभय शंकर और साथियों के स्वर में। 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम हेलो गृह लक्ष्मी। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5 नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने सुनेंगे आओ जाने क्यों चुंबक लोहे को खींचता है लेकिन लकड़ी को नहीं। 5:15 यौवाणी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे छेदीलाल और साथियों से लोकगीत। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर मनीष जुगरान की वार्ता होगी कौटिल्य अर्थशास्त्रे सैन्य विज्ञानम। 8:15 पर फिल्म संगीत। 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तूरी डे की वार्ता होगी सुभाष चंद्र बोस द विजनरी लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कल रात 9:30 पर सुनिएगा कहकशा। ये थी कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सर्वकारः प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्तेभ्यः दंड प्रदानार्थं त्वरित न्यायालयं स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासयत् यत् छात्राणां भविष्य रक्षणं सर्वकारस्य वर्तते शीर्ष प्राथमिकता। संसदीय कार्यमंत्री

0: घनश्यो
1: राम राम। आओ भैया घनश्याम, का हाल चाल बा भैया?
0: हाल चाल तो बैजू भैया निक बा हो, लेकिन देखत भाई आज बड़ा साफ सफाई के साथ कपड़ा लत्ता पहनले हुआ।

0: लगत कि धान का रोपाई कई चुकला।
1: हाँ भाई, धान का तो रोपाई हो ही गई। अब दयु देखा, कोई कृपा भी की है बाटे ने,
0: खूब
1: ऐसा
0: खूब
1: हाँ
0: भैया
1: रोज
0: खूब,
1: कुछ ना कुछ भाई बरसिन देत बाटे ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बैजू भैया, जैसा जैसे तू तो निपटाई लिहा। अब अगर भैयन का ना जेकर भैल बा हो, अब देर करे के जरूरत ना हो।
1: नहीं नहीं किसान भाई अपन समझत बटन भाई, उतना जल्दी हो सकत बल लगाए लेत बटन भाई। कहूँ दिक्कत बात अलग बात बा है, और भाई देर से बेहन डाले रहा तो का भाई कुछ देर होवे क्यों
0: हाँ थोड़ा
1: है।
0: सा भैया तलबेतल अगर हो तो ठीक, लेकिन
1: हाँ
0: भैया हो जान बूझ के अब देर करे के देखा जरूरत ना हो। बैजू भैया आ
1: ना
0: देखा हो अपने यही रेडियो के माध्यम से तमाम समय समय पर वैज्ञानिक भैया लोग, जानकार भैया लोग से भैया खेती किसानी के बारे में बात बतकई होत रहता है। अब भैया जानकारी हमरे पंचन तक पहुँचत है।
1: बात सही कह भाई, हम तो कही जानकारी के बात की है ना, तो भैया रेडियो के बड़ी भूमिका बाटे है, जोन बाटे चाहे शिक्षा हो, साहित्य हो, संगीत हो, अपन खेती किसानी के बात हो, चाहे युवा वर्ग के बात हो, या चाहे लड़कियन के बात हो, सब के लिए कुछ न कुछ देखा जोन बाटे जानकारी प्रसारित की ही जात है। आज सबको
0: बिल्कुल
1: देखते हुए देखा
0: बिल्कुल
1: हो आज जोन बा न राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनावा जात
0: कहेगेला
1: बा।
0: कहेगेला बैजू भैया हो, देखा 23 जुलाई 1927 के हाँ भैया बम्बई से जौन हो रेडियो का जौन पहला प्रसारण भेल, शुरुआत भेल
1: हाँ, इंडियन
0: हाँ
1: ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत
0: हाँ
1: भैया।
0: ये हो देखा हमार तोहार कहल जाता ना कि ये जैसे मन पहुँचत है ना, वैसे अपन रेडियो हो चाहे पहाड़ हो, नदी हो, धरातल हो, समतल हो, कहीं भी हो हैं भैया हो, अपन संदेश अपन जानकारी लेके रेडियो उपस्थित रहता है।
1: सही कहे भैया, हर तरह की जानकारी साथे साथे मनोरंजन भी तो भैया हो, तमाम तरह जौन जानकारी दी जात बा, तो कहीं न कहीं भाई शिक्षा के चाहे क्षेत्र हो, संगीत हो,
0: कौनो
1: या हर
0: कौनो
1: हर
0: भैया
1: चीज़
0: हर तरह का,
1: जानकारी
0: हर
1: बा,
0: तरह का
1: तो
0: भैया
1: भैया दी जात बा। भैया हो इसका प्रसारण जाना शुरू हुआ, एकरे बाद 1931 में भैया ना ऑल इंडिया रेडियो हो गया, फिर 1956 में आकाशवाणी के नाम से जाना जाए लगा। एकर मुख्य देखा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाँ
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: बात ही
0: हाँ
1: एकर
0: हाँ
1: अलग
0: हाँ
1: बा भाई जोन
0: बिल्कुल
1: बा।
0: बिल्कुल हो भैया, देखा स्वतंत्रता आंदोलन में भी रेडियो का बहुत भूमिका रहा। तो भैया हो देखा वो जौन कहला है ना कि भैया मनोरंजन हो चाहे जड़ जानकारी हो, अब भैया हो चाहे देखा खेत खलियान, हम तो कहीं हो जीवन के हर स्तर पर हर परख पर अपन रेडियो अपन आकाशवाणी खड़ी हो।
1: सही कह सही कह, तो भाई हम तो कही अपन सब के लाभ भी लें भैया। और जोन बाटे है बात रेडियो के आवत बात भैया हो, देखा जानकारी तो दी ही जात रहा था। अब समय समय पे देखा अपन देश पहले गुलाम रहा, चाहे जोन भाई अंग्रेजन का रहा या जोन बाटे मुगलन का रहा, तो भैया हो अंग्रेजन के समय में अपने देश के तमाम नौजवान अपने जान के बाजी लगाए के देश का आजाद करन, अपने बलिदान भी देहन बाटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: तमाम तरह
0: भैया
1: के दौन बाटे हर जगह से, हर लोग जैसे बताया था ना कि हर क्षेत्र पहुँचत बा, जगह जगह ऐसा सूचना भी दीज लोग आपस में दई लें कि भाई हुआ इस करे के बा, इस करे के बाटे हर चीज़
0: बिल्कुल हो
1: भैया।
0: बिल्कुल। आ देखा युग जमाना बदल गेल भैया दिन पर दिन, देखा अब तो टेलीविजन आ गल, इंटरनेट आ गेल,
1: आप तो
0: लेकिन
1: बहुत
0: ये
1: बात बा।
0: दौर में भी अपन आकाशवाणी अपने पहले जैसे ही रुतबा के साथ खड़ा हो।
1: ये बात तो
0: हाँ
1: सही कह भैया।
0: और देखा भैया जिसन बात कैले है ना कि आजे के दिन देखा हो भैया 23 जुलाई जोन है 1906 के मध्य प्रदेश के भावरा गांव में ना भैया चंद्रशेखर आजाद का जन्म भयल।
1: हाँ अब तो भैया उनके नामों गांव का चंद्रशेखर आजाद नगर होगी वह जो जोन का।
0: हाँ भैया तो भैया हो देखा जोन कहत रहला ना कि समय समय पर हो गुलामी के समय में अंग्रेज बड़ा आतताई हो गल रहना, पर लेकिन भैया कुछ अपने ही वीर सपूत ऐसन रहने जे उनके सामने सीना तान के खड़ा भेल। ओमन भैया वो अपन लाभ अपन स्वार्थ नहीं देखना, वो
1: देश
0: देश
1: हित का
0: का
1: बात
0: हित
1: रहे।
0: देखना, राष्ट्र का हित देखना है भैया हो। कहल जात है कि आजाद जी जौन है ना चंद्रशेखर भैया जौन है भैया, अंग्रेज जब इनके पकड़े ना तो भैया हो इनसे पूछें कि का नाम बाय तोहार, तो ये कहें आजाद,
1: हाँ
0: पिता का नाम पूछे तो कहें स्वतंत्रता, कहें कहाँ के रहे वाला निवास स्थान का है, ताल ठोक के कहने जेल।

0: जेल। अब भैया बात तो इस बात रहे कहे ना, हम आजाद ही आजाद रह, आजाद होई के ही मरब जो
1: मरब भैया हो। तो देखा ये बात बिल्कुल सही रहल कि 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के भैया जॉन अल्फ्रेड पार्क हो ना, उमन भैया देखा जब अंग्रेज इनके घेर ले ना भैया, गोली चलल, जब एक गोली रह गई इनके लगल कि अभी हम पकड़ लिए हमके, इनके अपन संकल्पना याद आ गल कि हम आजाद हई, आजाद रहब और आजाद होके मरब, या हो वो गोली अपने जौन के सिर में उतार लेना।
0: जनरल नाट बावर रहा जो बाटे है भैया हो आजाद ही मरन, अपन का अल्फ्रेड पार्क ना जाना था, किसान भाई द कंपनी बाग जनबे ही
1: करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो, बिल्कुल भैया हो। तो देखा यही तरह से स्वतंत्रता और स्वाभिमान के अमर प्रतीक बन के आज भी हमरे तोहरे बीच में उनकर संदेश, उनकर त्याग, उनकर तपस्या भैया एकदम बिल्कुल ललकारत रहा।
0: भैया हो हम तो कही कि आजाद जी की जयंती मनावे के मकसद यही बा कि हम तू भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ करी,
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो,
0: ऐसा काम करी कि हमारे देश का एकता अखंडता बनी रहे, देश विकास करे,
1: हर कदम पर देशभक्ति बा हो, ये नहीं सीमा पर जाके लड़बे देशभक्ति बा।
0: हाँ, अपन अपन योगदान हर जगह दे सकते
1: हम कहीं भैया, अपन देश अपन समाज के संवार के सुंदर ढंग से अच्छे से रखा, यो देशभक्ति बा।
0: सही कहा भैया, तम तो कहीं देखा ही चर्चा के बात रही आज जोन बाटे है कि किसान चर्चा भी बा, श्री पन्ना लाल से अरविंद कुमार के बात बत कही भाई, वे किसान भाई सुनी मुन करे पहले आवे की गीत गाओ नहीं सुनवाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो। तो देखा मैहर दिन उनके संघातिन के ना एक विकास गीत बा आवा के सुन ला,
0: सुनवाए दो भैया, सुनवाए दो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया घनश्याम, देखा हो भैया, सनेस भी हो गया, महियरदीन और संघातीन का गौनी भाई जी। भैया कहल जाता है, जब एक सजग किसान, एक सफल किसान जब अपन किसानी, अपन खेती के बारे में बतावेला, तो वो और सुनने वाले किसान भैयन के ऊपर बढ़िया असर करेला और वो भी अपन खेती किसानी में वही तरह का प्रयोग करेला।
4: सही कहे घनश्याम भैया, हम कहे ना अनुभव का काफी लाभ मिला था दूसरे किसान भाई।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: जो प्रगतिशील किसान भैया हरे हैं वो कैसे खेती करत बाटे, का अलग तरीका से करत बाटे, और भी किसान को सीख मिला था।
3: बिल्कुल, तो देखा यही तरह के किसान भैया है नो पन्ना लाल, उनसे अरविंद कुमार भैया बातचीत कर लेंगे खेती किसानी के बारे में। तो अब ये किसान चर्चा के तुह सुना और हमारे किसान भैया भी सुना।
4: सुनवा भैया।
5: किसान भैया, हमारे सभी समय समय पर अपने पंचायती में प्रगतिशील किसान भैया हरे के बुलावा जात है, उनसे उनके खेती किसानी का अनुभव बांटा जात है और वो खेती किसानी के अनुभव से हमारे सभी लाभ लिया जात है, ओके अपने खेती किसानी की पद्धति में भी उतारा जात है। तो यही तरह के प्रगतिशील किसान भैया पन्ना लाल जी आए बटे अपने पंचायती में, इनकर बहुत बहुत स्वागत बाटे। आप पूरे छेनी धन्नीपुर मानधाता प्रतापगढ़।

0: से आए बाटें। भैया पन्ना लाल जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों की ओर से आपसे ही जानना चाहे कि आपके कुल कितनी खेती बाड़ी है और कौन कौन प्रमुख फसल आप लेते हैं, बताओ।
1: भैया अपने पास 12 बीघा जमीन है।
0: अच्छा,
1: 12 बीघा जमीन है भैया। अभी जान लें कि जब हम गेहूं कटाए हैं,
0: अच्छा,
1: तो कुछ तो आलू लगवाए रहे
0: जी।
1: जब हम गेहूं कटाए हैं, गेहूं के बाद वहाँ हम ढैंचा बोवाए दिन हैं।
0: अच्छा,
1: ढैंचा बोवाए हैं भैया। बाकी जमाना
0: कह का मतलब ढैंचा आप बोए हैं हरी खाद के खातिर?
1: हरी हरी धान में हरी खाद भैया, बढ़िया पड़बे क्या।
0: बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप दो महत्वपूर्ण फसल लेते हैं, एक गेहूँ और एक धान। धान एक रबी का फसल है और दूसरी खरीफ का फसल है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बताएं कि भैया हो, जब खेत खाली होने का समय रहता है, जायद का समय रहता है, तो आप ढैंचा का बुआई कर देते हैं, जौने से कि हरी खाद मिल जाते है तो माटी का उर्वरा शक्ति भी बढ़िया रहता है। आप ढैंचा के हरी खाद में कैसे बनावते हैं, करे बारे में थोड़ा बताओ।
1: हरी खाद बनावे के भैया ये जान लें कि 1 फीट या 2 फीट का ढैंचा हो गया, नहीं 3 फीट मान लिया
0: जी,
1: तो ओका पलटा वाले हर पानी भरा के पलटा वाले हर से जुताए के धान लगवाए दे भैया।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया। जब माटी पलटे वाले हल से आप जुताई कर देते हैं तो वही में सड़न हो जाते हैं, सड़न के बाद बढ़िया खाद हो जाते हैं। कहे का मतलब कि रासायनिक खाद का आवश्यकता नहीं पड़े थे। आप बताएं, चूंकि अब समय आ रहा बाटे भाई, धान की रोपाई भी कहीं कहीं शुरू हो गई बाटे, तो आप अपने धान के नर्सरी की तैयारी कैसे की हैं, कितना खेत में धान का पैदावार लेते हैं, एक बारे में थोड़ा कुछ विस्तार से बताएं, कितना खेती किसानी कर रहा बाटे धान के संबंध में?
1: भैया धान तो लग चुका है।
0: अच्छा, तो कितना खेत पर रहा आपका
1: धान? अभी जान लें कि धान 8 बीघा धान हमारे लग चुका है।
0: बहुत बढ़िया। तो कहा गया बाटे भैया कि धान पान और केरा तीनों पानी के चेरा। तो धान के फसल में सबसे महत्वपूर्ण है जल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था। आप प्रगतिशील किसान हैं पन्ना लाल जी, आपसे हम किसान भाई इनकी ओर से ही जाना चाहे कि आप पानी का व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था अपने धान में कैसे किए बाटे?
1: भैया अपने पास समरसेबुल है।
0: अच्छा,
1: निजी अपन समरसेबुल है
0: तो हर खेत में पहुंच जाते हैं?
1: हाँ भैया, खेतों अपने चक्कर में लग गया है भैया।
0: बहुत बढ़िया। तो अच्छा, एक बात और जानना चाहिए आपसे कि प्रगतिशील किसान अरे भैया बार बार ही देखत सुनत समझत हैं कि जौन जौन उन्नतशील ढंग का बीज आवत हैं, जौने से कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार मिलत है, तो आप ही पूरे 8 बीघा में कौन प्रजाति का धान लगाए बाटे, रोपाई की है बाटे और का स्थिति है आजकल, बताओ।
1: भैया जान लें कि मंसूरिया धान लगाए हैं।
0: अच्छा,
1: और महीन धान लगाए डिस्चार्ज।
0: अच्छा,
1: और कुछ एक धान है वैरायटी का आ रहा है महकौआ, का थोड़ा बहुत बढ़िया प्रजाति था तो का खाने के लिए लगा दिए है।
0: अच्छा,
1: हाँ भैया,
0: तो ये हिसाब से आप लगाए हैं तो का बढ़वार का हाल है?
1: लगावे के विधि आप भैया किसान
0: हाँ हाँ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम लगवाए कैसे
0: स्वागत
1: ये जान लें कि ढैंचा बोवाए के पलटा वाले हल से ओका पलटवाए के सरावे के लिए थोड़ी से मात्रा रासायनिक खाद यूरिया थोड़ी से बहवाए दिन, आधा बिस्सा एक आधा किलो एक किलो के बिस्सा
0: जी,
1: सर के रंग होगी भैया
0: जी जी।
1: बाकी जोन बचा मूंग वाला खेत, मूंग वो पलटवाए के पलटा वाले से मूंग में ऐसे कई दिन धान लगवा दिन, हरी खाद का सेवन हम अपने पूरे खेते 8 बीघा धाने में रासायनिक वो क्या कहते हैं हरी खाद का सेवन किया भैया।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हिसाब से तो आप बताओ कि का बढ़त कैसे है धान का?
1: धान तो भैया भी जान लें कि अब ईमान के चलें 2-4 दिन में हम खाद बहाओ भैया।
0: अच्छा,
1: हाँ भैया हमारा बहुत पहले लग गया के धान में
0: जी।
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया है। काहे से कि जैसन बताए ना आपकी सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी होता है धान में। आप प्रगतिशील किसान हैं, सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़िया की है, ये बहुत अच्छी बात है। धान में देखे में ये आवत है कि चूंकि खरीफ का फसल है तो ये धान में खर पतवार बहुत हो जाता, चूंकि जल धारण क्षमता भी अच्छी है धान का,

0: आप बतावें कि अपने धान के फसल में, चूंकि आप बड़ा काश्तकार हैं, कमोबेश 8 बीघा क्षेत्र में आप लगाए बैठे हैं, तो आप अपने फसल में, धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं, एक बारे में थोड़ा बताओ।
1: भैया खरपतवार हम किसान भैया बतावे चाहे था कि धान लगावे के पहले झूरन में का जोतवा दे, जितनी घास आए मर जाए।
0: अच्छा,
1: और ना ही मरत तो फिर दवाई के सेवन करें।
0: जी जी, जैसे धान बढ़ गया बाटे और खरपतवार अधिक हो गया बाटे, कभी कभी खेत में ऐसा होता है कि खरपतवार पूरा मुख्य फसल की ढांक लेते हैं और उनका बढ़वार ज़्यादा हो जाता है, वो स्थिति में आप किसान भाइयों की क्या सलाह देते हैं कि कैसे काम करें कि खरपतवार पर नियंत्रण हो सके?
1: सलाह तो भैया हम किसान भाइयों की यह देवा चाहे थे हाँ। कि वो का झूरन में जोताए दें।
0: अच्छा,
1: चाहे ढांचा हो चाहे मूंग हो, कंची झूरे में जोताए दें, चाहे जवन चीज रहे सूख जावे करे।
0: जी जी,
1: और फिर लगावे के पहले धान फिर दो चार फेरा का जोतवा दें।
0: जी,
1: ओमा खरपतवार रहिन जाए और लगाए के बाद में पानी दो चार दिनों का सूख न पावे धाने का, घास हो बे न करे फिर।
0: जी जी जी, ये पद्धति से भी हमारे सभी खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकत है। एक दूसरा सामान्य पद्धति है कि अगर खरपतवार ज़्यादा बढ़ गए हैं तो खुरपी से निकाई गुड़ाई भी हो जाता है। एक तीसर बात आवत है कि अब बाजार में तरह तरह के जौन खरपतवार नाशी आवत हैं, वो भैया अपने कृषि रक्षा इकाई में हम किसान भाई जावा जाए, ओकर प्रयोग करे के विधि जान लिया जाए, और वो जौन बता रहा बाटे कृषि वैज्ञानिक खरे भैया, वही का संतुत मात्रा रासायनिक जोन है खरपतवार विनाशी जोन औषधि हैं, उनका प्रयोग करके हमारे सभी अपने धान के खरपतवार से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसर बात आवत है कि चूंकि धान खरीफ का फसल है, बरखा ज़्यादा होता है, तापमान बढ़िया रहता है, तो रोग भी लगत है। खरपतवार के अलावा धान की फसल में रोग भी लगत है, आप बतावें चूंकि प्रगतिशील किसान हैं तो हम किसान भाइयों के खातिर आप कौन सुझाव देते हैं कि हमारे सभे अपने फसल के कैसे रोग रोधी बनावा जाए, बताओ।
1: भैया ऐसा है, ज्यादा रासायनिक खाद न डालें।
0: जी बहुत बढ़िया,
1: जैविक खाद डालें।
0: जी,
1: गोबर की खाद डालें।
0: जी,
1: और हो सके भैया कंचित मिल जाए नीम का तेल।
0: जी जी,
1: नीम का तेल कंचित मिल जाए, ना ही नीम का खरी मिल जाए और ना ही रासायनिक खरी हो।
0: जी जी,
1: और कंचित खाद में मिला के DAP में छीट दी जाए तो रोग तो ना आए भैया।
0: कहे का मतलब रासायनिक खाद में
1: हाँ
0: नीम का खली प्रयोग करके हमारे सभी अपने पौधन के रोग रोधी बनावा जाते। यही तरह भैया देखा कि अब तो नीम कोटेड यूरिया भी आ गई बाटे, ओकर प्रयोग करके भी अपने फसल के बढ़िया किया जा सकते है। आप बतावें कि कुल कितना उत्पादन हो जाता है आपका 8 बीघा में, कमोबेश कितना आशा किए हैं कि कितना पैदावार हो जाएगा?
1: भैया ऐसा है कि अब अगले वर्ष तो लगवाए रहे भैया,
0: हाँ पिछले साल,
1: पिछले साल
0: जी,
1: तभी जान लें कि 18-20 कुंतल का एवरेज दे रहा बीघा हम भैया।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अच्छी पैदावार हो जाती है, तो आपके बढ़िया पैसा भी मिलते है।
1: हाँ भैया,
0: भैया पन्ना लाल जी, धान के अलावा आप और कौन कौन खेती बाड़ी करत हैं?
1: हम भैया
0: आप बताओ,
1: आप ये जान लें भैया, हम भिंडी बोआए है और जान ले कोहड़ा भी बोआए है भैया।
0: अच्छा,
1: परवल भी लगवाए है भैया।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो ये जितना साग सब्जी का आप पैदावार लेते हैं ये खाली घर में खाए के खातिर होता है या कहीं ना कहीं हाट बाजार भी जाते?
1: ना ही भैया, अरे घर ही में खा तो 4 पैसा मिले कहाँ से हमका।
0: जी जी, तो कहे का मतलब हाट बाजार भी,
1: हाट बाजार में कुछ है खेतवा से ले जाती भैया, व्यापारी लोग आवा थी
0: हाँ।
1: कुछ माला ले गेन बोरा दुई बोरा, ना ही तो बाकी मंडी चला जाता भैया।
0: बहुत बढ़िया भैया, तो साग सब्जी भी आप पैदा करते हैं, और धान या साग सब्जी के अलावा और कौन फसल लेते हैं इस समय पर?
1: अरे भैया ये जान लें कि बाजरा बोआए है भैया।
0: अच्छा
1: हाँ, बाजरा भी बोआ हुआ है भैया।
0: तो कैसन बढ़वार है बाजरा का?
1: बाजरा अब बोबे है भैया।
0: अच्छा
1: हाँ, हाँ
0: थोड़ा लेट हो गया।
1: हाँ लेट हो गया,
0: कोनो बात ना, दऊ राजा थोड़ा नाराज चल रहा बाटे।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: एक बात हम आपसे पूछब, चूंकि आप इतना बड़ा काश्तकार हैं, आप अपने खेती किसानी के अलावा, सामान्य बात है गांव में कहा जाता है कि भैया दरवाजे पर दो चौवा नहीं है पशु नहीं है तो बढ़िया किसान नहीं माना जाता है, आप बतावें कि पशुधन के मामले में आप कितना पशु रखे हैं और उनका खान पान का व्यवस्था

0: कैसे करत?
1: अरे भैया जान लें कि तीन ठित भैंस हैं
0: अच्छा
1: और दो भैंस लागत यहाँ है भैया हमारे,
0: अच्छा अच्छा
1: और गैया जान ले आप है तीन गैया हैं, दो गैया मान के चला है कि छोटी गैया है,
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ दो
0: कहे का
1: भैंस,
0: मतलब छह
1: हाँ
0: पशु हैं।
1: हाँ
0: तो आप बताओ कि जो दूध होता है
1: हाँ
0: ओके खाली घर में खपत होता है या हाट बाजार जाए के या दुग्ध समिति के आप देते हैं जोने से कि चार पैसा मिल जाए?
1: ना ही भैया जान लें कि कंचित देव ना, तो उनका चूनी चोकर कहाँ से ले आऊँ
0: सही
1: भाई।
0: बात है। तो कहे का मतलब कि आप जौन है खाए पिए से जौन बचत है दूध ओके आप हाट बाजार भी ले जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। हम आपसे एक बात और जानना चाहे, क्योंकि ब्यात वाले जौन पशु हैं उनके संतुलित तो भोजन बहुत आवश्यक है, तो आप अपने पशुधन के खातिर हरा चारा और संतुलित तो भोजन कैसे देते हैं, कहाँ से व्यवस्था होते हैं, एक बारे में थोड़ा बताओ।
1: भैया हम किसान से ही बतावा चाहिए था, हम चरी बोआ दे है भैया,
0: अच्छा
1: इनका हरा चारा का चरी बोआया है भैया, और यहाँ ले चूनी चोकर मंगाए ले थे भैया, इनका बहुत विध से खियाए थे भैया,
0: अच्छा
1: हाँ भैया हाँ।
0: तो इस समय तो मान लिया जाए कि बरखा का टाइम है तो हरी जोन चरी है मिल जाते हैं, ठंडक में या फिर जोन रबी और खरीफ के बीच का जोन समय है जायद, उस समय में आप अपने पशुओं की क्या व्यवस्था करते हैं?
1: तो समय में भैया ये जान लें कि फिर बोआवा जात भैया, वो कहाँ व्यवस्था की जात भैया,
0: क्या करते हैं क्या
1: ठंडी
0: करते हैं
1: माँ जान ले जय जय
0: जायद में क्या
1: जो
0: करते हैं? ठंडी में तो
1: ठंड
0: ठीक है
1: हाँ
0: वर्षी में जय
1: हाँ
0: मिल जाए, जौन गर्मी का सीजन जौन गुजर गया बाटे,
1: हाँ
0: ये में आप अपने पशुधन के खातिर कौन व्यवस्था किए रहे हैं, हरा चारा मिलत रहा?
1: हाँ हाँ भैया हाँ हाँ
0: अच्छा तो कैसे देते रहे हैं भैया?
1: अरे भैया अभी जान लें कि चूनी चोकर बाजार से मंगाए लेते रहे, और
0: अच्छा
1: अपने पास चरी है ये या है भैया,
0: जी,
1: मशीन अपने पास है ये है बलवाए के भैया,
0: सही कहे
1: आ
0: सही कहा
1: तुरंत भूसम सना के दे दिन भैया।
0: भैया हो किसान भैया, देखा पशुपालक भैया, एक बात का ध्यान रखा जाए कि जौन खूब गर्मी रहे तो सवेरे कैती ही काट लिया जाए हरा चारा, और ओके छटवा के मशीनी में छटवा के कोशिश रहे कि नाद में जौन पशुअन का नाद है और मैं ठंडा पानी में घंटा दो घंटा रख दिया जाए, तो जौने से कि उनकर गर्मी निकल जाए तो पशुअन के कोनो रोग ना हो। भैया हो आप पशुपालक, बढ़िया पशुपालक हैं, तो आप पशुअन के खातिर चूंकि बरसात का मौसम है उनके रोग ना लगे ओकरे खातिर आप क्या व्यवस्था किए हैं?
1: भैया ऐसा है भैया कि उनका बहुत ये जान लें भैया कि घरे से ज़्यादा उनका व्यवस्था हम के है, उनके लिए खिड़की लगवाए है गर्मी की हवा जाए, और कमरा बनवाए है भैया, वही कमरा के अंदर बंधाए थे भैया,
0: अच्छा
1: ठंडी में खिड़की बंद कर दे थे
0: अरे
1: भैया,
0: उनके रोग के खातिर आप क्या किए हैं?
1: रोग के खाती भैया उनका हमेशा ही जान लें कि अच्छा चारा देते हैं जल्दी रोग उबई नहीं कर।
0: चलें बहुत बढ़िया है
1: हाँ
0: पशुपालक भैया। अरे देखें बता रहा बाटें कि पशुपालन में चूंकि बरसात में गंदगी ज़्यादा रहत है, संक्रमण का संभावना ज़्यादा रहत है, तो पशुअन के नियमित धोवा जाए, साफ सफाई रखा जाए, उनकर जो पशुशाला है ओके साफ सफाई रखा जाए, और चूंकि बरसात का मौसम है खुरपका मुंहपका या अन्य रोग बहुत ज़्यादा लगने की संभावना है, तो उनके रोग रोधी टीका जरूर लगवावा जाए पशु चिकित्सालय में जाए के, साथे साथे जो उन परजीवी हो जाते हैं चूंकि बरसात है किलनी है मच्छर हैं, तो उनके खातिर धुआर कीन जाए और साफ सफाई का बढ़िया व्यवस्था रखा जाए, तो अपन पशु प्राणी भी अच्छा रहिए तो अपन स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। भैया हो आप हमारे स्टूडियो में आयन और हम किसान भाइयन के बहुत बढ़िया जानकारी दिए, हम किसान भाई आपके इस सब बात से जरूर फायदा उठावा जाए, जानकारी देवे के खातिर साथे साथे पंचायती में आवे के खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
0: वाह
2: भैया
0: घनश्याम भैया, हम कही देखा था तो देखा पन्ना लाल से अरविंद कुमार के बात बात कही किसान भाई सुनन भाई किसान चर्चा में, और
1: बहुत
2: बढ़िया
1: बढ़िया भैया,
2: खेती किसानी पशुपालन साग सब्जी में भी बढ़िया काम करत बाटे न। अब देखा हो एक काठी और गीत गौना ही हो जाता तो मजा आ जाता इसके।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो देखा हरिश्चंद्र हलचंद के संघातिन गावा की बिरहा किसान भाई का
1: वाह
2: सुने।
1: भैया वाह सुनवाए था।
3: राजा रतन सेन महिपाल जिनके कुंवर से

कि धोती बांध कमर में धोबी पेटी लिया निकार खोला पेटी जिसदम धोबी अरे मनवा भवान हाल हो बहिनिया संगे घूमा भवरी रक्त से रंग

0: आ
1: हाँ भैया,
0: भैया,
1: भाई बैजू
0: हमके देखा हरिश्चंद्र हलचल, उनके संघातिन बिरहा किसान भाई, सुने ना
1: खूब
0: संदेश भी
1: खूब
0: सुने,
1: खूब भैया हो खूब।
0: एक पूरी कहानी बताई दी हैं।
1: हाँ
0: और
1: देखा,
0: देखा हो हम तो कहीं ना कि अपने हियाँ देखा पंचायत घर से कुछ न कुछ चीज़ किसान भाई के रोज़ सुनवावा जात है। तो भाई किसान भाई के भी मन होत हो कि हमहू अपन बात कही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भाई वो अपन जवन भी क्रिया प्रतिक्रिया दे चाहथिन, कुछ सुझाव सलाह दे चाहथिन न, तो भैया हो ओकरे लिए एक ही नंबर बा। आजकल तो पूरे गांव में सबके मोबाइल बाँटे है, तो ओका लिख लें, ओके व्हाट्सएप भी चला, तो वह पे संदेश भेज सकथिन।
1: बिल्कुल किसान भाई। तो देखा हो पेंसिल कॉपी उठाइला और लिखा अपन नंबर ही कि 800-4-9-2-6-2-5-0।
0: एक बार अंग्रेजी में बताए थे भैया,
1: हाँ,
0: लड़के का देला पढ़ा था लिखा था।
1: 8-0-0-4-9-2-6-2-5-0।
0: तो फिर अपर संदेश लिखें। हाँ तो हम सब पहुँचे भाई, उस पर अमल किया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया
0: एकरे
1: हो।
0: अलावा
1: हाँ
0: भैया
1: हाँ
0: देखा इंस्टाग्राम आओ का कहा थे ना,
1: फेसबुक भैया,
0: फेसबुक पे
1: बिल्कुल
0: भी
1: आकाशवाणी
0: आकाशवाणी
1: पर
0: प्रयागराज
1: बिल्कुल।
0: के नाम
1: हाँ
0: से
1: हाँ
0: फाइल बनी बा, वहाँ पे भी पसंद कर सकथिन ना, टिप्पणी भी कर सकथिन।
1: बिल्कुल किसान भाई। तो अपन विचार, अपन मन और अपन ये कार्यक्रम कैसन लगत हो, ये पर भी
0: हाँ
1: प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें। और भी कोनो तरह का अगर आप लोग का सलाह बा, सुझाव बा, तो ओके भी दें। निश्चित रूप से ओके हमने सम्मिलित करब।
0: अब देखा चले कि बेला भी हो गया बा, तो पानी बुनी के समय बा घनश्याम भैया। हाँ तो पंचन से विदा ले जाए, तो पंचो राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा काव्य कौमुदी, कवि होंगी बीना मिश्रा 7:31 पर। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में गीत और भजन सुनिएगा। रात 8 बजे संसद समीक्षा दिल्ली केंद्र से, 8:15 फिल्म संगीत, 8:30 आप सुनेंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मतिथि पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट, वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव का, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संगीता शंकर का वायलिन वादन सुनिएगा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से।

मुख्य समाचार। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6-लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पिपरली की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
1: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने आज ट्वीट किया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो जिम्मेदार है उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग

0: निहाल अग्रवाल ने कहा कि पिपरली की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
1: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने आज ट्वीट किया है कि वो फास्टैग कोड बनाएंगे, जो जिम्मेदार हैं उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग की, सरकार हमारी मांग पूरी कर देगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करें ताकि छात्रों से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो और भविष्य में उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो।
2: लोकतंत्र में चर्चा का चर्चा से ही समाधान निकलता है और सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन में हम उसको स्पष्ट भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा देश का सबसे बड़ा हमारा भविष्य हो। प्रधानमंत्री जी हमेशा हर नौजवान को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और हमारी सरकार तैयार है कि देश के नौजवानों के साथ कोई भी अन्याय ना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जिले के पहले 6-लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सुदृढ़ हुई कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं विकसित भारत की संकल्पना को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है और आवागमन का माध्यम जितना अधिक तेज होगा उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और समृद्धि भी आएगी।
3: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
0: अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक के बाद आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिरामदास छावनी में हुई इस बैठक में रामलला मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। इससे पहले कल हुई ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जांच पर भरोसा रखा जाए और जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ

0: मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती नवीनतम उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। इस मौके पर अमरोहा के गजरौला स्थित रेडियो संग्रहालय के संस्थापक राम सिंह बौद्ध ने कहा कि मौजूदा दौर में भी आकाशवाणी ज्ञान और विज्ञान को फैलाने का सशक्त माध्यम बना हुआ है।
2: आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की और विशेषकर रेडियो सुनने वालों की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आकाशवाणी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उद्देश्य को ज्ञान विज्ञान मनोरंजन की ओर सब लोगों को अपना विषय बताने के उसके अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात रेडियो पर शुरू कर रेडियो पुनः लोगों के हाथों में आ गया है और इसके सुनने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
1: आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाले सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में आज से गंगा नदी में इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं का संचालन शुरू हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से इलेक्ट्रिक वोट कन्वर्जन पायलट परियोजना के तहत ये शुरुआत की गई है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। इस बीच वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक मामले में जिम्मेदारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। अयोध्या में आज विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की हुई अहम बैठक। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं में परिवर्तन का किया गया स्वागत। और प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा, शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए काव्य कौमुदी। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कवि हैं अर्जुन गुप्ता और बीना मिश्रा। सबसे पहले लीजिए सुनिए बीना मिश्रा के स्वर में कविता पाठ।

काव्य कौमुदी के अंतर्गत अभी आपने बीना मिश्रा के स्वर में काव्य पाठ सुना। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शिक्षा वह रक्षक है जो सपनों को साकार में बदल सकती है। शिक्षा हमें इंसान बनाती है और इंसानियत सिखाती है।

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में भजन।

अंकिता चतुर्वेदी के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेपर लीक के मुद्दे पर आज भारी हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में

जाए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E19 E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन

और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया, जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण में सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखित जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा करा

0: जाने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, बारिश की बूंदों में एक अलग ही संगीत छिपा होता है। जब ये बूंदें धरती को छूती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो। रिमझिम फुहारे, ठंडी हवाएं और भीगी भीगी सी शाम दिल को एक अनोखी खुशी से भर देती है।

दोस्तों, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो दिल को बहकाने लगते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें बस जी लेने का मन करता है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते ही दिल कह उठता है, आज सारी फिक्र छोड़ दें, सिर्फ खूबसूरत से इस गाने को सुने। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो गाना सुना वो था मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में मजबूर फिल्म से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना

बख्शेगी। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में शर्मीली फिल्म से, बोल नीरज के, संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। तो आइए इस सुहानी शाम को और भी खुशनुमा बनाते हैं, मोहब्बत के रंग में थोड़ा और रंग लाते हैं और दिल की इसी मदहोशी को सुरों में महसूस करते हैं।

दोस्तों, पहली बारिश की पहली बूंद और साथ हो कोई अपना, तो मौसम सिर्फ सुहाना नहीं रहता बल्कि दिल की एक खूबसूरत कहानी बन जाता है। भीगी भीगी फिजा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसी खास का साथ, इन पलों को भला कौन भूल सकता है।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में फूल और कांटे फिल्म का ये गाना आपने सुना। संगीत था नदीम श्रवण का, शब्द रचना समीर की। दोस्तों, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: प्रस्तुत है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आज 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं शहीद आजम भगत सिंह स्मारक समिति की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के आरंभ में अतिथियों व नागरिकों द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सशस्त्र पुलिस बल द्वारा 21 गन फायर की सलामी दी गई और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद नगर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए।

0: छात्रा मायरा ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लिखी कविता प्रस्तुत की।
1: आजाद हिंद का एक सिपाही कहता जो वतन को महबूब था, आजाद

0: का एक सिपाही कहता जो वतन को महबूब था, क्या कहूँ मैं उसकी कहानी, वह जवान भी क्या खूब था। मध्य प्रदेश के भाभरा में जन्मा, मध्य प्रदेश के भाभरा में जन्मा, वह फौलाद था, कुल से था पंडित, सीता राम और जगरानी की औलाद था। धरती को माँ कहता था, वतन की आज़ादी का सपना उसके हृदय में रहता था। बचपन से ही जो पिस्तौल से खेलता था, वह देशभक्त आज़ाद कहलाता था। हृदय में बारूद उसके, वह जनेऊधारी था। मातृभूमि पर जान निछावर करने वाला वह एक क्रांतिकारी था। अंग्रेजों को धूल चटा दे, वतन को आंख उठाकर देखने वाले को मिट्टी में मिला दे। अद्भुत शौर्य जिसका, लगता वह प्रलयकारी था। कलयुग में वह शिव का एक अवतारी था। अंग्रेज थर थर कांप जाते थे, पर उसकी शक्ति को ना भांप पाते थे। 700 सैनिकों की फौज लाई थी, फिर भी आज़ाद को ना पहचान पाई थी। हथियार उसका खिलौना था, चिता ही उसका बिछौना था। मौत का वह करता तांडव था, वह समर रूप पांडव, लहू के एक एक अंश से धरा का क्षण चुकाया था। भस्म हो गया हर वो पापी जो जनियों से टकराया था। धन्यवाद।
1: हमने बात की चीफ वार्डन सिविल डिफेंस अनिल कुमार से।
2: आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए बड़े गर्व का दिन है। आज देश के महान सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी का आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे प्रयागराज के नौजवान, हर वर्ग के लोग आज यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं ऐसे महान सपूत को, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1906 में जिनका जन्म हुआ और 1931 में उन्होंने शहादत पाई और शहीद हुए। इतने कम उम्र में उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया और उसके माध्यम से देश भर के युवाओं को, क्रांतिकारियों को जोड़ा, और सभी उसमें, चाहे वो भगत सिंह जी रहे हों, चाहे वो रामप्रसाद मिसमिल रहे हों, राजगुरु सुखदेव जी रहे हों, और ऐसे लोग देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया। और आज हम जब स्वतंत्र भारत में खड़े हैं तो इन बलिदानियों के बलिदान के ही वजह से हम स्वतंत्र भारत में खड़े हैं।
1: समारोह में चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित नाटक का भव्य मंचन भी किया गया। प्रस्तुत है उसके अंश।
3: The government searched him from many days. The person who informed Jinda ya Murda, then government will definitely awarded him. Wanted, wanted, wanted.

0: Wanted. Wanted. The person who gives information about Chandrasekhar Azad. The government will award it with 10,000 rupees. The government searched him for many days. The person who informed Zinda ya Murda. Then government will definitely award it him. Wanted.
1: मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। मजिस्ट्रेट सरेगाट पारसी था, उसे सड़क पर यातायात 107 की तहत सजा देने में माहिर था।
2: इंकलाब भारत माता की।
3: किंतु सरकार ने इस हत्या को जिम्मेदार नहीं माना है, न अपने को दर्ज किया है।
4: पंडित जी, एक बार मौका दे दीजिए। पंडित जी, मुझे सिर्फ एक बार इस धरती माँ की सौगंध दिखा कर कहता हूँ, उस जानवर पर जरूर ठोक दूंगा।

0: अभी आप सुन रहे थे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मतिथि पर आयोजित समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव और प्रस्तुति अभय कांत तिवारी की थी।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: پریشان. और 16 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की. नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी. गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई. और अब समाचार विस्तार से. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है. उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा. श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं. सरकार के दरवाजे खुले हैं. आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं. प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी. आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे. उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
1: At the level of the Prime Minister,
2: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी

0: द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
1: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
3: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव दल फिलहाल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं।

0: अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast-track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight, and Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
4: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री JP नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
3: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
2: अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रात बुखारेस्ट में रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डान के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वज़ीर आज़म मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरक गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा से ये कहते हुए बात करने की अपील की है कि हुकूमत तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जारी एहतजाज के तलबा नुमाइंदगान को पिछले 24 घंटों में बात करने की 4 मरतबा पेशकश की गई। उन्होंने एहतजाजी नौजवानों को बात करने के लिए दावत दी। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर JP नड्डा मुजाकरात के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये बातचीत मरकजी वजीर JP नड्डा की रिहायशगाह या उनके दफ्तर में खुले जहन के साथ की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री JP नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।

0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि हुकूमत खासतौर पर इम्तिहान के पेपर लीक होने के मामले पर तालिब इल्मों की तशवीश से बखूबी वाकिफ है। मीडिया के साथ बात करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके इस जिम्न में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुनबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तहानात के वक़ार को मजरू करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुतफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुतला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से ये कहते हुए अपील की कि वो शरायत ना रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा।
1: वो बहाना जुड़ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में तो बोलता है अपना कंडीशन है मांग है पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप, वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
0: मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ना तो बहस के लिए तैयार है और ना ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलात पर बहस करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोट्रसिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोशोर डान ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वफ्द की सतह की बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के अपने हम मनसब जनाब डॉन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल भारत रोमानिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे से तजारत और सरमायाकारी, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तरजीह तवानाई, तालीम, साइंस और इख्तरा समेत अहम शुबों में भारत रोमानिया ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती और आवाम से आवाम के तबादलों को फ़रोग देना है। रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिले कद्र शराकत दार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे के अख्ताम के साथ आने वाले बरसों में दो तरफा इकतसादी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत काबिले तजदीद तवानाई चोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 2 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जदीद और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों, पॉलिसी साजों, सनअती रहनुमाओं, सरमायाकारों, इख्तराकारों और स्टार्टअप्स और बैन अलावामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बामी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए यकजा होने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकों को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली, माहौल के लिए साजगार तवानाई के मार्केट्स और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईशतों में से एक में शामिल होने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में भारत की गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत 300 गीगावाट से भी तजावुज कर जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में

गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत महज 75 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने ओडिशा के साहिल से मुत्तसिल APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और दीगर मुतालिका फरीकों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह हसूलियाबी भारत के दिफाई तहकीक व तरक्की

0: की मदद से भारत की दरामदी इन्हिसारी में कमी आएगी और मुल्क के दिफाई फजाई दिफाई निज़ाम की सलाहियत में नुमाया बेहतरी आएगी। गुजरात में शदीद बारिश जारी है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जनूबी गुजरात खत्ते के बहुत से हिस्से ज़ेरे आब आ गए हैं। मामूल की ज़िंदगी में खलल पड़ा है, कस्बे और गांव ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि रेल और सड़क नकलो हमल मुतासर हुई है। वलसाड़, सूरत और नवसारी समेत बारिश से मुतासर अजला में बचाव और राहत की कार्रवाइयाँ मिशन मोड में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने जनूबी गुजरात में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गांधीनगर के रियासती हंगामी ऑपरेशन के मरकज में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आला ने बारिश से मुतासर अजला के कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से मुतासर और नशेबी इलाकों में राहत और लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों को तेज़ करने को अव्वलिन तरजीह दें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तूफानी बारिश ने गुजरात के बहुत से हिस्सों में मामूल की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। जनूबी और वस्ती अजला इस बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। नौसारी के खेड़गांव में 16 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सूरत के अमरपाड़ा में आज शाम तक 15 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वलसाड़, भरूच और खेड़ा जिलों में भी शदीद बारिश की रिपोर्टें मौसूल हुई हैं। नौसारी में वजीर हर्ष संघवी ने आला हुक्काम के साथ कुदरती आफात के बंदोबस्त के कंट्रोल रूम में हंगामी तैयारियों का जायजा लिया। औरंगा और दमन गंगा जैसे तुगयानी पजीर दरियाओं ने हुक्काम को बहुत सी शाहराहें बंद करने पर मजबूर कर दिया। गोलवाड़ और उम्बेर गांव के दरमियान एक पुल पर सतह आब खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद आज मगरबी रेलवे की खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। इसके बाइस बहुत सी ट्रेनों को कलील मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राहत और बचाव की टीमें जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ का अमला फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मसरूफ है। अहमदाबाद शहर में शदीद बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसके बाइस मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की और रियासत में शदीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने शदीद बारिश के मद्देनज़र राहत और बचाव की कार्रवाइयों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में शदीद बारिश की सूरत हाल में राहत और बचाव की कार्रवाइयों से मुतालिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी बात की। मरकजी वजीर दाखिला ने रियासत को इस सिलसिले में तमाम जरूरी इमदाद की यकीन दहानी कराई। सिक्किम के नामची जिले में समरडंग में एनएचपीसी तीस्ता के स्टेज 6 के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग में फंसे तमाम 25 लाशों को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 4 दिन से जारी बचाव कार्रवाई अपने अख्तितम को पहुंची। सिक्किम सरकार और कई मरकजी एजेंसियां इन बचाव कार्रवाइयों में शामिल थीं। सिक्किम सरकार ने भी इस अलमनाक हादसे की वजूहत का पता लगाने के लिए 4 रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी से 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। आज जम्मू कश्मीर में फलियन मंडल प्राबली के नज़दीक दरियाए तवी में अचानक तुगयानी के सबब वहां फंसे 2 अफराद जम्मू पुलिस और आफात से निपटने के रियासती दस्ते SDRF ने तेजी से और करीबी तालमेल के साथ बचाव कार्रवाई की और उन्हें बहिफाजत बचा लिया गया। 23वें दौलत मुश्तरका गेम्स आज से स्कॉटलैंड शहर के ग्लासगो में शुरू होंगे। 74 मुल्कों की टीमें इस 10 रोजा इवेंट में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुरानंदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाली 3 खिलाड़ी जिनमें लवलीना भी शामिल हैं को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। लवलीना 31 जुलाई को सेमीफाइनल्स में तफाकी के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेंगी, जहां जीतने वाली खिलाड़ी को सोने के तमगे के मुकाबले में जगह मिल जाएगी। दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में सिर्फ 10 खेल होंगे, जो बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 9 कम है। ये मुकाबले 8 मील के दायरे में 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल हैं। भारतीय दस्ता पैरा एथलेटिक्स समेत 125 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनल

0: मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सूर्यवंशी के 19 गेंदों में शानदार 50 रन ने भारत को सिर्फ 13 ओवर्स और 2 गेंदों में ही 126 रन का जीत का निशाना आसानी से हासिल करने की राह हमवार कर दी। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। इस सीरीज का दूसरा मैच इतवार के रोज़ इसी मकाम पर खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर तातुल जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हम मनसब निकोशोर डॉन के दरमियान बुखारेस्ट में वफ्द की सतह की बातचीत शुरू हो गई है। गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश के बायस मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। 23वें दौलत मुश्तरका गेम्स आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आज शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलावामी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर की आवाज में बाजार फिल्म से। कुछ अल्फाज मोहब्बत के कुछ एहसास की बातें हैं, गजल के हर मिसरे में दिल से निकली मुलाकातें हैं।

श्रोताओं, अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, दिल की राहें फिल्म से। संगीत है मदन मोहन का, शब्द रचना नक्श लालपुरी की। गजल वो नहीं जो सिर्फ लफ्जों में बयां हो जाए, गजल वो नहीं जो सिर्फ लफ्जों में बयां हो जाए, गजल तो वो है जो दिल को छूकर आंखों में उतर जाए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कहकशा। अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में, साधना सरगम के साथ में, मोहरा फिल्म से। शब्द रचना इंदिवर की, संगीत है विजू शाह का। शाम भी है, तन्हाई भी है, यादों का सिलसिला भी है। शाम भी है, तन्हाई भी है, यादों का सिलसिला भी है। आज की इस महफिल में गजल का रंग भी है और दिल भी है।

दोस्तों, अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अदालत फिल्म से। संगीत है मदन मोहन का, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की। कभी दर्द बनकर आई, कभी प्यार बनकर छाई। कभी दर्द बनकर आई, कभी प्यार बनकर छाई। गज़ल ने हर बार दिल की एक नई कहानी सुनाई।

श्रोताओं, कहकशा कार्यक्रम की ये अगली और आखिरी पेशकश उमराव जान फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। वो बात जो कह न सके आज गजल कह देगी, वो बात जो कह न सके आज गजल कह देगी, दिल में जो राज छिपा है आज गजल कह देगी।

श्रोताओं, आशा भोसले की इसी गजल के साथ कार्यक्रम कहकशा की दीजिए इजाजत समाप्त करने की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं राजा भैया फिल्म से उदित नारायण की आवाज में। संगीत है सुरेंद्र सोधी का, शब्द रचना मान सिंह दीप की। दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत की शुरुआत अक्सर आंखों से होती है। एक नजर मिलती है और दिल को जैसे किसी का इंतजार होने लगता है। कभी किसी की आंखों में प्यार नजर आता है तो कभी वही आंखें हमें मदहोश कर देती हैं।

श्रोताओं, अगला गाना आ रहा है चुपके चुपके फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत है एसडी बर्मन का, शब्द रचना आनंद बख्शी की। मोहब्बत हो और सावन का मौसम हो तो दिल की धड़कने अपने आप गीत गुनगुनाने लगती हैं। बारिश की बूंदें जब तन को भिगोती हैं तो किसी अपने की याद मन को भिगो जाती है। और जब सजन दूर हो तो सावन की हर बूंद एक संदेश बन जाती है।

अगला गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाज में शिकार फिल्म से। संगीत है शंकर जयकिशन का, शब्द रचना हसरत जयपुरी की। दोस्तों, प्यार में कुछ राज भी अच्छे लगते हैं। कुछ बातें कह दी जाएं तो उनका जादू खत्म हो जाता है, और कुछ बातें अगर दिल में छुपी रहें तो मोहब्बत और भी

दोस्तों, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। प्यार का यही तो जादू है, जितना चाहो उतना ही कम लगता है। तो आइए सुनते हैं दिल की उसी बेपनाह चाहत को बयां करता हुआ ये खूबसूरत गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में राज फिल्म से।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत में दिल को मनाना पड़ता है, कभी अपनी बात कहनी पड़ती है और कभी सामने वाले की हर बात को मुस्कुराकर मान लेना पड़ता है। क्योंकि प्यार में जीत किसी एक की नहीं होती, जीत तो उस रिश्ते की होती है जिसे दोनों दिलों ने संजो कर रखा हो।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में राज रिबूट फिल्म का ये गाना आपने सुना, कौशर मुनीर के बोल, जीत गांगुली का संगीत। दोस्तों, मोहब्बत की पांच अलग अलग रंग आज हमने महसूस किए, कहीं आंखों की मदहोशी, कहीं सावन का इंतज़ार, कहीं प्यार की शरारत, कहीं बेपनाह चाहत और कहीं रिश्तों को निभाने की खूबसूरत अदा। उम्मीद है इन गीतों की ये महफिल आपके दिल में भी कुछ मीठी यादें छोड़ गई होंगी, क्योंकि अच्छे गीत खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास हमेशा दिल में जिंदा रहता है। तो कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए संगीता शंकर का राग पुरिया में वायलिन वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता शंकर का रागपुरिया में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री महावीर प्रसाद भट्ट। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: वैष्णवी।
1: विषय पर अपनी बात,
0: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
3: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका

स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहली 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। यूनियन मिनिस्टर डॉ जितेंद्र सिंह हैज अपील्ड टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ द एनईईटी पेपर लीक इशू टू कम फॉर टॉक्स, सेइंग गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशंस ऑन ऑल इश्यूज। टॉकिंग टू मीडिया द मिनिस्टर सेड that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
0: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जेपी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
1: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड इट्स स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्वड इन एनईईटी पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। हिज स्टेटमेंट कम्स अमिड ऑनगोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that the government is highly sensitive to the concerns of students, particularly over competitive examination paper leaks. Talking to media, Ms. Sitharaman said that the government had acted swiftly by arresting those involved in the NEET paper leak issue. She added that Prime Minister Narendra Modi's announcement of fast-track courts is intended to reassure students and their families that those responsible for undermining the sanctity of examinations will be punished swiftly. The Delhi police today informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that those social media handles were involved in spreading rumors and false claims to mislead the students and the youth. They urged the people always verify information before trusting and sharing them. Delhi Metro Rail Corporation, that is DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. tomorrow till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramkrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Sevatirth, Janpath, Jhandewalan, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However,